हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में अभी आप सुन रहे थे निपा चौधरी का गायन राग बैरागी में।

0: सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।

0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said

0: that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं।
1: बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षाएं पूरी तरह से मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं और इन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म कहा जाता है। बुद्ध ने सद्गुणों को महत्व दिया, ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा। बौद्ध धर्म का मूल बुद्ध की शिक्षाओं से बना है, जो है तीन सार्वभौमिक सत्य, चार आर्य सत्य तथा अष्टांगिक आर्य मार्ग। तीन सार्वभौमिक सत्य, जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया, तीन सार्वभौमिक सत्य हैं। ब्रह्मांड में कुछ नहीं खोता, ब्रह्मांड में सभी चीजें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो बदले में वापस पदार्थ में बदल जाता है। मनुष्य मनुष्य से पैदा होता है, जो फिर से मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोता और ब्रह्मांड जो कुछ भी लेता है उसे वापस कर देता है। सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, कुछ भी स्थायी नहीं। कारण और प्रभाव का नियम, बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इस जीवन और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। चार आर्य सत्य, बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख का सच, जीवन में सभी मनुष्य किसी ना किसी तरह से दुख भोगते हैं। जन्म के समय हम दुख भोगते हैं, बीमारी में और मृत्यु के समय भी हम दुख भोगते हैं। किसी प्रियजन से अलग होना दुख है, अप्रिय का मिलना भी दुख है। बुद्ध दुख का कारण इच्छाओं और आसक्ति को बताते हैं। सांसारिक वासना का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख का कारण बनती है। दुख को रोकना और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों की जड़ में निहित इच्छा को दूर करना होगा, ताकि मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त हो सके। उस मार्ग का सत्य है जो हमें दुख से मुक्त करता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। अष्टांगिक आर्य मार्ग, अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए आठ महान मार्ग निर्धारित किए हैं। वे हैं सम्यक समझ, ये चार आर्य सत्यों की सच्ची धारणा को संदर्भित करता है। सही विचार, सम्मा संकल्प, व्यक्ति को सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच में स्पष्टता अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है। सम्यक वाक, हमें सदैव दयालुता पूर्वक सचेत होकर दूसरे का सम्मान करते हुए और उन पर विश्वास करते हुए बोलना चाहिए। सही कर्म, सम्मानता, इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों की आलोचना करने से बचना और अच्छे व्यवहार करना शामिल है। सम्यक आजीविका, सम्मा आजीव, बुद्ध ने सलाह दी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी आजीविका ना कमाएं और दूसरों को दुखी करके खुशी ना पाएं। सम्यक प्रयास, सम्मा वयम, इसका तात्पर्य है अपने लिए अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। सही जागरूकता, इसका तात्पर्य स्वयं शरीर दृष्टिकोण और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। घृणा लालसा और अज्ञानता को खत्म करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। सम्यक एकाग्रता, संपूर्ण समाधि, चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता और अनियतता की समझ विकसित करने हेतु सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति अष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुसरण करता है तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पांच सुझाव भी दिए हैं। ये हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा या जान लेने से दूर रहें, जो ना दिया गया हो उसे लेने से बचें, चोरी ना करें, इंद्रियों के दुरुपयोग से स्वयं को रोकें, झूठ ना बोलें और दूसरों के बारे में गलत बात ना कहें, किसी भी मादक पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें,

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे बालकांड भाग 107।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं।

शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

0: श्रोताओं 6:55 होने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000+ यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्तमासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये

0: भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड द सानंद प्लांट इज गियर्ड टू प्रोड्यूस 20 क्रोर चिप्स एनुअली। He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects.

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30:20 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। आज के गीतों भरे सफर में मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट
1: सिद्धार्थ के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। तो अगले आधे घंटे का सफर खूबसूरत गीतों के साथ और हम दोनों के साथ, और उम्मीद है ये आज आपका दिन बेहद शानदार बना देगा।
0: बिल्कुल, तो अपने श्रोताओं के साथ गुड मॉर्निंग नवीन, जब हम दोनों हैं तो अंदाज भी गुड मॉर्निंग का कुछ इस तरह से होना चाहिए। धीमे बजे से ये नहीं चल रहा।

तब हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत धेनु चलैया जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा।

0: जी हाँ, यही संदेश लाता है कि हमें अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करनी है। और अगर नवीन हम बात करें तो बावर्ची फिल्म का ये गीत अपने आप में इतना मोटिवेशन देता है, इतनी प्रेरणा देता है कि पूरे जीवन का सार इस गीत में कहीं ना कहीं मुझे छुपा लगता है। और अगर दिन की शुरुआत कुछ हम ऐसी करें, कहते हैं कि वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन, जब आप शुरू अच्छा करते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है। तो क्या कहेंगे नवीन आप इस बात पर?
1: सुबह की शुरुआत अगर इतने खूबसूरत गीत और इतने अच्छे विचारों के साथ होना सिद्धार्थ, तो चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ ही जाती है। एंड आई बिलीव कि अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है ना, तो कम से कम आप दिन में दो दोस्त तो ज़रूर बना लेंगे। और हाँ, और जो आपसे रूठे हुए हैं ना, उन्हें तो मना ही लेंगे।
0: तो रूठे हुए को मनाने की अगर बात चल रही है, तो क्यों ना आज के दिन की शुरुआत, हम आज छुट्टी का दिन है, आपके पास समय भी है, तो क्यों ना हम सुबह की शुरुआत इस चीज़ से करें कि हमने जिस दोस्त को, अपने जिस अपने को बहुत समय से फ़ोन नहीं किया है, उसका हाल नहीं पूछा है, उसके बारे में कई बार मन में आया लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उससे बात करने की, तो आज कुछ ऐसा करते हैं कि आज उनको कॉल लगाते हैं, उनसे बोलते हैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात।

0: बात उनसे करते हैं और एक छोटा सा सॉरी बोलकर रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई पहल करते हैं नवीन।
1: लेकिन ये सब करना प्लीज इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, सॉरी बोलिए और एक नई शुरुआत कीजिए। सिद्धार्थ, ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए।

इसलिए आपसे यही कहेंगे कि रूठ कर बैठे हो किस बात की सजा देते हो, रूठ कर बैठे हो किस बात की सजा देते हो, चलो मान भी जाओ दिल को क्यों चला देते हो।

जी हाँ, परवाह ही तो है, क्योंकि तेरा यूं रूठ जाना भी मोहब्बत की निशानी है, मगर हर बार मनाना भी मेरी कहानी है।

0: जी हाँ दोस्तों, जो रूठे हैं उन्हें दूर नहीं जाने देना है। और आज जैसा कि नवीन ने आपसे कहा कि आज का दिन खास रिजर्व रखना है उन लोगों के लिए जो आपसे रूठे हुए हैं, वो रिश्ते जो थोड़े दूर जा चुके हैं उनको मनाने के लिए।
1: सिद्धार्थ, हर वक्त जीतना भी जरूरी नहीं है
0: जी,
1: हर वक्त मजबूत रहना ये भी जरूरी नहीं है, या हर वक्त भागते रहना ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनों से जीत जाने के बजाय हार जाना, कभी कभी मुश्किल वक्त में मजबूत होने के बजाय रो लेना, जीवन की इस यात्रा में जब भागते हुए थक जाओ ना तो थोड़ा ठहर जाना, और जब तुम जान पाओगे कि जीवन में हारना, रोना, ठहरना कितना खूबसूरत होता है।
0: बिल्कुल, और कहते भी हैं कि नाराजगी लाख सही रिश्ता तो अपना है, आओ गले मिटाएं, यही प्यार का सपना है। तो गिले अगर हम मिटाएंगे तो प्यार का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। और ये जो गिले, शिकवे, रूठना, मनाना, मिलना, जुदा होना और फिर मिल जाना, यही तो जीवन है। और नवीन, कई बार हमारे तुम्हारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम कुछ कहना तो चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, किसी से सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। कई बार हम इसी में रह जाते हैं कि पहल कौन करे
1: बस, और उस वक्त आपकी आंखें बोलती हैं। अपनी आंखों में वो सारा समा, वो सारी बातें आप ले आइए, चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ले आइए, और वो सब कहने की कोशिश करनी चाहिए जो आप कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, लेकिन आंखें बोलती हैं, आपके होंठ बोलते हैं।
0: जी हाँ, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो सॉन्ग है हम डेडिकेट कर रहे हैं उनको जो आपसे रूठे हुए हैं, और उनको बहुत ही प्यार से जब आप आवाज़ देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ पर वो दौड़े चले आएंगे।

0: जी हाँ, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नासों से, और जब कोई इस तरीके से दिल से पुकारता है तो आना ही पड़ता है, क्योंकि दिल से जो सदा निकलती है उसको कोई ठुकरा भी नहीं सकता है, क्योंकि दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचती है। और आज की तो भरी गुड मॉर्निंग के इस शो में नवीन और सिद्धार्थ हैं आपके साथ, और ये बात हो रही है दिल से दिल तक की, बात हो रही है रिश्तों की, बात हो रही है जीवन की, बात हो रही है सुबह की, कि किस तरीके से जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो रिश्तों का मांझा है उसे हम सुलझा लेते हैं, किसी अपने को मना लेते हैं। नवीन,
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, थोड़ा सुकून, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, तुम्हारी गोद, तुम्हारा मेरे हाथों में हाथ, तुमको पाकर जाना मैंने, कितना कुछ नहीं था मेरे पास तुम्हारे बिना। कभी कभी कोई इतना खूबसूरत साथ आपके साथ चल पड़ता है कि आपको लगता है कि अगर वो नहीं है तो जीवन कुछ अधूरा सा लगता है। अधूरे जीवन को पूरा करना चाहते हैं, लंबा साथ चाहते हैं, तो जैसा हमने कहा था ना, रूठे को मना लीजिए। जिंदगी बहुत छोटी सी है, और इस छोटी सी जिंदगी में अगर आप साथ छोड़ते चले जाएंगे ना तो अकेले रह जाएंगे। रूठना, मनाना, गिले, शिकवे सब एक तरफ, तेरा मेरा साथ एक तरफ।
0: बिल्कुल, तेरा मेरा साथ एक तरफ जीवन चलने का नाम है। और कहते भी हैं कि मंजिल मिले ना मिले इसका गम न कीजिए, जिंदगी सफर है मुस्कुरा कर तय कीजिए, गिरकर संभलना ही इंसान की पहचान है, और चलते रहना ही तो जिंदगी का नाम है।

0: जी हाँ, जीवन चलने का नाम और चलते रहो सुबह शाम, हिम्मत की बात कही गई है इस गीत को। जब भी हम सुनते हैं तो सच मानो तो जैसे पूरे जीवन का सार मिल जाता है और एक नई ऊर्जा से हम भर जाते हैं। और क्यों ना भर जाएं, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है, ये इस गीत के बोल ही ऐसे हैं। क्या कहेंगे नवीन आप?
1: दिस इज़ ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग सिद्धार्थ, और हमें लगता है कि आप जब भी थोड़े से परेशान हो, जब भी आपको लगे कि आपके आसपास कुछ हो नहीं रहा, या आपको लगे कि आपके जीवन का जो ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, जस्ट लिसन दिस सॉन्ग, इस गीत को सुन लीजिए। बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है। और सिद्धार्थ, लोग कहते हैं कि जीवन बहुत मुश्किल से बीत रहा है, कभी कहते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, थक गया हूँ। कभी उनकी सोची जिनके पास काम नहीं है, काम से कभी कोई नहीं थकता मेरे दोस्तों। काम करते रहिए, चलते रहिए, जीवन चलता रहेगा।
0: बिल्कुल, काम करते रहिए, चलते रहिए, जीवन चलता रहेगा। और साथ में इस जब आप इस जीवन के सफर में चलते हैं तो थोड़े जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो मेहनत है, जो आपकी, हम कई बार हम नवीन ये कहते हैं कि जो तकदीर है वो हमारे साथ नहीं है, तो एक जंग सी शुरू हो जाती है तकदीर और तदबीर के बारे में। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि तकदीर के भरोसे बैठना भी क्या अजब बात है, तदबीर से ही अक्सर मुकद्दर बदल जाता है।
1: और जिस गीत की ओर इशारा कर रहे हैं सिद्धार्थ, वो गीत हम बिल्कुल आपको सुनाएंगे, लेकिन इतना याद रखिए, मेहनत करेंगे ना तो हाथों की लकीरें भी बदल जाएंगी।
0: बिल्कुल, तकदीर भी झुक जाती है तदबीर के आगे, मेहनत का दिया जलता है तकदीर के आगे।

0: जी हाँ, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, क्योंकि तदबीर के हाथों में जब मेहनत का उजाला होता है तब जाकर तकदीर का हर बंद दरवाज़ा खुलता है। तो नवीन और सिद्धार्थ आज आपके साथ है गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, और धीरे धीरे घड़ी की बढ़ती सुइयां हमें इशारा कर रही हैं नवीन कि अपने श्रोताओं से विदा लें।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं से हम विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज जो हमने बातें आपसे की, और अगर आपने उसको थोड़ा भी ध्यान लगाया होगा ना, तो आज का दिन तो आपका बन ही जाएगा। बहरहाल, इजाजत,
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,000

0: 840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने

इस सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम

0: मलेशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने घेरा। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है, साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान, और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: Udan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui hai. Iske tahat छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Udaan scheme will mark the next chapter of India's regional connectivity journey. Mr. Naidu said, the scheme launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees will facilitate the development of over 100 new aerodromes and 200 helipads, bringing the dream of affordable air travel closer to millions and connecting the aspirations of a rising India.
4: It is the vision of Prime Minister Narendra Modi that wherever there is expansion of civil aviation, it should benefit not just passengers but also the economy of the entire city, businesses, students and every sector as well as citizens. We can see the effect across the country today.
2: Later in the day, Prime Minister Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test or OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
3: Bharat jo thaan leta hai, wo karke dikhata hai. 5 saal pehle Bharat ne sankalp liya tha ki desh ko semiconductor hub banayenge. हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
2: Mr. Modi also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
3: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी. आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं. आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा. मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे.
2: Earlier upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. A report.
5: The procurement of onions through the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited and National Cooperative Consumers Federation of India Limited for the government's price stabilization buffer is in progress. As per the second advance estimates of the Department of Agriculture and Farmers Welfare for 2025-26, onion production is estimated at over 307 lakh metric tons. The ministry said that the current stock levels in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat are adequate and at present there are no indication of any shortage of stored onions. The All India average retail price is 31 rupees per kilogram. Onion exports are also normal with about 1,50,000 metric tons exported during June this year. With Dipendra Kumar, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that ethanol is not a new concept and has been in use for over a century. Addressing a gathering in Rajasthan, Mr. Puri said that the government welcomes constructive criticism of the government's biofuel blending program and assured that the government will incorporate suggestions into its work and make necessary corrections. Mr. Puri also said that the idea of ethanol blending in India was first initiated during the previous Congress-led government.
6: फॉर दोज ऑफ यू हु हैव वर्क्ड विद मी एंड नो मी, क्रिटिसिज्म को मैं वेलकम करता हूं। आपको कुछ लगे कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई कमी है तो आप बताइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी

0: इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
1: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमी कंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
0: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
0: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफीन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेशगी तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा ज़खीरा काफ़ी है और इस वक्त ज़खीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्कगीर सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपये फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से

0: जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इस्लाहात भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे, उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: आकाशवाणी खबरों का शोभा अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत आज शजरकारी और माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे देवेंद्र सूरा से की गई बातचीत नशर की जाएगी।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये बातचीत आज सुबह 10:30 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इक्तसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मजबूत इक्तसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और उमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ओमान के दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्क दर्जे हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए

0: प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुआ को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 70वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी छह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दूरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस, कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई साजो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की
3: आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का ताना बाना नहीं बल्कि समाज का जीवंत दर्पण और चेतना का संवाहक होता है। इसी चेतना को शब्दों में पिरोने वाले हिंदी पत्रकारिता और समकालीन लेखन के एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर है श्री विनोद बब्बर। आज के इस कार्यक्रम में मेरा साहित्यिक सफर क्रम में लीजिए सुनिए वरिष्ठ कवि श्री विनोद बब्बर से उनका साहित्य सफर। आपसे भेंट कर रही हैं श्रीमती वंदना अग्रवाल।
4: नमस्कार। आज हमारे बीच हैं साहित्य, पत्रकारिता और हिंदी के प्रचार प्रसार को अपना जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ लेखक, संपादक, शिक्षाविद डॉक्टर विनोद बब्बर। विनोद सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार, धन्यवाद जी।
4: विनोद जी, आपका जन्म एक ऐसे परिवार और परिवेश में हुआ जहां हिंदी मातृभाषा नहीं थी, फिर भी आपने हिंदी को ही अपनी कर्मभूमि बनाया, यह सफर कैसे शुरू हुआ?
5: मैं अक्सर कहा करता हूं कि बेशक हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है कि हिंदी मेरी मातृभूमि की भाषा है। इस भारत को जानने के लिए एक ऐसी भाषा जो सबको जोड़ती है वो हिंदी है। तो बचपन से ही अपनी मातृभाषा के साथ साथ मुझे हिंदी में विशेष रुचि और अनुराग रहा है। और परिस्थितियाँ भी कुछ इस प्रकार की रहीं कि मुझे देश के लगभग सभी राज्यों में जाने का अवसर मिला। मैंने अनुभव किया कि मेरी मातृभाषा मेरी माँ की गोद है, लेकिन एक सीमा के बाद जब मुझे विस्तृत गोद चाहिए तो वो भारत माता की गोद है, और वो भारत माता की गोद में मुझे हिंदी ही बिठा सकती है। तो इसलिए हिंदी को मैंने अपना जीवन का आधार बनाया। साहित्य, पत्रकारिता, अन्य सभी क्षेत्रों में हिंदी मेरा सबल रहा है।
4: सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए।
5: मेरा जन्म अविभाजित पंजाब, आज वो क्षेत्र हरियाणा में है, करनाल के एक छोटे से गाँव में हुआ। देश का विभाजन हुआ था, बड़ी कठोर परिस्थितियाँ थी, परिवार वहाँ आया, अनेक प्रकार के अभावों को हमने देखा, झेला, लेकिन उसका भी एक सुख था, एक आनंद था, सीखने का भाव था। मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई ने विभाजन से

0: एक शब्दकोश खरीदा था अंग्रेजी का, और बाद में विरासत में वही मुझे कई बहन भाइयों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। बहुत गल चुके हैं पेट, लेकिन मैंने उसे संभाल के आज भी रखा हुआ है। वो दौर था जब साधन नहीं थे लेकिन साधना थी, अभाव था लेकिन जीवन को जीने का, नैतिक मूल्यों से जुड़ने का भाव था। तो उस परिस्थितियों के अंदर जब हमारे पास पुस्तकों का भी अभाव था, सिलेबस की किताबें नहीं होती थी, स्कूल पैदल जाना होता था कई मील दूर, लेकिन हंसते खेलते जाते थे। एक और विशेष बात कहना चाहता हूँ कि वो केवल मेरे लिए नहीं था, वो पूरा परिवेश ही ऐसा था। उस दौर के लगभग हर व्यक्ति ने उन कठिनाइयों को, जीवन के उन दौरों को देखा हुआ है, तो मेरा बचपन भी कमोवेश उन्हीं जैसा रहा। मैं उस कठिनाइयों के दौर को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता हूँ, उसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
1: आपने 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेखन का शौक कहाँ से लगा?
0: मैं समझता हूँ इससे भी पूर्व ये प्रश्न होना चाहिए कि साहित्य का शौक कहाँ से लगा। मेरी माँ, वो उस दौर में कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन वो चार भाषाएं जानती थी, पढ़ना लिखना। उस दौर में हिंदी, गुरमुखी घर में सीखी उन्होंने, घर में कोई आके सिखाते थे। बाद में उन्होंने उर्दू भी सीखी और अंग्रेजी हम सब बच्चों से सीखी। उन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, वो कहानियाँ पढ़ के सुनाती थी, मेरी दादी नानी भी। लेकिन मेरी माँ के एक विशेष गुण था जो मैं अब महसूस करता हूँ उनके इस संसार से जाने के लगभग 40 साल बाद, कि वो कोई कहानी सुनाती थी तो अंत में उसे यूं ही छोड़ देती थी और वो बोलती थी अब आगे बताओ क्या होगा। तो उसको लेकर के जो ध्यान से सुन रहे होते थे उन सबकी कल्पनाशीलता बढ़ी, उसका मुझे बहुत लाभ मिला उन कहानियों को सुन करके कि अब आगे कैसे जाना है। वो जो कल्पनाशीलता माँ से मुझे प्राप्त हुई उसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ कि वो माँ से जो प्राप्त हुआ वो केवल आधार मैं मान सकता हूँ। परिवार में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे साहित्य से पूरी तरह से जोड़ा। मुझसे एक बड़े भाई थे, वो अस्वस्थ रहते थे, तो किसी ने सुझाव दिया कि इसे एक पुस्तकों की दुकान खुलवा दो। उस दौर में उपन्यास आदि किराए पे दिए जाते 5 पैसे 2 पैसे में, कि ये बैठा रहेगा कुछ इसको आय हो जाएगी। अब परिवार में किसी को साहित्य की बहुत जानकारी नहीं थी, तो हमारे बड़े भाई ने उसी व्यक्ति को कहा कि आप बताओ कहाँ से किताबें मिलेंगी। तो कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने आकर बताया एक पुस्तकालय बिकाऊ है, आप ले लो। वो पुस्तकालय खरीद लिया गया, उस भाई को दुकान खुलवा दी, लेकिन 15 दिन में एक भी पुस्तक किराए पर नहीं गई। वो निराश हो गया और उसको एक जगह पर ताला लगा के रख दिया गया। कुछ दिनों बाद बरसात हुई, वो दौर था बरसात आज की तरह लेंटर नहीं होता था, टुकड़ी होती थी, लकड़ी की कड़ियां होती थी, उसमें कुछ टपका, वो किताबें भीग गई। मैंने उनको सबको सुखाया और सबको पढ़ गया। उस दौर में जो किराए पर दी जाती थी वो जेम्स वार्ड और गुलशन नंदा और न जाने कौन कौन थे, वो एक भी नहीं थी। वो पुस्तकें थी देवकी नंदन खत्री की, आचार्य चतुर सेन जी की, उसमें विदेशी साहित्य भी बहुत था, चेखव को मैंने उन्हीं पुस्तकों में पढ़ा। तो वो धीरे धीरे मैंने सब पुस्तकें पढ़ दी। उन पुस्तकों को पढ़ते हुए हाथ में लेते हुए हाथ काले हो जाते थे, वो बरसात में भीगने से ऐसा हुआ। तो उससे जो वो साहित्य की नींव थी उसमें और मेरी जानकारी बढ़ी, लिखने की रुचि बढ़ी, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं कर सका उसका श्रेय मुझे नहीं उन परिस्थितियों को है। यदि वो परिस्थितियाँ नहीं होती तो शायद मैं एक सामान्य पाठक तक ही सीमित रह जाता।
1: पाठन तो आपने बहुत किया, और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके आगे लेखन का सफर कैसे शुरू हुआ?
0: मैं जब महाविद्यालय में गया तो वहाँ ये तय हुआ कि एक वर्ष में एक विद्यालय की पत्रिका प्रकाशित होगी, स्मारिका, तो मुझे भी कुछ लिखने के लिए कहा गया। लेकिन उससे पूर्व की एक घटना है, मैं शायद 5वीं या 6वीं में पढ़ता था, तो एक दिन हमारे जो शिक्षक थे उस दौर में उन्हें गुरुजी कहा जाता था, तो मैं कुछ बोल रहा था तो अचानक उन्होंने कहा अरे तुम तो कविता बोलता है, कविता करता है। मुझे समझ भी नहीं आया वो क्या कह रहे हैं। वो अक्सर हमारे घर भी आते थे, तो उन्होंने घर पर आकर भी कहा कि ये कविता बोलता है। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। बाद में महसूस हुआ कि मेरे बोलते समय शायद कुछ तुकबंदी हो जाती थी, शायद मेरी भाषा में कुछ काव्यात्मकता थी, तो उसको मैंने अनुभव करके कुछ तुकबंदी करने लगा। और सबसे पहली जो कविता प्रकाशित हुई वो मेरे कॉलेज की स्मारिका में प्रकाशित हुई। वहां से आरंभ हुआ। बचपन के दौर में अखबार पढ़ने की बड़ी रुचि थी, कुछ चीजों को लेकर के मैं संपादक के नाम पत्र, छोटा सा पोस्ट कार्ड उस समय 5 पैसे का आता था, वो लिख दिया करता सप्ताह में एक बार, वो कहीं ना कहीं छपता था। तो वो लेखन का आधार बना, जो समसामयिक घटनाएं होती थी उन पर चिंतन करना, उन पर लिखना, वहां से ये यात्रा आरंभ हुई। लेकिन सब कुछ मैंने अपने परिवेश से ही लिया। मैं एक अपने बहुचर्चित कहानी संग्रह की एक कहानी का उल्लेख यहाँ जरूर करूंगा। उदयपुर

0: स्टेशन पर मैं पहुंचा, मुझे दिल्ली आना था, गाड़ी में अभी 2 घंटे बाकी थे, मैं वहां इंतजार कर रहा था। अचानक देखा कि उस स्टेशन पर बहुत से विकलांग लोग घूम रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने कहाँ से आए? तो पता लगा यहाँ एक ऐसा संस्थान है जो विकलांगों के कृत्रिम अंग आदि देता है। तो जब भी कोई गाड़ी आती है, वहां से उनका कोई वाहन आता है, उनको ले जाता है, फिर उनको अंग देते हैं, सिखाते हैं, बाद में छोड़ कर जाते हैं। एक व्यक्ति वहां मेरे आगे घूमते घूमते मेरे साथ के बेंच पर आकर बैठ गया, उनका एक पैर नहीं था। मैंने उनसे पूछा ये क्या हुआ, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, बड़ी करुण गाथा है वो। उसी को आधार बनाकर मैंने एक कहानी लिखी, फटाकोट। वो बहुचर्चित हुई, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो इसलिए लेखन के लिए सामग्री हमें अपने परिवेश से ही मिल जाती है। ये सत्य है कि पूरी तरह से यथार्थ नहीं लिखा जाता, उसमें कुछ कल्पना का सहारा भी लेना है, कुछ आदर्श चीजें भी डालनी है, कुछ जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको भी लेना है, और पाठक को उसमें अपनत्व महसूस हो, कुछ वो चीजें भी रहेंगी। बाकी साहित्य तो वास्तव में संवेदना है, ईश्वर ने मुझे थोड़ी सी संवेदना दी, उस नाते से मैं कुछ लिख सका।
1: आपने 50 के करीब पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
0: ये वास्तव में बड़ा कठिन प्रश्न है। मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने लिखा वो उन परिस्थितियों में श्रेष्ठ ही सोच कर लिखा। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरी जो पहली कविता थी जो स्कूल की स्मारिका में प्रकाशित हुई, आज वो देखने पर बड़ी अटपटी लगती है, शायद उसको आज के कवि कविता से भी खारिज करें, लेकिन मेरे लिए वो भी प्रेरणा है, मेरा वो नींव है, मेरा वो शुरुआत हुई, और जो कुछ लिखा उस काल के लिहाज से वो बहुत सही था। पर सबसे महत्वपूर्ण अगर चुनना ही पड़े तो कोरोना काल के अंदर हमारे कुछ शिष्य थे देश भर के क्षेत्रों में जो शिक्षा से जुड़े हुए थे, वो बार बार मुझे कहते थे रोज कुछ ना कुछ लिखा करो, सोशल मीडिया पे डालो, लिखो, जिससे कि जो समाज के अंदर एक निराशा व्याप्त हो गई है, एक नए प्रकार का अनुभव था जो विश्व ने पहली बार अनुभव किया। तो उसमें मैं रोज एक प्रेरक कुछ घटना कुछ कहानी लिखता था। बाद में हमारे ही एक मित्र जो भीलवाड़ा के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने उनका एक संकलित प्रकाशित किया और उसका नाम ही रखा लॉकडाउन डायरी। तो मैं अनुभव करता हूं कि वो शायद सर्वकालिक है, उसको पढ़ते हुए पाठक को अवश्य कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। लेकिन इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाकी मेरी 52 में से 51 पुस्तकें हैं मैं उनको कमतर नहीं कह रहा, लेकिन बदलते परिवेश में उनका महत्व एक अलग है।
1: हिंदी के अलावा और किन भाषाओं में आपकी कलम चली?
0: कि जो अधिकार मातृभाषा पर होता है वो अन्य भाषाओं पर बहुत नहीं हो पाता। मेरी मातृभाषा पंजाबी रही है। देश के विभाजन जब हुआ, भारत का वो हिस्सा जिसे अभारत बना दिया गया, तो वे लोग जो अपने आप को भारतीय रखना चाहते थे उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, विस्थापित कहलाए और न जाने किन किन नामों से रहे। तो वो मातृभाषा और वो संस्कृति उनके साथ रही, तो मातृभाषा में भी मैंने कुछ लिखा है। यूं अन्य कुछ और भाषाएं की भी मुझे जानकारी है, लेकिन लेखन इन्हीं दोनों में रहा है, छुटपुट संस्कृत में भी है, लेकिन मुख्य हिंदी में ही है।
1: आज के समय में साहित्य काफी बदल गया है, तो साहित्य की भूमिका बदल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: बदलता हुआ दौर जिसमें नई नई तकनीक आ रही है, उसने एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में किया कि पढ़ने की प्रवृत्ति घटी है। आज पाठ्य पुस्तकें भी कम पढ़ी जाती हैं, उनके लिए भी छोटी छोटी कुंजियां और गाइड आ गए हैं, बच्चे उन्हीं से काम चलाकर परीक्षा पास कर लेते हैं। तो ऐसे दौर में जब पुस्तकें पढ़ने का प्रचलन कम हुआ है, सोशल मीडिया का दौर आया है, तो साहित्य ने भी अपना आपको नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है। आज सोशल मीडिया पर बहुत कुछ मौजूद है, इंटरनेट पर बहुत कुछ साहित्य प्रकाशित होता है, और इसने एक बड़ा काम ये किया कि पहले कुछ साहित्यकार होते थे जो लेखन करते थे, इस नए दौर ने, इस नई तकनीक ने लगभग हर व्यक्ति को साहित्य से जोड़ दिया, कुछ ना कुछ लिखने लगे। ये बात अलग है कि जो व्याकरण के शास्त्री हैं वो उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन युग बदलता है तो हर चीज बदलती है, तो साहित्य भी उसका अपवाद नहीं हो सकता।
1: एक लेखक के साथ साथ आप एक संपादक भी हैं और पिछले 25 वर्षों से राजकिंकर का संपादन कर रहे हैं, इस दौरान पत्रकारिता में सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या देखा 25 सालों में?
0: पत्रकारिता को पहले तो मैं ये बताऊं, कहना चाहता हूं, पत्रकारिता भी साहित्य है। एक साहित्य जो सुचिंतित होता है, चिंतन मनन करके लिखते हैं, उसको हम साहित्य कह देते हैं, और जो जल्दबाजी में लिखा जाए उसको हम पत्रकारिता कह देते हैं। वो घटनाओं को पत्रकार जो समाज में घटित हो रहा है वर्तमान में उसका चित्रण करता है। लेकिन आज उस पत्रकारिता में और आज में बहुत बदलाव हुआ। जब हम अपने बचपन की दौर की पत्रकारिता देखते हैं, जब वो सरस्वती पत्रिका जैसी अंक थे, आज वो बहुत बदल चुका है। आज यदि हम किसी समाचार पत्र को उठा करके देखें तो उसमें नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों ने पत्रकारिता की परिभाषा ही ये कह दी कि वेयर देयर इज

0: नॉनसेंस देयर इज न्यूज, तो हमने नकारात्मकता को ही समाचार घोषित कर दिया, तो सकारात्मक घटा है। वो पत्रकारिता जिसने अच्छा काम किया है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज के दौर में उसका बहुत कम वर्णन होता है, चित्रण होता है।
1: आपने 18 देशों की यात्राएं कर भारतीय संस्कृति और हिंदी का प्रचार किया है। विदेशों में हिंदी को लेकर आपके सबसे सुखद अनुभव कौन से रहे?
0: जहाँ जहाँ भारतवंशी है वहाँ वहाँ हिंदी है। एक गुजराती की एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। वहाँ के एक कवि ने कहा है कि जहाँ जहाँ गुजराती तहाँ सदा काल गुजरात। तो मैं ये उसी तर्ज पर कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भारतवंशी है वहाँ हिंदी है। पुराने लोग जहाँ भारतीय पहुंचे वो अपने साथ भाषा और संस्कृति भी ले गए। वहाँ दुनिया के कई देशों में जहाँ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है वहाँ विद्यालय भी हैं। लेकिन मेरे अनुभव की बात करें तो मैं तो स्विट्जरलैंड में भी गया, तो वहाँ के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर मुझे 3 भाषाएं दिखाई दी, एक वहाँ की लोकल भाषा, एक अंग्रेजी और एक हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दिया। तो मुझे सुखद लगा, मुझे लगा कि दुनिया में इतनी भाषाएं हैं, उनमें से उन्होंने एक अपनी मातृभाषा के साथ साथ मेरी मातृभूमि की भाषा को भी सम्मान दिया, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ वो क्रिस्टल्स के लिए प्रसिद्ध है। क्रिस्टल्स म्यूजियम में गए तो जो ही अंदर गया तो वहाँ जो सामने एक गाइड महिला थी उसने देखते ही बोला कि नमस्कार भारत, आपका स्वागत है। बाकी सब कुछ उसने हिंदी में नहीं कहा, लेकिन एक वाक्य कहा तो मुझे गौरव महसूस हुआ कि मेरी मातृभाषा, मेरी मातृभूमि की भाषा यहाँ भी मेरा स्वागत कर रही है, मुझसे मिलने के लिए यहाँ भी मौजूद है।
1: देवनागरी लिपि और भारतीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर आपने लंबे समय तक काम किया है, आज इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: दरअसल हिंदी आज बोली तो बहुत जा रही है लेकिन लिखी कम जा रही है। आज हिंदी को देवनागरी में लिखने की बजाय अनेक लोग रोमन में लिखने लगे हैं। जैसे ये नए माध्यमों में SMS है या सोशल मीडिया पर लोग रोमन में लिखने लगे, तो देवनागरी लिपि जैसी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं, भाषाविद मानते हैं कि ऐसी और कोई नहीं है, क्योंकि देवनागरी में जो कुछ लिखा जाता है अधिक संभव वही पढ़ा जाता है। कोई पहली बार भी पढ़ेगा तो उसका सही उच्चारण करेगा, जबकि और भाषाओं में जो हम उसके स्थान पर अपना रहे हैं उसकी लिपि में ऐसा नहीं है। छोटे छोटे उदाहरण जो आपने 100 बार 1000 बार सुने होंगे, BUT और PUT, तो ये देवनागरी में नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, तो देवनागरी का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि केवल हिंदी नहीं, जो महाराष्ट्र की मराठी है, कोंकणी, यहाँ भोजपुरी और अनेक भाषाएं, यहाँ तक नेपाल की जो नेपाली भाषा है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो यदि भारत की सभी भाषाएं अपनी भाषा की अपनी लिपि के साथ साथ अगर देवनागरी को भी अपना लें तो भारत की एकता बहुत सशक्त हो सकती है, और उन भाषाओं के शब्द भी भारतीय भाषाओं में हिंदी की मुख्य धारा के अंदर आ सकते हैं। अभी हमें जो मजबूरी में विदेशी भाषाओं के शब्द लेने पड़ते हैं वो वहां से लिए जा सकते हैं। जैसे आज सर्वत्र चर्चा होती है फ्लाईओवर की, जबकि बंगला में इतना सुंदर शब्द हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद जानकारी ना होने की वजह से हम उड़ान पुल का इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से शब्द हैं। जैसे एक हमारे देश का एक रेल मंत्री बंगला रहा, तो उन्होंने एक ट्रेन चलाई दुरंतो। अब बंगला का शब्द आज हर भारतीय को उसका अर्थ मालूम है। तो अगर देवनागरी में उन भाषाओं का चलन भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाषाएं अपनी लिपि छोड़ दें, वो अपनी लिपि को रखें, लेकिन देवनागरी भी अगर इस्तेमाल की जाए तो उन भाषाओं का तो होगा ही विकास, भारत की एकता की कड़ी और सशक्त होगी।
1: जी, माता पिता पहले रोल मॉडल होते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के। आपके रोल मॉडल कौन रहे, आपके पथ प्रदर्शक कौन थे?
0: देखिए, अगर मैं अपनी बात को ही कहूँ तो सबसे पहले तो माता पिता ही होते हैं
1: जी।
0: और बल्कि मैं सच कहूँ तो पिता से अधिक मेरी माँ मेरी रोल मॉडल थी। लेकिन बदलते दौर के अंदर बच्चे के पहले रोल मॉडल होते हैं। जब वो बड़ा होता है तो विद्यालय में जाता है, उनमें से कोई शिक्षक ऐसे होते हैं। तो मैंने, मेरे क्लास टीचर थे उस समय गुरुजी कहते थे, थोड़ी देर पहले भी जिनका मैंने उल्लेख किया, स्वर्गीय जसोदानंद जी, मुझसे बहुत स्नेह करते थे। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। मैं उनको जब देखता था कि सादगी की प्रतिमूर्ति, जब भी समय मिलता कोई किताब लेकर पढ़ते रहते थे। संस्कृत के और गणित के प्रकांड विद्वान थे। मुझे उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उनका निवास स्थान था स्कूल से और 2-3 किलोमीटर दूर था, हमसे भी ज्यादा, लेकिन वो पैदल आते थे, मेरे घर के आगे से गुजरते और मुझे आवाज लगाते, और बहुत तेज चलते थे, तो मैं भी उनके साथ लगभग दौड़ता हुआ जाता, और वापसी भी मुझे छोड़ते, और रास्ते भर मुझसे संस्कृत की, गणित की और अनेक चर्चा करते रहते थे। आज भी मैं अपना गुरु उन्हें ही मानता हूँ, उन्हें ही अपना आदर्श मानता हूँ, और उनको स्मरण करते हुए जो मुझे सुखद अनुभूति होती है और मैं अपना सारा साहित्य जो कुछ मैं कर सका मैं उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ।
1: जीवन का कोई ऐसा अनुभव सर जिसने आपकी दिशा बदल दी हो, क्योंकि हर उम्र में

0: हर समय के अपने एक अलग अनुभव होते हैं, तो कोई एक ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगता हो कि जीवन की दिशा बदल दी हो?
1: मैंने बताया कि हरियाणा के अंदर रहे, उस समय पंजाब था, बाद में हरियाणा बन गया। वहाँ 10वीं कक्षा पास करने के बाद दिल्ली आ गए, यहाँ 11वीं में दाखिल होना था। उस समय हायर सेकेंडरी होती थी, सीनियर सेकेंडरी नहीं होती थी। वहाँ से प्रमाण पत्र ले लिया स्कूल छोड़ने का। स्कूल में पहुंचे, उन्होंने कहा इसमें ये कमी है, इसकी मोहर लगवा कर लाइए। कई दिन चक्कर लगवाने के बाद वो मोहर लगी। मैं फिर स्कूल पहुंचा तो उन्होंने कहा जी ये तो उस समय जो शिक्षा अधिकारी उसकी हो गई, लेकिन जब राज्य आप बदलते हैं तो वो जिला अधिकारी की भी मोहर लगती है। फिर वहां पहुंचे, ये सब आसान नहीं था। 3 महीने बीत गए, जिस दिन मोहर लगी और मैं यहाँ दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अब तो एडमिशन का टाइम खत्म हो गया, अगले साल आना। एक साल खाली बैठना घर में, लगभग रोने लगा घर पर आकर। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। किसी ने जानकारी दी कि प्राइवेट कर सकते हैं, मैं वहां पूछने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि 37 रुपये लगेंगे, इसमें से पता नहीं 17 या 27 रुपये फीस है और 10 रुपये हमारे हैं, तो हम आपका 11वीं में प्राइवेट एडमिशन करा देते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, घर आकर बताया मैंने। मैं इसे अपना दुर्भाग्य कहूँ कि सौभाग्य कहूँ, घर में 37 रुपये उपलब्ध नहीं थे और मैंने भूख हड़ताल कर दी। मैंने कहा मुझे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। 4th दिन हो गया, मैंने सिर्फ पानी पिया, अचानक मेरे पैर में चोट लग गई, बहुत खून बहने लगा, मेरी माँ रोने लगी। उन्होंने अपने कान की बाली उतार के मुझे दी कि बेटा इसको बेच दो और तुम 37 रुपये अपने स्कूल की फीस दे दो। मैंने कहा नहीं, आज से मैं घर से एक पैसा भी नहीं लूँगा, मैं खुद ही कोशिश करूँगा। मैंने दिन भर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया और उसके बाद जहाँ तक भी पहुँचा मैंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी स्कूल की फीस दी, अपनी किताबें खरीदी। और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि मेरी सबसे बड़ी जो विश्वविद्यालय है ये मेरी मेहनत मजदूरी रही। मैंने 1 महीना एक होटल पर जूठे बर्तन धोए हैं। वहाँ से जो मुझे अनुभव मिला उसी ने मुझे जीवन के मूल्य सिखाए। बेशक वहाँ से प्रमाण पत्र नहीं मिला उस यूनिवर्सिटी से, लेकिन इस यूनिवर्स को, इस विश्व को जानने का अवसर मिला। वो टर्निंग पॉइंट मैं उसे ही मानता हूँ और आज तक भी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई सहारा हो सकता है, कोई सबल हो सकता है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही हो सकता हूँ अपना। तो यदि हर बच्चे में ये भाव जागृत हो तो एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये निर्भरता समाप्त हो सकती है। और मुझे वो सब कुछ करके, वो कठिनाइयाँ, वो जो टर्निंग पॉइंट जिसने आपने जीवन का परिवर्तन बिंदु की बात की, मैं उसे बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मानता हूँ। मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उसने वो चुनौतियाँ दी, उन चुनौतियों से पर विजय पाने का भी मार्ग मुझे सुझाया।
0: जी, इतनी सक्रियता, इतना लेखन, इतनी जगहों पे जाना, इतने देशों की यात्रा, सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये साहित्यिक और सामाजिक यात्रा के बीच के लिए ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं?
1: किसी भी व्यक्ति में कोई ऊर्जा वो जुटा नहीं सकता, उसे ईश्वर देता, स्वतः प्रेरणा होती है। और जो कुछ भी मैं कर सका, मुझे रुचि रही। मैं आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ। मैं अब भी जब किसी देश में या अपने देश के किसी भी प्रांत में या विदेश में गया, मैं वहाँ के बच्चों के बीच में जाना, उनसे बात करना, उनके अनुभव को जानने में मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है। और मैं आज भी अपने आप को उन्हीं जैसा अनुभव करना चाहता हूँ। तो उन बच्चों के बीच में रह करके उनकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उसका एक अंश मुझे भी मिलता है, ये मैं इसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ। और मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ मैंने किया वो मेरा नहीं, वो परिस्थितियों का प्रभाव है, ईश्वर की कृपा है। वो ईश्वर ही ऊर्जा देने वाला है, उसने मुझे अब तक स्वस्थ रखा, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। यही सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ा वरदान है मेरे लिए।
0: आपने शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता जैसे अनेक क्षेत्रों में लंबे समय तक काम किया है। अगर आज आपकी अपनी पूरी यात्रा को एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे?
1: कि मैं एक यात्री के रूप में ट्रेन में बैठा हूँ और वहाँ बहुत से लोग से, बहुत सी परिस्थितियों से मुझे मिलने का अवसर मिला। उन परिस्थितियों पर मैं जो कुछ कर सका बस मैं यही मानता हूँ। और सच तो यह है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया परिस्थितियों ने किया, उस परमात्मा की दी हुई जो प्रेरणा ने दिया, जो मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले बाल्यकाल से जीवन में जिन्होंने लगातार मुझे प्रोत्साहित किया, तो इसलिए मेरी सारी यात्रा प्रेरणाओं का एक प्रसाद है।
0: बहुत अच्छी बात हुई आपसे विनोद बब्बर जी, कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: मेरा साहित्यिक सफर क्रम में अभी आप वरिष्ठ साहित्यकार श्री विनोद बब्बर से उनका साहित्यिक सफर सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रही थी वरिष्ठ लेखिका श्रीमती वंदना अग्रवाल। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही हैं युवा पत्रकार डॉक्टर तन्वी त्यागी।
3: विगत 25 जून को साहित्यिक संवाद कार्यक्रम के दौरान लेखक श्री रोहित दुबे ने युवाओं के लिए आत्म अनुशासन

शासन, व्यक्तित्व विकास और संवाद कौशल पर जोर दिया। उनका मुख्य संदेश यह रहा कि सिर्फ डिग्री पर्याप्त नहीं, बल्कि भाषा, विचार और व्यवहार में भी निखार जरूरी है। यह बात सीधे किसी पुरस्कार या पुस्तक घोषणा के बजाय साहित्यिक विमर्श की दिशा को दिखाती है। 28 जून को श्रद्धा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के प्रांगण में अजय साहित्यिक एवं सामाजिक मंच

प्रातः 9:30 बजे प्रारंभ होकर संध्या तक चले इस विराट साहित्यिक आयोजन ने साहित्य प्रेमियों, कवियों एवं विद्वानों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां शब्दों की साधना और सृजन की सरिता पूरे दिन अविरल बहती रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी, हरियाणवी व संस्कृत के विद्वान व हरियाणा के राजगीत लेखक डॉ. बालकृष्ण शर्मा ने की। कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं संयोजन में श्री विनोद कौशिक, डॉ. प्रीता पवार, श्री राजपाल यादव, श्रीमती रश्मि अभय, श्रीमती मंजू तवर, डॉ. विकास शुक्ल, श्रीमती प्रेरणा सिंह, श्री विवेक एरन तथा श्रीमती पारुल राज की उल्लेखनीय भूमिका रही। श्रद्धा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉ. गजराज सिंह आर्य के आत्मीय आतिथ्य एवं उत्कृष्ट व्यवस्थाओं ने आयोजन की गरिमा को और अधिक ऊंचाई प्रदान की। इस साहित्यिक महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्री दिनेश रघुवंशी और गाजियाबाद से नीरज त्यागी जी की स्नेहिल व प्रबुद्ध उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से सबका मन मोह लिया। हरियाणा गीत के रचयिता बालकृष्ण शर्मा जी को सम्मानित किया गया। 2 सत्रों में संपन्न हुए इस आयोजन के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IPS श्री सुधीर चौधरी तथा द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि IG जेल हरियाणा डॉ. संजय सिंह रहे। विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ गीतकार श्री भूदत्त शर्मा जी, नीरज त्यागी जी, वरिष्ठ गजलकार डॉ. गुरविंदर बांगा, वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा, श्रीमती अलका सैनी, वरिष्ठ कवि श्री सत्येंद्र शर्मा, प्रतिमा शर्मा पुष्प जी, श्रीमती नेहा वैद, श्रीमती भावना सक्सेना सहित अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों की गरिमामय उपस्थिति रही। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 60 कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का प्रभावशाली पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ साथ नवांकुर युवा कवियों ने भी अपनी सशक्त अभिव्यक्ति से खूब सराहना बटोरी। विशेष रूप से कबीरा हालाती शायर सत्यम पांडे, सागर ठकराल, रुद्र प्रताप, विशाल, नेम सिंह सहित अन्य युवा कवियों ने अपने ओजपूर्ण एवं भावपूर्ण काव्यपाठ से भरपूर तालियां अर्जित की। इस अवसर पर अजय युवा मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आलेख प्रतियोगिता के विजेता युवा प्रतिभागियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत भी किया गया। 29 जून को सप्ताह के दौरान विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद, युवा लेखन और डिजिटल साहित्य की बढ़ती भूमिका पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। भारतीय भाषाओं पर विचार विमर्श जारी रहा। विशिष्ट साहित्यकारों ने कहा कि भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद से साहित्य का पाठक वर्ग बढ़ रहा है और युवाओं में भी इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन के अवतरण दिवस 1 जुलाई की शाम को देवप्रभा प्रकाशन का 6ठा कार्यक्रम बातें कुंवर की संस्मरण और काव्य संध्या का आयोजन गरिमामय ढंग से संपन्न किया गया। इसमें अनेक कविगणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में देश भर से आए कवियों और साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया। आयोजन की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉ. मधु चतुर्वेदी ने की, जबकि मंच संचालन में वरिष्ठ रचनाकारों ने सहभागिता निभाई। साहित्य सम्मान, संस्मरण पाठ और कविता पाठ के क्रम में डॉ. बेचैन की रचना धर्मिता, व्यक्तित्व और हिंदी काव्य जगत पर उनके स्थायी प्रभाव पर विस्तार से चर्चा हुई। दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ डॉ. कुंवर बेचैन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके लोकप्रिय गीतों और गजलों की पंक्तियां स्वरबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गईं, जिन पर श्रोताओं ने भावभीनी प्रतिक्रिया दी। संस्मरण सत्र में उनके सहयात्रियों, शिष्यों और मंच सहकर्मियों ने मंचीय कवि सम्मेलनों से जुड़े संस्मरण साझा किए। किस तरह डॉक्टर बेचैन ने आधुनिक गजल को आम जनजीवन के निकट लाते हुए नई संवेदनात्मक भाषा दी और युवा पीढ़ी के कवियों का मार्गदर्शन किया। काव्य सत्र में प्रतिभागी कवियों ने गीत, गजल और नई कविता के माध्यम से उन्हें स्मरण किया। कई कवियों ने उनकी रचनाओं के पाठ के साथ अपनी समर्पित कविताएं पढ़ीं। समापन सत्र में डॉक्टर मधु चतुर्वेदी ने अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए कहा कि डॉक्टर कुंवर बेचैन की काव्य परंपरा मानवीय सरोकारों, सरलता और मंच संवादिता की निरंतर कड़ी है।

0: उनका काव्य सौंदर्य बोध और सामाजिक संवेदना का संतुलित प्रतिमान है।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर तन्वी त्यागी। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ देर के बाद प्रसारित होगा कार्यक्रम हमारे अतिथि। इसके बाद आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। मिट्टी दी महक के बाद समय होगा समाचारों का। समाचार के बाद प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भारत के उच्चायुक्त और पूर्व राजनयिक राधा वेंकट रमण से नीलम मलकानिया की बातचीत। प्रस्तुति है काजल सूरी की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।

0: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारी अतिथि हैं सुश्री राधा वेंकटरमन जी। आप विदेश सेवा अधिकारी रही हैं, पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आपने कार्यभार संभाला और सर्बिया, बेलग्रेड, जर्मनी, बेलारूस, पोर्तुगल, भूटान, श्रीलंका और स्वाजीलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत ही विविधता भरा समृद्ध अनुभव है आपका। तो आज हम राधा जी से बातचीत करते हुए बहुत कुछ जानेंगे विदेश सेवा के बारे में। राधा जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: जैसा कि आपका परिचय हमने बताया अपने श्रोताओं को, तो इतने सारे नाम आपके साथ जुड़ते हैं, तो एक बहुत ही लंबा ये सफर आपका रहा होगा। आई एम श्योर बहुत कुछ है आपके पास हमसे शेयर करने के लिए, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो पहली आपकी पोस्टिंग थी भारत से बाहर, वो कब थी और कैसा अनुभव आपका था?
1: 83 में अप्रैल में मुझे अपना ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम देना था। वापस आई, फिर मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लिया, तो काम सीखना शुरू किया। मेरे साथ जो काम करते थे बहुत ही इतने अच्छे लोग थे कि आज के दिन तक, जो हम अभी 45 साल बाद की बात कर रहे हैं, अभी भी मेरे दोस्त हैं। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, बेबी ऑफ द टीम जिसको बोला जाता है, तो उन्होंने सबने अपने मुझे अपने अंडर में विंग में लिया, और तो मेरा ग्रास्पिंग पावर भी बहुत अच्छा था, तो मैंने बहुत अच्छा पिकअप किया। और करीब 3-3.5 साल मैंने दिल्ली में काम किया
0: जी,
1: जिसको हम मिनिस्ट्री में हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। तो मेरे उस टाइम की जो मेरी बॉस थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें तो स्टेनोग्राफी आती है, तुम स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रही हो? तो मैंने कहा कि मैं ना किसी के साथ काम नहीं करना चाहती स्टेनोग्राफर। कहती मेरे साथ तो करोगी? तो उन्होंने मुझे इनक्रेज किया कि तुम स्टेनोग्राफर से एग्ज़ाम दो। और हमारा उस टाइम में मिनिस्ट्री के अंदर एक एग्ज़ाम होता था, तो हमने वो उसमें बैठ गई मैं। और ये बिलीव नहीं करोगी, आई टॉप द लिस्ट, जितने लोगों को चुना गया मैं नंबर 1 पे हूँ। तो मेरे से ज़्यादा मेरी बॉस, जिन्होंने मुझे इनक्रेज किया, वो खुश हुई। मैं कहा मैंने कहा और तुमने लिया और तुम अव्वल नंबर पर आई हो। फिर उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री में ही जो सेक्शन हमें डिप्लॉयमेंट देता है इधर काम करने के लिए, उनसे जाके बोला ये लड़की स्टेनोग्राफर बनी है मेरे साथ काम करने के लिए, तो आप और किसी के साथ इसको नहीं अटैच कर सकते, मेरे साथ अटैच करिए। तो इसलिए स्टेनोग्राफर्स को ना और जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलता है इंडिया से बाहर जाने का, बिकॉज वो किसी ऑफिसर के साथ अटैच होते हैं और उनके साथ उनका पर्सनल काम करते हैं, तो उनका बाहर जाने का मौका भी जल्दी आता है। इस कारण क्लेरिकल स्टाफ होने के बावजूद मेरे को 7 साल नहीं वेट करना पड़ा, 3.5 साल में मेरे को सबसे पहले इंडिया से बाहर जाने का मौका मिला। तो मेरा सबसे पहला असाइनमेंट ही सीधे यूरोप में हुआ
0: जी।
1: और मैं 24 साल की थी।

0: तो 1987 में मैंने मिनिस्ट्री ज्वाइन किया था 30 दिसंबर 1982 को, और मई 86 में मेरे को यूगोस्लाविया जाने का मौका मिला।
1: जी, तो आपका लगभग 40 साल का करियर
0: नौकरी
1: रहा है जी, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस दौरान कोई ऐसी विशेष बात है जो आपको बहुत याद आती है, या कोई ऐसा टाइम गुजरा हो जो बहुत ही टफ था और वो आपने सहज ही कर लिया और आज लगता है कि वह बड़ी उपलब्धि थी।
0: हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। जो फाइनल मेरा असाइनमेंट था, जो स्वाजीलैंड है
1: जी
0: जिसको एस्वातिनी कहा जाता है आजकल, तो एस्वातिनी में मेरे रहते हुए छोटा एक सिविल अनरेस्ट भी हुआ था, मगर गवर्नमेंट ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने 3-4 दिन में उसको कंट्रोल कर लिया। तो हम कोई यू नो बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल किया, या इतना बड़ा चैलेंजिंग काम तो मैंने नहीं किया है।
1: इंडिविजुअली नहीं किया, लेकिन कलेक्टिवली वो सबने
0: कलेक्टिवली
1: हैंडल की
0: या
1: सिचुएशन।
0: वो हमने सबने, जो वहाँ 7-8 एम्बेसी हैं स्वातिनी में, तो हम सबने मिल के बात करके जो भी किया था। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने भी वहाँ एक्शन लिया तो वो कंट्रोल हो गया। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो उस जमाने में हमारे एम्बेसी वहाँ करीब 25 कंट्रीज में थे, तो गवर्नमेंट 2018 के करीब मेरे ख्याल एक कैबिनेट डिसीजन हुआ कि हमारी जो है फुटप्रिंट्स बढ़ने चाहिए अफ्रीका
1: जी
0: में और एम्बेसीज बनने चाहिए। और उन्होंने आइडेंटिफाई 18 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया जहाँ नए एम्बेसी
1: जी
0: खोलने हैं। तो एक अप्रैल 2018 की बात है जब वो कैबिनेट डिसीजन हुई। तो उसके बाद जो है काफ़ी स्पीड से काम किया गया और इन एम्बेसियों को खोलने का पूरा काम जो है तेज़ी से हुआ। और 2019 के बिगिनिंग में मैंने अप्लाई किया था स्वाजीलैंड के लिए, स्वातिनी के लिए। तो जब मैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबिलिटी देख रही थी, तो मुझे
1: जी
0: लगा कि स्वाजीलैंड जो है, स्वातिनी जो है, वो एक पीसफुल देश है, छोटा देश है, और हमारा पहली बार एम्बेसी खुलने वाला है। तो कंपैरेटिवली मैं बाकी अफ्रीकन पड़ोसी देशों को
1: जी
0: चेक करूं तो ये मेरे लिए और सूटेबल होगा। इस कारण मैंने एप्लीकेशन दिया था। और क्योंकि पहले मोजाम्बिक में जो हमारा हाई कमीशन था, स्वाजीलैंड एक छोटा सा लैंड लॉक कंट्री है, किंगडम है, राजा है वहाँ, और उनके दो ही नेबर्स हैं।
1: जी
0: रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एक नेबर है जो तीन तरफ से उनको घिरता है, और एक तरफ मोजाम्बिक है। तो उनके वो दो ही नेबर्स हैं, और एक छोटा सा किंगडम है, और बहुत ही सुंदर देश है, और मौसम बहुत अच्छा है, कूल
1: जी
0: है। तो एस्वातिनी सारे मेरे उससे पीसफुल देश है,
1: चेकलिस्ट पूरी हो रही थी
0: हो
1: वहां
0: रही है।
1: पर।
0: उसके बाद प्रोसेस जो है सब अंदरूनी है, बाहर लोगों को कुछ पता नहीं चलता है।
1: जी
0: तो मैं तो नहीं जानती क्या प्रोसेस था, और बट एक्सेप्ट हुआ और अनाउंसमेंट भी हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ,
1: जी
0: और एक एक नए एम्बेसी एस्टेब्लिश कर, नया हाई कमीशन एस्टेब्लिश करने के लिए। आपको पता होगा हाई कमीशन और एम्बेसी में क्या फ़र्क है।
1: जी
0: हाई कमीशन है एक कॉमनवेल्थ का मेंबर जो है, जो पहले की ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था उसके बाद कॉमनवेल्थ का मेंबर बना। वहाँ जो भी हमारा दूतावास खुलेगा उसका
1: जी
0: नाम हाई कमीशन
1: हाई
0: होगा,
1: कमिश्नर जी
0: और जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ के नहीं हैं वहाँ हमारी एम्बेसी बनेगी, राजदूतावास को एम्बेसी बोला जाएगा। तो एस्वातिनी और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कॉमनवेल्थ कंट्रीज होने की वजह से जो ऑफिस हमारा खुला एस्वातिनी में, उसका नाम उसको हाई कमीशन नाम दिया गया। तो
1: जी
0: जो भी ऑफिसर रिप्रेजेंट करेगा तो हाई कमिश्नर कहा जाएगा।
1: जी
0: तो मेरा हाई कमिश्नर टू एस्वातिनी सिलेक्शन हुआ था मेरे ख्याल से अप्रैल 2019 में, और मुझे बोला गया था कि जल्द से जल्द जाके वो एम्बेसी खोला जाए।
1: आप राधा जी 7-8 देशों में आप रही हैं, अलग अलग पदों पर आप रही हैं और आपने वहाँ की संस्कृति को नज़दीक से देखा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विदेशों में भारतीय मूल के जो लोग हैं, एक बहुत बड़ी आबादी उनकी रहती है, तो ऐसे में जो अभी हम भारत की विकास यात्रा की बात करते हैं, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो योगदान कर सकते हैं इसमें?
0: वो योगदान एक्चुअली बहुत कर रहे हैं ऑलरेडी।
1: जी
0: जो अब आप हम सभी लोग जानते हैं जो इंडियन होता है ना वो दिल से इंडियन होता है
1: जी,
0: उसको वो कभी अपने रूट्स को जो है अपने आप से अलग नहीं कर पाता है। तो जितने भी इंडियंस बाहर गए हैं और वो काम कर रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियली वो बहुत ही यू नो अपने आप की सिचुएशंस उन्होंने बहुत अच्छी कर ली है अपनी, तो वो वहाँ रहना तो चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं, बट उनका दिल हमेशा इंडिया के साथ ही रहता है। तो आपको बहुत ही कम एनकरेजमेंट से आप उनको अपने लिए जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, और वो करेंगे भी इंडिया के बारे में। मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में तो उतना नहीं, वैसे तो आपको रेमिटेंस वगैरह तो बहुत मिलता ही है
1: जी,
0: इंडिया का रेवेन्यू बहुत उससे बनता है, तो यहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए वो सपोर्ट करते हैं, यस कई लोग करते हैं।
1: हम भारत की सॉफ्ट पावर की अगर बात करें, योगा है या सिनेमा है या हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज जो हैं, तो ये कैसे अलग अलग देशों को आपस में जोड़ती हैं, भारत की छवि क्या बनाती हैं?
0: इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ही बड़ा है
1: जी,
0: परहैप्स कुछ तरीके से हमारा गवर्नमेंट उसको जो है पूरा उसका 100% यूटिलाइजेशन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि एक गवर्नमेंट के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं और उनके बहुत सारे प्रायोरिटीज होते हैं। तो हमारा सॉफ्ट पावर जो है इमेंस है और वो जो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने जैसे कहा यूरोप में 4 देशों में बाद काम किया, उसके बाद मैंने भूटान में काम किया, उसके बाद श्रीलंका में काम किया, और फाइनली मैंने इस्वातिनी में काम किया। वहां तक इस्वातिनी तक कई सालों से वहां के स्टूडेंट्स इंडिया में आके पढ़ रहे हैं, ये एक और सॉफ्ट पावर है हमारा कि हम स्कॉलरशिप भी देते हैं उनको और कुछ तो अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग भी यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टॉप लेवल के होते हैं
1: जी,
0: और हमारा एक प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री का, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में आईटेक बोला जाता है उसको
1: जी,
0: उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग देते हैं। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो हमारे मंत्रालय के साथ जुड़ के फॉरिन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। फॉरिन स्टूडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं वहाँ उनको मौका दिया जाता है
1: जी,
0: ताकि वो जाके अपनी गवर्नमेंट में बेटर तरीके से काम करें। और जैसे हिंदी भाषा की जो है पॉपुलैरिटी इतनी है फिल्म म्यूजिक की वजह से, फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका की बात आपको बताऊंगी, वहाँ एक जुनून है बच्चों में हिंदी सीखने का। मैंने उनसे पूछा अभी, तो कहते हैं कि हम हिंदी भाषा को प्यार करते हैं। तो क्यों सीखना चाहते हो? हम बहुत सारे हिंदी फिल्म्स देखते हैं, हिंदी सीरियल्स देखते हैं, मगर हम उसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं
1: जी,
0: ये नहीं कि हमने फिल्म देखा और वो सुपरफिशियल उसका नॉलेज नहीं, हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं डायलॉग क्या बोला जा रहा है, क्या क्यों बोला जा रहा है। तो उन्होंने हिंदी सीखना शुरू किया। इसी दौरान मेरे को एक मौका मिला और यहाँ एक एक्सपर्ट थे जो रेलवे मिनिस्ट्री में डायरेक्टर हिंदी रह के रिटायर हो चुके थे
1: जी,
0: उनके साथ मेरी किसी बात में मुलाकात हो गई, हम दोनों पार्टनर्स बन गए। किस बात पे? हिंदी सिखाने के बात पे
1: जी।
0: हिंदी के ऊपर जो मेरा लगाव और प्यार है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही डीप है
1: जी,
0: और ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपनी मातृभाषा को भूल गई हूँ इस प्रोसेस में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मातृभाषा में भी उतनी ही प्यार रखती हूँ जितना मैं हिंदी में रखती हूँ। तो हमने एक इनिशिएटिव किया कि मैं पोस्ट रिटायरमेंट जो है उनको सपोर्ट करूंगी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली, और वो एक क्रिएट करेंगे। हमने एक वेबसाइट खोला है,
1: वो तो स्टूडेंट्स इस तरह की वेबसाइट से बल्कि बहुत लाभ उठाते हैं,
0: स्टूडेंट्स माने कोई भी जो हिंदी सीखना चाहे, जो अपनी हिंदी को इम्प्रूव करना चाहिए, बोलचाल की हिंदी को
1: जी।
0: हम इस पर कोई एग्जाम नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, आपको टेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम सिंपली
1: तो
0: चाहते हैं कि
1: आप कैसे सीखते हैं उस वेबसाइट से।
0: इसका नाम है एडुटेनमेंट, हमने एडुटेनमेंट इसलिए नाम रखा है उस वेबसाइट का, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट
1: जी।
0: तो क्योंकि मैंने ये श्रीलंका में देखा कि लोगों का प्यार हिंदी फिल्मों के ऊपर इतना है, और वो जो आपने देखा होगा इंडियन डायस्पोरा जहाँ भी रहता है या इंडियन डायस्पोरा नहीं भी रहता हो, जैसे रशिया फॉर एग्जाम्पल है जो राज कपूर को प्यार करता है, राज कपूर नरगिस फिल्में या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में इतनी पॉपुलर है वहाँ आज के दिन तक,
1: बिल्कुल
0: वो हिंदी को प्यार करते हैं, वो हिंदी फिल्मों को देख के हिंदी सीखा है उन्होंने। तो वो हमने कहा है कि वो अट्रैक्ट होंगे इससे, और हमने हिंदी फिल्म गानों को चुना। तो हमने कहा ऐसे ऐसे गाने हम चूज करेंगे, उस गाने को लेके हम ग्रामेटिकली उसमें टीचिंग पॉइंट्स जो हैं वो निकाल के वो मेरे एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया। मैंने तो मेरा ये मन में जो इंस्पिरेशन आ रहा था कि इसको लेके हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं।
2: पूर्व उच्चायुक्त और राजनयिक राधा वेंकट रमन जी

हमारे अतिथि कार्यक्रम में रोचक बातें हो रही हैं। अगले सप्ताह हम आपको सुनवाएंगे इस इंटरव्यू का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम प्रोड्यूसर काजल सूरी के साथ अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को हमारे अतिथि कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। इसमें आज आपने सुना राधा वेंकट रमन, कड़ी पहली, ये भारत के उच्चायुक्त एवं पूर्व राजनयिक। आपसे बात कर रहे थे नीलम मलकानिया। हम अपने सुनने वालों को बता दें 10:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। इसमें हम आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों को शामिल करेंगे। आप अपने फरमाइशी फिल्मी गीत हमें भेज सकते हैं ip.radio.delhi@gmail.com पर। ईमेल आईडी एक बार फिर नोट कर लें ip.radio.delhi@gmail.com। 9:30 होने को हैं। अब वक्त है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसे ने कहा है कि राह कोई भी सौखा नहीं हुंदा, बस चलण लई हौसला होना लाजमी है। आओ जानदे हां अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज तुसी सुनोगे वार्ता जिस दा विषय है पेंडू औरतां दी विकास विच भूमिका। वार्ताकार होणगे जसविंदर कौर। इस तों बाद एक आवाज लड़ी हेठ गुरमीत बावा दी आवाज विच गीत भी सुनवाए जाणगे। पर सब तों पहला एक जरूरी विषय ते कुछ गल्लां। अज दे डिजिटल युग विच इंटरनेट ते स्मार्ट डिवाइसां बिना जीउणा औखा हो गया है। बैंकिंग तों लै के खरीददारी, ऑफिस वर्क तों लै के सोशल मीडिया, हर चीज ऑनलाइन हो गई है। पर इस सहूलत नाल एक वड्डा खतरा भी जुड़िया होया है, ओह है साइबर अपराध दा। सब तो पहला समझते हाँ कि साइबर सुरक्षा है कि साइबर सुरक्षा ओ उपाय ने जिना राही असी अपने डिजिटल डाटा, डिवाइसा ते नेटवर्क नू अनअधिकारित पहुंच, वायरस, हैकिंग ते होर खतरियां तो बचाउंदे हाँ। इस विच तकनीकी टूल्स, उपभोक्तावां दी जरूरतां ते सुरक्षा नीतियां शामिल ने, जिस नाल बैंक खाते, आधार कार्ड, पासवर्ड ते फोटोआं वर्गी निजी जानकारी हैक होण तों बचाई जा सकदी है। कंपनियां दा डाटा लीक होण नाल करोड़ां रुपए दा नुकसान हो सकदा है। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग वधण नाल साइबर खतरे भी वध रहे ने। आम साइबर खतरे कई तरह दे हो सकदे ने, जिवें झूठियां ईमेल्स ते मैसेज राहीं निजी जानकारी चोरी करना। माहिरां दा मानना है कि साइबर सुरक्षा दे कुछ कारगर उपाय ने, जिवें मजबूत पासवर्ड, लंबे वख-वख अक्षरां वाले पासवर्ड वरतों करके 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखी जावे, भरोसे योग एंटीवायरस इंस्टॉल किया जावे, फोन, कंप्यूटर ते एप्स नू हमेशा अपडेट रखो, अनजान लिंक्स ते क्लिक ना करो ते ईमेल जां व्हाट्सएप उत्ते आए लिंक्स तों बचो, पब्लिक वाईफाई दी वरतों वेले सावधानी रखी जावे, बैंकिंग काम लई वरतो तां VPN वरतो, अपने बच्चियां ते बजुर्गां नू भी साइबर खतरियां बारे जागरूक करो। साइबर सुरक्षा हुण इक विकल्प नहीं बल्कि लोड़ बन गई है। जिवें असी

0: घर का ताला लाउंदे आ, उसे तरह अपने डिजिटल घर यानी कि डाटा नूं भी सुरक्षित रखना चाहिदा है। हर नागरिक नूं अज दे समें विच इस बारे सुचेत ते सिखित होण दी लोड़ है। ते आओ हुण सुणदे हां वार्ता जिसका विशा है पेंडू औरतां दी विकास विच भूमिका। वार्ताकार ने जसविंदर कौर।
1: औरत नूं तां रब ने ही वर दे के इस धरती ते भेजा है, जननी दे रूप विच, मां दे रूप विच, घरेलू समाजिक रिश्तियां रूप विच, परिवार दे विकास लई जूझन वाली अंथक जी। भारतीय समाज की 60% आबादी पेंडू इलाकों विच रहिंदी है। समय दे विकसित पैड़ां ते तुरन दा असर शहर तों पिंडां वल वी होया। विकास दा चक्का पिंडां दे विकास लई वी तुरन लगा। पहलां इस विकास दे भाईवाल पेंडू मर्द ही बने, क्योंकि औरत नूं तां केवल घर सांभण वाली, पर्दे विच रहिण वाली मैंबर दे तों वध कोई होर अख्तियार नहीं सी। खेतीबाड़ी भी लगे इन्हां परिवारां ने जीवन पद्धर, आर्थिक मौके दे नाल नाल समाजिक समानता नूं सुधारन वल वी ध्यान देना शुरू कीता। भारत दे सरकारी तंत्र ने पेंडू समाज विच इतिहासक सुधारां, तकनीकी सुधारां अते नीतियां दखल अंदाजिया राहीं विकास दे नवे राह मुहैया करवाए। विद्या दे प्रचार ते प्रसार ने औरतां नूं वी जागरूक कीता। स्कूल ते फिर कॉलेज दी पढ़ाई ने औरतां दी बराबर दी भागीदारी नूं हल्लाशेरी दित्ती। सरकारी स्कीमां ने आर्थिक पक्खों इन्हां नूं मजबूत करन लई घरेलू, घट पढ़ियां, अनपढ़, विधवा औरतां नूं महिला उद्यमी वजों स्थापित करन लई कर्जे भी मुहैया करवाए। औरतां दे हुनर नूं दुनिया सामने लियाउण दी इस चेटक ने कमाल दा असर कीता। पेंडू औरतां वी समाजिक अते आर्थिक विकास दी रीढ़ दी हड्डी हन। पहले घरेलू पशुआं दी सांभ संभाल ते खेतां विच जा के निक सुख करन तक ही सीमित सन, पर अजोके समय वह खेतीबाड़ी दे कम्मां, बिजाई गुडाई, फसलां दी कटाई दे नाल नाल पशु पालन विच अहम योगदान पा रही हैं। देश की भोजन सुरक्षा नूं मजबूत करन लई मर्दां दे बराबर योगदान पा रही हैं। आर्थिक पद्धर ते अपने परिवार की मदद करके चंगा भविख बना रही हैं। जिवें कि असीं जानते हाँ कि पेंडू औरतां ने खेतीबाड़ी अते तकनोलॉजी के आधुनिकरण विच महत्वपूर्ण तरक्की की है। भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद ICAR वालों नमो ड्रोन दीदी वर्गियां पहलकदमियां राहीं पेंडू औरतों नूं सिखलाई दित्ती गई है, जिस नाल उन्हां नूं तकनीकी तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। भारत विच नवे खेतीबाड़ी विकास नूं अगे वधाउण विच पेंडू औरतों की कार्यशैली शलाघायोग है। पिंडां दी भलाई लई कार्यशील स्वय सहायता समूहां विच काम करके अते घरेलू उत्पादां नूं बनाउण दे छोटे छोटे कारोबार जिवें सिलाई कढ़ाई बुनाई, भोजन पदार्थों नूं सुरक्षित करके अचार मुरब्बे चटनी मसाले बनाउण, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वर्गे कम्मां, मोमबत्तियां बनाउण, टोकरियां अते होर कई काम करके अपने लुके हुए कौशल नूं लिशका भी रही हैं। देश विदेश विच इन्हां उत्पादां दी पहुँच कारण आर्थिक तौर पर भी अपनी अते अपने परिवार की मजबूती विच हिस्सा पा रही हैं। इस नाल पेंडू जीवन की जीवन जाच विच भी बदलाव आए हैं। भारत के पेंडू इलाकों की औरतों ने अपनी रवायती कला विच मधुबनी पेंटिंग, फुलकारी, चंदेरी बुनाई अते बांस दीआं कलाकृतियां नूं कौमांतरी पद्धर तक पहुँचाया है। कई स्वय सहायता समूहों ने इस कला की कदर करते हुए इन्हां दी विदेशों विच वपारक पद्धर ते पहुँच करवाई, जो सिर्फ औरतों की तरक्की ही नहीं सगो देश दे विकास विच पेंडू औरतों की हिस्सेदारी है। पेंडू औरतां आर्थिकता दे नाल नाल समाजिक पद्धर नूं भी उच्चा चुक रही हैं। साफ सफाई वाल भी ज़्यादा ध्यान दिता जा रहा है ते बीमारियों तो भी बचा हो रहा है। सरकारी स्कीमां दा लाभ पेंडू औरतों की पहुँच विच हो रहा है। पिंड दी औरतां ना केवल रवायती घरेलू कम्मां जां हुनर दे ज्ञान की वरतों करके विकास विच शामिल हुई हैं, सगों इस रवायत नूं तोड़ के आत्मनिर्भर बनने लई कारां, टैक्सियां, ट्राले, बसां दे ट्रक भी चला रही हैं अते चंगी कमाई करके भविख नूं सुनहरा कर रही हैं। ITI तों वोकेशनल ट्रेनिंग, वैल्डिंग वर्गे काम सीख रही हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीमां अते गैर सरकारी संस्थावां वालों पेंडू औरतों की सिखलाई लई विशेष कार्यशाली वर्कशॉप विच भी वध चढ़ के हिस्सा लै रही हैं। इस सिक्ख्या की गड्डी ते सवार होके विकास की राह ते तुर रही हैं।

हुणे तुसी गुरमीत बावा दी आवाज़ विच लोक गाथा ढोल सम्मी सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हाँ ये लोक गीत गुरमीत बावा दी आवाज़ विच।

सानू हाल दिला दे, दस गोरिये नी सानू हाल।

डिग पई नी कुड़ी शीश महल तो। गुरमीत बावा दी आवाज विच हुणे तुसी ए लोक गीत सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हां अगला गीत गुरमीत बावा दी आवाज विच।

कोरा कुजानी ठंडा ठार पानी सानू छिटड़े मार जगाउंदा ए। गुरमीत बाबा दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए गीत सुन रहे सी। असी तुहानू दस दईए तुसी सुन रहे हो एक आवाज़ लड़ी हेठ गुरमीत बाबा दी आवाज़ विच गीत। ते आओ जांदे जांदे सुनदे हां गुरमीत बाबा दी आवाज़ विच जुगनी।

उम्मीद बाबा दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए लोक गीत जुगनी सुन रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडवे 366.3 मीटर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर

0: फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Vikasit Udan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: Prime Minister also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1,875 rupees per quintal to 2,125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Renowned Pandavani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tijan Bai has passed away. She had been suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. She breathed her last at around 3:15 a.m. today. With her powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Tijan Bai gave Pandavani a new identity not only across India but also internationally. Her remarkable ability to bring the stories of the Mahabharata to life on stage made her one of the most celebrated exponents of Indian folk culture. In recognition of her outstanding contribution to Indian folk art, she was honoured with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan, the country's second highest civilian award. Prime Minister Modi has expressed grief at the passing away of the renowned Pandavani singer Tijan Bai. In a social media post, Mr. Modi said that she earned global recognition for this folk art form from Chhattisgarh through her magnificent performances. The Prime Minister said that her demise is an irreparable loss to the world of art and culture. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year, with 32,313 devotees offering prayers at the cave shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra, registering a notable increase of

0: In a statement, Australian Prime Minister's office said, as world's fourth largest and fastest growing economy, India is a critical economic partner for Australia. Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez has said that the death toll after back-to-back earthquakes has risen to 2,954 and more than 16,000 people were injured. He further said that almost 16,000 people had been left homeless. The rescue operation is still underway after the country was hit by most powerful quakes in over a century. In the FIFA World Cup, France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute after VAR awarded France a spot kick. France will now face Morocco in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, सीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी, जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश और अपने पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी पता है ipradiodelhi@gmail.com। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट नवीन सक्सेना। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
2: आज के इस प्रोग्राम में 10:10 से लेकर ठीक 11 बजे तक शामिल करेंगे वो तमाम गीत और वो तमाम नाम जो भेजेंगे हमें संदेश। और दोस्तों, पहले ही गाने से आपको पता चल जाएगा आज हम आपके साथ कौन सा संदेश एक्सेप्ट कर रहे हैं और कौन सा संदेश हम आपको सुनाना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस उसके साथ हमें शेयर करेंगे।
1: बिल्कुल, और ये शेयर तो करेंगे ही, लेकिन नवीन, अगर हम देखें तो बाहर का जो मौसम है आज दिल्ली का, थोड़ी उमस ज़रूर है, लेकिन अगर हम IMD की बात करें, यानी भारतीय मौसम विभाग की अगर हम बात करें, तो उसने आज बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। और कभी कभी जब तपती गर्मी के बाद, थोड़ी उमस के बाद हल्की सी बारिश की फुहारें पड़ती हैं, तो नवीन लगता है ना कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि बरसात की रात या बरसात की सुबह, दिन और खामोश फिजाएं दिल की किताब में कई अफसाने लिख जाती हैं।
2: और अगर थोड़ी सी बात को हम साहित्य कर देना, तो सिद्धार्थ होता क्या है कि जब मन बहुत उदास होता है, बहुत दुखी होता है, तो आंखों से मोती बरस पड़ते हैं। बस सावन की बूंदें ऐसे ही हैं, जैसा सिद्धार्थ ने कहा कि भाई बहुत उमस है। अगर आपके मन में, आपके दिल में बहुत दुख है, बहुत उमस है, कुछ कहना चाहते हैं ना, आपकी आंखें बोल देती हैं, आंसू टपक पड़ते हैं, बस समझिएगा यही बारिश की बूंदें हैं, यही सावन
1: तो
2: की बूंदें हैं।
1: नवीन, आपकी बात पर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि भीग कर बारिश में यूं मुस्कुराना सीख लिया, जिंदगी ने गम दिए तो हमने गुनगुनाना सीख लिया।
2: बहुत सुंदर, वाकई गुनगुनाना भी सीख लिया, मुस्कुराना भी सीख लिया, बातें करना भी सीख लिया। और ये सब हमने सीखा है जब हम अपने पसंदीदा गीत सुनते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। अब देखिए ना सिद्धार्थ, कार्यक्रम शुरू हुआ है और लगातार मैसेज जो है हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होने लगे हैं। माननीय RJ सिद्धार्थ जी और सक्सेना जी, प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा, नवीन का और सिद्धार्थ का आपको बहुत बहुत बहुत नमस्कार। आप गीत सुनना चाहते हैं, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से लिखने वाले हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, और कहते हैं कि हमारा नाम शामिल कीजिएगा गीत में, ज़रूर आपका नाम शामिल करेंगे।
1: और इन्होंने बरसात का गीत भी भेजा है हमें। बिल्कुल, मौसम के हिसाब से एकदम ये चल रहे हैं, अच्छी बात है। हमारी आज की थीम है वो हम कोशिश करेंगे कि हम मौसम पर रहें, बरसात पर रहें। और हमारा एक अगला संदेश आया है, लिखते हैं कार्यक्रम पेशकर्ता आदरणीय सिद्धार्थ और नवीन जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। तो आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आप कैसे हो जी? बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर जब

0: सिद्धार्थ जी और नवीन जी की तकरार होती है? बिल्कुल, हमारी तकरार तो नहीं लेकिन हमारी बात ज़रूर होती है। और ये लिखते हैं कि हमारी पसंद को आप ज़रूर सुनवाएं, बिल्कुल सुनवाएंगे आप। ये लिखते हैं हमें रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।
1: शायद कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई मेरी जो आज आसमान भी टूट कर बरस गया। सिद्धार्थ, जीवन में बहुत से ऐसे किस्से होते हैं, बहुत से ऐसी कहानियां होती हैं जो बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। आज कुछ ऐसी ही कहानियों का जिक्र हम आपके ईमेल पर बेस सुनवाना चाहेंगे आपके दोस्तों को कि ऐसे कौन से किस्से थे जो बारिश में बनते चले गए, ऐसी कौन सी कहानियाँ थी जब बारिश की बूंदों ने आपके दिल में एक आस जगा दी थी। तो इन सब के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके ढेर सारे संदेश एक बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ हम तक पहुंच जाएंगे।
0: बिल्कुल नवीन, तो बारिश की इतनी बात हो रही है और जब प्रेडिक्शन भी है बारिश का, तो क्यों ना हम पहले बादलों को बुलाएं ताकि वो आकर बरस जाएं।

0: जी हाँ, मेघा रे मेघा रे मत परदेस जा रे। और मेघा जब आ जाता है तो ऋतु में परिवर्तन होता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मॉनसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है, इवन पूरे उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। कहीं ना कहीं कई बार नवीन ऐसा लगता है कि मौसम आप देखें जब बदलता है तो इससे आपका व्यवहार भी बदल जाता है। आपके अंदर का जो मौसम होता है ना, हमारे शरीर के अंदर का जो मौसम होता है, हमारा जो मन होता है, हमारा जो दिल होता है, वो मौसम के बदलाव के साथ तो वो भी बदल जाता है। और पता नहीं क्यों नवीन, जब ठंडी हवाएं चलती हैं, हल्की हल्की फुहारें पड़ती हैं, बारिश का मौसम होता है, रिमझिम बरसात होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी अंदर से चंचल हो जाता है। हमारे अनायास ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों नवीन?
1: हाँ सिद्धार्थ, हर मौसम का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, हर मौसम का एक अलग एहसास होता है। बारिश का मौसम एक खूबसूरत अंदाज के साथ आता है और हमें उसका इंतज़ार भी रहता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बैठ के चाय की चुस्कियाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बारिश की बूंदों में भीगेंगे, बस इसलिए कि हम अपने गुजरे हुए उन दिनों को भी याद करेंगे जब बारिश की हल्की बूंदों में हम अकेले नहीं भीगा करते थे उसके साथ जिसको साथ हमें अपना साथ चाहिए था।
0: तो तुमने साथ में भीगने की बात की तो मैं कुछ ये भी कह सकता हूँ कि बरसती रही फिजा, भीगता रहा दिल, कुछ मौसम का असर था, कुछ तेरी याद का। तो जब आप अकेले होते हैं तो यादें साथ होती हैं।
1: और मैं कहूँगा कि इस बार भी सावन में शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर पूरे शहर में बरसात हुई।
0: लेकिन हम जो बरसात करवाएंगे उसमें सबको भिगो देंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है जिसमें हम अपने लिसनर्स के साथ बात करते हैं और साथ में सुनवाते हैं उनकी पसंद के गीत। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि आपकी पसंद के साथ बरसात से रिलेटेड कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहते हो, कोई ऐसी लाइन जो आप हमसे साझा करना चाहते हो और हमारे अपने दूसरे श्रोताओं से बताना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं। और नवीन, अगला मैसेज किसका आया है?
1: अगला मैसेज हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल और मलकापुर महाराष्ट्र से। ये ईमेल हमें है नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मुहरकर का। ये हमारे नए श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपने अपना नाम ज़रूर सुन लिया होगा और आपके पसंद के गीत को भी हम शामिल कर रखे हैं। ताज मोहम्मद का हमें संदेश मिल चुका है, हम उनका नाम भी शामिल कर रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और मन्नत मक्कड़ भी हमें संदेश भेज रखे हैं। और अगला संदेश हमें मिला है
0: जी, ये लिखते हैं सिद्धार्थ जी, नवीन जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ऑलवेज बी हैप्पी, पूरे परिवार के साथ सुपर हिट प्रोग्राम सुन रहे हैं और बड़ा लुत्फ आ रहा है, हमें भी शामिल कर लीजिए। तो आप शामिल हो गए हैं ऐसा कहना है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पपी का। तो आप हमारे साथ आज बारिश के गीतों का आनंद ले रहे हैं, भीग रहे हैं उस बारिश में जो आज गीतों के माध्यम से हो रही है। और
1: उत्तम नगर दिल्ली से ये है भोजराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, और कहते हैं कि हमें वो गीत सुनवा दीजिए, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइए, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइए। आपकी फरमाइश हम तक तो पहुँच चुकी है। इससे पहले कि हम और दूसरे अपने ईमेल पर आधारित श्रोताओं के संदेश पढ़े, हमने वो गाना आपके लिए क्यों लिया है, ये संदेश हमें है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। आपका मेल आ गया है हमारे पास, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए।
0: बिल्कुल, और ऐसा लिखना है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीजी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप का। हम आपके, और ये भी लिखते हैं, डियर प्रोग्राम एंकर्स, ग्रीटिंग फ्रॉम आवर साइड, प्लीज इंक्लूड अवर रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग। बिल्कुल, आपकी रिक्वेस्ट को हमने स्वीकार कर लिया। और इसके साथ हमारे अगले श्रोता कहते हैं, सिद्धार्थ जी, नवीन जी, प्यार भरा नमस्कार, बारिश में पक्षी भी चहचहा रहे हैं, संगीत सुरमई सुना रहे हैं और फूल अपनी भीनी भीनी खुशबू से इस जहां को महका रहे हैं, तितलियां और भौरे अपने नृत्य से जलवा दिखा रहे हैं, बच्चे भी मासूमियत से पानी में कागज की कश्तियां बहा रहे हैं। अरे क्या बात है, आपने तो पूरे बारिश का एकदम चित्रण कर दिया है। ये लिखते हैं हमें बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल।
1: देखिए, अब इसी तरह के संदेश अगर आप हमारे को भेजते रहेंगे ना, बहुत सुंदर प्रोग्राम बन पड़ेगा। अनिल जैन का हमारे पास संदेश है मालियान सरधाना मेरठ से। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जैन, आपका संदेश हमने शामिल कर लिया है। प्यारे भाई सिद्धार्थ जी और नवीन जी नमस्कार, आप दोनों को प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, क्या बात है। मानसून दस्तक दे चुका है और रुक रुक कर चंडीगढ़ को भिगो कर महका रखे गए। हमें बरसात का मौसम बहुत मनमोहक लगता है, बस यही दुआ रहती है कि परमात्मा रहमतों और खुशियों को ही बरखा करे। लिखने वाले हैं, ये किसने लिखा है, दुआ कीजिए कि हमारे लिए, बिल्कुल आपके लिए दुआ करेंगे।
0: ये सतीश अनेजा का मैसेज है नवीन, और जैसे कि इस समय मौसम की बात हो रही, तो क्यों ना बारिश के ऊपर जो हमारे श्रोता ने फरमाइश की है वो गीत हम प्ले कर देते हैं।
2: अरे, अरे, ना, ना, ना, ना, ना।

जी हाँ, पहली बार बरसी है बरसात ऐसी, क्योंकि बरसात का मौसम है, हवाओं में नमी भी है, दिल भी कुछ भीगा भीगा है, आंखों में हंसी भी है।

वाकई अब की बारिश में रपटेंगे तो अब की बार हमें ना उठाइयो। किसी ने क्या खूब कहा है कि सिद्धार्थ के दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था।

0: सिद्धार्थ, उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम को अब तक लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया होगा और इतने गीत और इतने संदेश हम शामिल करेंगे कि आपके शहर का बादल भी बरसने लगेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि मौसम बदलते रहते हैं, ये दस्तूरे जिंदगी है, जो हर हाल में मुस्कुरा दे वही असल बंदगी है।
0: ये संदेश हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सिद्धार्थ जी, नवीन जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी संडे मॉर्निंग। ऑन आवर रिक्वेस्ट काइंडली प्ले दिस सॉन्ग इन द एकेपी। एकेपी, एकेपी मतलब आपकी पसंद प्रोग्राम, इट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्म।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और अगला संदेश हमें रविंद्र मोहनदास का और उनके साथ में किशनगंज बिहार से आशा देवी जी भी हैं, ये कह रही हैं कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है, हमें आपका साथ अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये सतीश अनेजा जी हमें लिखते हैं कि कल तक उड़ती थी जो मुँह तक, कल तक उड़ती थी जो मुँह तक, आज पैरों से लिपट गई, चार बूंदे क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अगला संदेश

0: हमें लगातार ये संदेश हमें इस समय मिला है। लिखने वाले हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा मोहाली पंजाब से, कहते हैं आप दोनों सर जी को प्यार भरा नमस्कार। सर जी मेल को प्रोग्राम में शामिल करें, हमारा मेल काफ़ी समय से शामिल नहीं हो रहा है। लीजिए अगर आप हमें सुन रहे हैं तो बब्बल जी हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। आगे लिखते हैं कि दिल से हर रोज़ प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, तो इस बहुत अच्छे प्रोग्राम की बहुत अच्छी सी तारीफ करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी हाँ, हमें जब आप के इस तरह के मैसेज आते हैं तो हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और हमारे अगले श्रोता हैं, लिखते हैं नवीन जी और सिद्धार्थ जी नमस्कार, इस नज़रे इनायत करें मेरे मेल पर भी। तो हमारी नज़रे इनायत आपकी मेल पर हो गई हैं। लिखते हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से, आज मौसम कितना खुशगवार हो गया, ख़त्म सभी का इंतज़ार हो गया, बारिश की बूंदें गिरी कुछ इस तरह से, लगा जैसे आसमां को जमी से प्यार हो गया। तो प्यार तो होना ही था।
0: और भारत भूषण जी के लिए हम कहेंगे दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी वरना मैं बारिश की एक बूंद को भी बेकार न जाने।
1: और हमारा अगला मैसेज है नवीन, ये लिखते हैं आदरणीय सर सिद्धार्थ जी और नवीन जी, आपको हार्दिक नमस्कार, हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए और आनंद उठा रहे हैं, बेहतरीन जानकारी और नगमे बारिश से संबंधित आप सुनवा रहे हैं। अरे ये तो बिल्कुल राइमिंग कर दी इन्होंने कि हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए और आनंद उठा रहे हैं, बेहतरीन जानकारियों नगमे बारिश से संबंधित आप सुनवा रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा परिहार इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ सतीश अनेजा जी हैं, आपका मैसेज हमने शामिल कर लिया है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बता दें जिनका नाम हम शामिल कर चुके हैं कि वो मैसेज लगातार करेंगे, तो जिनके मैसेज हम लेना चाहेंगे उनके मैसेज छूट जाएंगे। तुलसी मस्कीन जी का हमारे पास संदेश आया है, सिद्धार्थ जी नवीन जी हम भी रेगुलर कनेक्ट हैं और हम भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपना संडे का कीमती वक्त दे रखे हैं, अभी तक नो रिस्पॉन्स। लीजिए जी आपका संदेश हमने शामिल कर लिया है। और इस बार मस्कीन जी थोड़ी नाराज़गी भी है आपसे कि आपने अपना संदेश बिना किसी कविता के, बिना किसी किस्से के, सिर्फ अपने नाम के साथ और अपने गीत के साथ भेज दिया है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशोरी जान खुराना, इनका संदेश हमें मिल गया है।
1: और नवीन हम तो ये कहना चाहेंगे कि जब बरसात की बात होती है तो सावन की भी बात होती है, और सावन की ऋतु आई तो यादों का कारमा भी आया, सावन की ऋतु आई तो यादों का कारमा भी आया, भीगी भीगी फिजाओं ने हर लम्हा महका दिया।

0: चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना।
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: श्रोताओं, आपके लगातार मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और लगातार आप हमको ये बता रहे हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और हमारा अगला मैसेज है, लिखते हैं आदाब नमस्कार जी, जय जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा बेगम, रियाज मोहम्मद, रिहान, सामरीन और माहिरा का ये संदेश आया है। और नवीन, अगला संदेश किसका है?
6: अगला संदेश हमें इस समय अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रियाज हुसैन उनका संदेश। हम लोग
5: आज इन्होंने बहुत सारे संदेश एक साथ भेज दिए हैं।
6: राधेश्याम जी का, राधेश्याम देवांगन का हमारे पास संदेश है इंद्रनगर भवरपुर से। साथ में है चंपा देवांगन, राजू नेहा और जगदीश देवांगन, कहते हैं कि हमारी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए और हमारा नाम शामिल कीजिए। आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रखे हैं, नाम शामिल कर रखे हैं। क्या मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है, एक जादू सा छाया है, तुम घर से बाहर मत निकलना वरना लोग कहेंगे बरसात नहीं हुई और मेंढक निकल आया है। बहुत सुंदर लिखने वाले हीरावन शिंदे, सिद्धार्थ गुंडा ने किशोर नगर अमरावती से इन्होंने ये संदेश हमें भेजा है। संजय दहिया का हमें ढींगिया, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का संदेश हमें मिला है। ये संदेश हमें बागपत उत्तर प्रदेश से हम आपका संदेश शामिल कर रखे हैं। दिलावर खान साहब लिखते हैं, साथ में हैं उनके बानो एलिजा नायब और लड्डू, कहते हैं कि बारिश की बूंदें गिरी कुछ इस तरह से, लगा जैसे आसमान को ज़मीन से प्यार हो गया है। कभी बेपनहा बरस पड़ी, कभी गुमसी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सीखे। बहुत ही खूबसूरत संदेश रघुवीर नगर से। और सिद्धार्थ से एक बार फिर पढ़ेंगे, दिलावर खान, हसीना, बानो, इलियास, नायाब और लड्डू, इन्होंने लिखा है कि बारिश की बूंदें गिरी कुछ इस तरह से, लगा जैसे आसमां को जमी से प्यार हो गया है। कभी बेपनाह बरस पड़ी, कभी गुमसी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सी है।
5: जी हाँ, ये बारिश बिल्कुल तुम सी है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमें अपनों की याद तो आ ही जाती है। और हम ये कहते हैं कि मौसम का एतबार ज़रा भी नहीं रहा, कब धूप छाँव बन जाए पता ही नहीं रहा। और ये जो मौसम की बातें हैं ये दिल के बहुत करीब होती हैं और दिल से होती हैं। और इस बीच हमारे अगले श्रोता लिख रहे हैं कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और आप मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत और शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान और पूरा अब्बासी परिवार हमारे रेगुलर लिसनर हैं बुलंदशहर से। आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आप ये लिखते हैं। इसके अलावा आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, ये भी अब्बासी परिवार है, रसीद, वारसी, सुहेल, अनम, नावेद, शहनाज, नबी हसन, हमें ये लिखते हैं। और नवीन, अगला संदेश किसका?
6: अगला संदेश हमें नीटू मल्होत्रा जी का, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डग्गू भाविक सिक्का, और इनका भी संदेश हम शामिल कर रहे हैं। प्रकाश गोगिया जी का संदेश हमें मिल चुका है, आपकी फरमाइश भी अपने इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। उत्तम सिंह जांघेल, शायद यही जी, उत्तम सिंह जांघेल जी आपकी पसंद कार्यक्रम में लिखते हैं कि पक्षी हमें सिखाते हैं कि ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत और विश्वास दोनों जरूरी हैं। अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, औशिका, आदित्य और अंजलि लिखना है, ये उन्होंने लिखा है हमें धमदा ग्राम सुखरी कला से, ये भी इनका संदेश हमने शामिल कर लिया है। प्रोग्राम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकिता कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने हरियाणा से हमें संदेश लिख के भेजा है।
5: बिल्कुल, और लगातार बारिश और मौसम के ऊपर आपके संदेश हमें मिल रहे हैं।

0: और ये कहते हैं कि मौसम की तरह वक्त भी करवट बदलता है, सब्र रखने वालों का दिन भी निकलता है। बिल्कुल अच्छी बात है। और हमारी जो अगली लिसनर जो हमें लिख रहे हैं, जिन्होंने मेल भेजा है, लिखते हैं, आदरणीय जी दुआओं में हमेशा याद रखना सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाविया। और ये हमें संदेश भेजते हैं। इसके अलावा हम अगला संदेश है, नमस्कार जी, जान पहचान वाले सब शामिल हो गए, लेकिन हमारा नंबर कब आएगा? आपका नंबर आ चुका है, हमने ऑलरेडी आपका नाम ले लिया है, नरेश मल्होत्रा जी। और अगला संदेश नवीन किसका है?
1: अगला संदेश प्रकाश गोगिया जी का है, इनका नाम हमने शामिल कर लिया है। ये संदेश हमें इस समय मिला है सुरेश खुराना जी का। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी लिखने वाले हैं। ये MLB रोड ग्वालियर से आपका संदेश हम शामिल कर रहे हैं। हरजिंदर सिंह शिंडे जी का संदेश हम शामिल पहले ही कर चुके हैं। सुनील पाठक जी का संदेश भी हमें मिल चुका है। आप सबकी फरमाइश पर बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, चलो ना आज वक्त की सुई को थोड़ा पीछे मोड़ते हैं, किताबों के पन्नों में दबे उस सूखे गुलाब को छोड़ते हैं, एक प्याली अधरंग वाली चाय बनाते हैं और भीगते हुए गुजरे जमाने की कोई नज्म गुनगुनाते हैं।
0: बिल्कुल नज्म गुनगुनाते हैं, क्योंकि हवा ने पत्तों से कहा मुस्कुराया करो, हर बदलता मौसम नई बहार लाया करो।

0: जी हाँ, 1993 की सुपरहिट फिल्म अनाड़ी का ये गीत आप बैकग्राउंड में अब सुन रहे हैं। और ये फिल्म अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और काफ़ी इसे सराहा गया बॉक्स ऑफिस पर। और जो दक्षिण के सुपरस्टार थे वेंकटेश, उनकी ये पहली हिंदी फिल्म थी और काफ़ी सुपरहिट रही और ये गीत काफ़ी लोगों ने पसंद किया।
1: संदेश हमें समय मिला है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़से और विनोद खड़से का। इन्होंने इस कार्यक्रम में अपने गीत शामिल करने के लिए हमें संदेश भेजा है। जनाब हमें भी शामिल करें, लिखने वाले हैं हमें अमीना तखान। कहाँ से लिखा है ये? नई दिल्ली, गांव की टोरनी, नई दिल्ली से। साबिर हुसैन, मिरासी मोहम्मद बेगम, तबस्सुम तरन्नुम, तराना हिनौर सीमा। मौसम भीगा भीगा है और गीत में हमारा नाम शामिल करें, बिल्कुल गीत में आपका नाम शामिल करेंगे। अनवर साबरी का संदेश हमें मिला है। प्रसारक जी प्यार भरा नमस्कार, लिखने वाले हैं अनवर, शन्नो, मुदस्सिर, मज़किर, ज़रीफ अंसारी। ये संदेश हमें इस समय सिद्धार्थ मिला है। किशन वजनानी का हमें संदेश मिला है, उनका भी संदेश हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अगला संदेश है राजपाल शर्मा का, आदर्श नगर मलौत पंजाब से इन्होंने हमें संदेश भेजा है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है भारत भूषण जी का, लिखते हैं सिद्धार्थ जी, नवीन जी नमस्कार। माना कि मौसमी बारिश है पर मेरे साथ ये क्या साजिश है, मेरा मेल शामिल ही नहीं होता प्रोग्राम में। माना कि मेरे पास न पैरवी है ना सिफारिश है। क्या बात है, आपने जिस अंदाज में ये शिकायत की है तो ये शिकायत सीधे दिल तक पहुँची है और हमें बहुत पसंद आई। और आपका नाम भारत भूषण जी हमने शामिल, हालांकि पहले भी किया था मुझे याद है, वाइट फील्ड बेंगलुरु से, क्योंकि वाइट फील्ड एक ऐसा नाम है जो थोड़ा अलग हटके है। तो बिल्कुल आपका मैसेज हमने दोबारा से शामिल कर लिया है।
1: और सिद्धार्थ, इससे लगता है कि आप हमारे कार्यक्रम को नहीं सुन रहे हैं भारत जी, आप सिर्फ अपना नाम सुन रहे हैं। बहरहाल इनकी शिकायत को एक बार फिर पढ़ना चाहेंगे कि माना कि मौसम में बारिश है पर मेरे साथ ये क्या साजिश है, मेरा मेल शामिल ही नहीं होता प्रोग्राम में। माना कि मेरे पास ना पैरवी है ना सिफारिश है। नाम शामिल करने के लिए भारत जी ना पैरवी की जरूरत है ना सिफारिश की जरूरत है, एक छोटे से मेल और आपके संदेश की जरूरत है। आदरणीय होस्ट नमस्कार, हम भी गीत को सुन रखे हैं, मेल शामिल कर लीजिए। विरम गाम गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला भावसार और भावेश सन्नी भावसार, इनका गीत हमने शामिल कर लिया है। मसरूर हसन का संदेश हमें मिल चुका है, अजीत भावसार का संदेश हमने शामिल कर ही लिया है। एक और संदेश इस समय आ रहा है, सप्रेम नमस्कार, मोहरा फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, टिप टिप बरसा पानी। जरूर
0: टिप टिप बरसा पानी, और इनकी जो फरमाइश है नवीन वो हम जरूर पूरी करने की कोशिश करते हैं।
1: लिखने वाले हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। तो आप सबकी पसंद पर आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत लीजिए आपके लिए।

0: जी हाँ, कुछ यादें खुशबू की तरह साथ रहती हैं, वक्त कितना भी गुजर जाए महकती रहती हैं। और इसी तरह से हमें याद कर रहे हैं कानपुर से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत, कमलेश, बधु, प्रज्ञा, वेद बाबू और पूरा कठेरिया परिवार। लिखते हैं कि आपकी पसंद कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दोनों भाई आरजे सिद्धार्थ और आरजे नवीन को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम बराबर मेल कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा मेल है। मेरा नाम शामिल कर लीजिए, आपका नाम शामिल हमने कर लिया है। तो आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं
1: नवीन। ये संदेश हमें मिला है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज सिंह का। नमस्कार जी, गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से इन्होंने संदेश भेजा है। रोजी डी कैस्ट्रो का संदेश हम शामिल कर रहे हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो और विलिस डी कैस्ट्रो का। रिस्पेक्टेड होस्ट, वी आर ऑल्सो लिसनिंग योर प्रोग्राम विद द फैमिली, सो प्लीज सी माई मेल बॉक्स ऑल्सो, थैंक्स। हमने आपका मेल पढ़ दिया है। सुदर्श सुभाष योगी जी का संदेश हमें मिल चुका है। ये संदेश सुभाष योगी, राजू मिगलानी और उनके साथ बब्बू और डब्बू।

0: जी हाँ, बरसात की आज बात हो रही है क्योंकि पूरे देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और पूरे उत्तर भारत में मॉनसून आ चुका है। और जब भी हम दिल्ली जैसे शहर में अक्सर यहाँ पर जब बारिश होती तो एक बारिश के साथ कुछ खाने पीने का भी रिवाज है। अक्सर क्या होता है कि जब बारिश होती तो कई बार हम पकौड़ियों की बात करते हैं, कई बार हम अच्छे खाने पीने की बात करते हैं और मौसम का हमारे दिल पर बेहद असर होता है। कई बार जब मौसम अच्छा होता है तो अपने आप जैसा बाहर का मौसम वैसा ही अंदर का मौसम। और यही बात लिखी है हमारे श्रोता मांगे राम जी ने। कहते हैं सिद्धार्थ जी और नवीन जी, आपने हमारा ईमेल शामिल कर दिया और हमारा ईमेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम गर्मी से व्याकुल हैं बिल्कुल, तो बरसात बस आने ही वाली है क्योंकि मानसून आ चुका है और हम भी इंद्र देवता से यही प्रार्थना कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मांगे राम जी ने लिखा नहीं है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ से आपने ये हमें ईमेल भेजा है, लेकिन आप तक बारिश जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचे।
1: इस बार की बारिश में तो कमाल ही हो गया, बूंदे हम पर गिरी और नशा तुम पर हो गया। मेरी और सिद्धार्थ की आवाज जहां तक जा रही है, जहां तक आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उम्मीद है कि बादल उमड़ खुमड़ कर थोड़ी ही देर में आपकी छत पर आएंगे, खूबसूरत बूंदे बरसेंगे और आप इस बार पहली बारिश में ज़रूर भीगिएगा। बारिश के भीगने का एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही मज़ा है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज के गीत बहुत ही सुंदर और बेहद लाजवाब है। गीत कौन से गुलदस्ते से निकाल कर लाए हैं, सुंदर प्रस्तुति, बेहद लाजवाब। बरसात के गीत सुनवाने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। लिखने वाले हैं फरुखाबाद मोहल्ला साहिबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया और सुबोध चौरसिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खूबसूरत संदेश हमें लिख के भेजा है और हम तो यही दुआ करेंगे कि अभी नहीं तो दोपहर तक, दोपहर नहीं तो शाम तक बारिश की बूंदें आपको ज़रूर भिगोएं।
0: क्योंकि मौसम की हर करवट में ज़िंदगी का पैगाम है, कभी धूप का इम्तहान तो कभी बारिश का इनाम है, तो ये इनाम आप तक ज़रूर पहुंचने वाला है। और इस बीच आपके लगातार संदेश आ रहे हैं और इससे पहले हम ये सुनते हैं ये गीत।

लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि बादलों की गरज में भी एक साज छुपा है, बरसात आने का मीठा सा आगाज छुपा है।

0: बरसात की इन बूंदों में एक सादगी है, जैसे तुम्हारी आंखों में छुपा कोई गहरा जज्बात हो। तुम जो मुस्कुरा दो इस भीगे मौसम में, खुदा कसम ये ठंडी हवा भी गुनगुनाने लगती है। बस ऐसी ही खूबसूरत शायरी आपकी कलम से निकलती रहती है। जब मौसम बदलता है दिल खुश होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हवा ने पत्तों से कहा मुस्कुराया करो, हर बदलता मौसम नई बहार लाया करो। तो नई बहार बिल्कुल आएगी, नया मौसम आएगा, नई बरसात आएगी और कुछ आपके जज्बात, कुछ ख्यालात भी आपके मन में आएंगे, आपके दिल में आएंगे। और धीरे धीरे खड़ी की जो भर्ती सुइयां हैं नवीन, वो हम इशारा कर रही हैं कि धीरे धीरे कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बारिश, ये मौसम, ये जो रंगीन फिजा है वो यूं ही बनी रहे और आपके अंदर का जो मौसम है वो ऐसे ही आपको भिगोता रहे, हमारी ये शुभकामनाएं हैं।
0: तो मैं नवीन और सिद्धार्थ स्टूडियो से ढेर सारी बारिश, ढेर सारे बादल, सुंदर खूबसूरत हवाएं आपके शहर भेज रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सारे के सारे जितने भी संदेश थे हमने शामिल कर लिए हैं और इतने सारे शेर व शायरी हमने आज की है ना, खुदा न खास्ता एक बूंद तो बरसेगी आपके शहर में। बहरहाल आप दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of Regional Air Connectivity Scheme, Viksit Udan, in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
2: Udan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट जोधपुर एयरपोर्ट, मार्किंग अ मेजर पुश टू इंडिया सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल कनेक्टिविटी। The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tijan Bai has passed away. She had been suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. She breathed her last at around 3:15 a.m. today. With her powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Tijan Bai gave Pandwani a new identity, not only across India but also internationally. Her remarkable ability to bring the stories of Mahabharata to life on stage made her one of the most celebrated exponents of Indian folk culture. In recognition of her outstanding contribution to Indian folk art, she was honored with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan, the country's second highest civilian award. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over her demise. In a social media post, President Murmu said that Tijan Bai brought the tales of Mahabharata to life on stage with her powerful voice, commanding presence and unique style of presentation. The president said that Tijan Bai brought recognition to Chhattisgarh's rich Pandwani tradition, both in India and abroad, through her exceptional talent, dedication, and years of rigorous practice. She said that her contribution to the dissemination of India's cultural heritage will remain memorable. Prime Minister Narendra Modi said that she earned global recognition for this folk art form from Chhattisgarh through her magnificent performances. The Prime Minister said that her demise is an irreparable loss to the world of art and culture. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year, with 32,313 devotees offering prayers at the cave shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra, registering a notable increase over the 14,515 devotees who visited the shrine on the corresponding second day last year. Australian Prime Minister Anthony Albanese has hailed India as key economic partner ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Australia from 8th to 10th of this month. In a statement, Australian Prime Minister's office said, as the world's fourth largest and fastest growing economy, India is a critical economic partner for Australia. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh today pay tribute to former Union Minister Ram Vilas Paswan on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said that Ram

0: 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute after VAR awarded France a spot kick. France will now face Morocco in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 11:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। आज के इस कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले प्रस्तुत है लालित्य मुनिशाह के स्वर में ये गीत, बोल है पायल बाजे।

आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं शोभा मुद्गल के स्वर में ये गीत।

आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं गुरदास मान के स्वर में ये गीत।

अभी आप सबरस कार्यक्रम सुन रखे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रखे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग तोड़ी। कलाकार हैं अनुराग मिश्रा।

0: राग तोड़ी। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी अब संपन्न होता है। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 2:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे भरत व्यास के लिखे कुछ गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है।

साथ 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:10 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का प्रिय कार्यक्रम ग्रह लक्ष्मी।

0: बहनों राम राम
1: राम राम, यमुना बहन राम राम।
0: अरे रेनू, आपको भी हमारा राम राम। एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ बहनें शिकायत इस बात की कर रही थी कि आप सिर्फ हमें राम राम कहती हैं, जबकि हमारे घर में गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सभी लोग सुनते हैं, जिसमें आपके भाई साहब भी होते हैं, वो भी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं।
1: तो भाई शिकायत तो सच्ची है।
0: हाँ, तो इसलिए हम दोनों जो है उनसे
1: सभी को बोल देते हैं हमारी तरफ से राम राम। तो चलो, शिकायतें तो खत्म हो गई।
0: बिल्कुल शिकायतें खत्म हो गई। और देखो, जो कार्यक्रम हमारा है गृह लक्ष्मी, खास करके हमारी बहनों के लिए ही है, और जो इसमें बहुत सी हम बातें बताते हैं, तो उसमें जब तक परिवार का साथ ना हो, अब राम राम तो वैसे भी करना पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बिना उनके सहयोग के हमारी बहनें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। विवाह हो गया है, परिवार में है, तो उनका सहयोग होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल। और जो अभी अभी रेडियो ऑन किया, जिन्हें नहीं पता है कि ये क्या कार्यक्रम चल रहा है, तो हम उन्हें भी बता दें कि भाई आज हर रविवार को याद रखिएगा 12:10 पे हमारा ये गृह लक्ष्मी कार्यक्रम शुरू होता है, जो कि है हमारी ग्रामीण महिलाओं और सखियों पे आधारित। मगर सुनने वाले हमारे श्रोता अगर और भी हैं, जो भाई लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी, है ना। तो 12:10 पर हर रविवार सुनते रहिएगा हमारा ये कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। और आज तो मैं रेनू तंवर इस कार्यक्रम में, मेरे साथ मेरी रेडियो साथी हैं
0: यमुना।
1: तो भाई एक बात बताओ यमुना, आज तुम क्या खजाना लेकर आई हो, कौन सा पिटारा अपने साथ लेकर आई हो?
0: पिटारे ज्यादा तो नहीं बताएंगे, सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। पिटारी में बहुत कुछ है, वो थोड़ा सा अभी छुपाई ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले से बताना ठीक नहीं है।
1: धीरे धीरे
0: राज खुलेगा। तो इस समय जो बात करेंगे हम, बरसात की बात करेंगे, जो मौसम बदल रहा है, बरसात आने वाला है, कुछ जगह आ भी चुका है, जैसे बॉम्बे वगैरह में देखोगी तो वहाँ पे रेड अलर्ट जारी हो चुका है। तो बहुत सी जगह तो मानसून बहुत तेजी से आया, अब बहुत जगह तो इंतजार कर रहे हैं बारिश आ जाए।
1: ये मौसम भी ना हमारे मूड की तरह हो चुका है। जैसे कभी हमारा मूड होता है कि हम उदास हो जाते हैं, कभी हम खिलखिला के मुस्कुरा देते हैं, तो ऐसा उदासी मतलब गर्मी और खिलखिलाना मतलब बारिश। तो अगर हम इसको इस तरह से जोड़े तो कितना खूबसूरत लगेगा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन एक बात और है कि बरसात का मौसम जहां हमें बहुत ही सुहाना मौसम देखने का नजारा देता है, वहीं साथ साथ कुछ ऐसी परेशानियां भी देता है, जैसे अगर हम बारिश में ज्यादा भीग गए तो आंखों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बरसात के मौसम में त्वचा में बहुत सी परेशानियां होती हैं, आंखों में बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल। और गर्मी जब बढ़ती है तो हमें देखा है ना, और बारिश जब के समय में आंखों में जो नमी आती है उससे हमें खारिश शुरू हो जाती है, और अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को रगड़ने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। और हमेशा याद रखें कि आप अपनी आंखों को कैसे कर सकते हैं सही, कि आप ना अगर बारिश में भीग गए और बारिश का पानी अगर आपकी आंखों पर और त्वचा पर चला गया, तो उसको साफ पानी से जरूर धोएं, और उसे अच्छे से साफ करके और क्लींजिंग का इस्तेमाल करें अगर वो ना हो।
0: बिल्कुल। और यदि आप कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करते हैं तो उसे हमेशा साफ रखें, और बारिश के पानी में अगर है ऐसी मौका आ गया कि बारिश हो रहा है, तो उसमें आप लेंस को ना पहने तो ज्यादा बेहतर है।
1: और खुद से दवा ना डालें, पहले डॉक्टर की सलाह लें और फिर दवा लें। और गुलाब जल तो वैसे बेहद ही अच्छी बात बोली जाती है कि आंखों में अगर आप डालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो तो हर समय के लिए अच्छा, लेकिन बरसात के मौसम में खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और त्वचा का ख्याल रखें, वरना त्वचा हो जाएगी आपकी कैसी कि जो हम लगते हैं ना, हम तो वैसे भी औरतें हैं, उम्र अपनी छुपाती ही है और छुपानी भी चाहिए, और हमारी त्वचा अगर इतनी खूबसूरत दिखेगी तो अपने आप ही छुपी हुई दिखेगी, क्यों भाई।
0: बिल्कुल।

0: वो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ
1: जी
0: बहनों से कि जब ये त्वचा आपकी चमकती है दमकती है और आपके नैन जो कजरारे हैं वो भी बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं, तो सच में ये जो
1: वैसे
0: गीत है,
1: मेरे
0: एक गीत जो है रेनू अभी मैं कह रही हूँ, तो जो ये गीत है ना ये लाजमी हो जाता है, इसमें बहुत ही सटीक बैठता है।
1: क्या बात है।
0: तो जब ये चेहरा और ये जब आंखें होती हैं तो कैसा लगता है, कोई कैसे बरबस इस चीज को कह देता है। चलिए सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।
1: क्यों नहीं।

0: स्वयं की सहायता रेणु स्वयं से करने का एक समूह, मतलब समझ रही हो क्या कहना चाह रही हूँ? स्वयं सहायता समूह की हम बात कर रहे हैं, SHG की बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है।
1: बिल्कुल, और ये एक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं जो कि विशेषकर महिलाओं को एक स्वैच्छिक कहते हैं ना संगठन प्रदान करते हैं। इसमें हम आपसी सहयोग और छोटी छोटी बचत करके सामाजिक परिवर्तन भी लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और जो ग्रुप की हम बात करते हैं 10 या 20 महिलाओं का समूह नियमित बचत और समझदारी लगन होशियारी और एक दूसरे के सहयोग करने से फर्श से अर्श तक पहुंच जा सकती हैं।
1: क्या बात है।
0: और अब हम अगर परिवर्तन की बात करें तो जो घूंघट थोड़ा सा है वो उसे ऊपर करके जब गांव की महिलाएं चहर दीवारी से बाहर निकलती हैं और बैंक पर जाती हैं अपने पैसे को जमा करती हैं, ग्राम सभाओं में भाग लेती हैं और इतना ही नहीं है ग्राम पंचायत के हर कार्यक्रमों में जाती हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष की बात करें सरपंच की बात करें हर जगह अपनी बात को रखती हैं, तो ये जो नजारा होता है ये देखते ही बनता है।
1: बिल्कुल, और इसमें साथ साथ ये देखो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनका भी अंत इसमें किया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में ना दहेज प्रथा बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां बहुत हैं और इन बुराइयों के खिलाफ ये सामूहिक जो ये आवाज है साथ उठाई जाती है और स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी जागरूकता को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से सामाजिक बैठकों में नेतृत्व करने से महिलाओं का जो आत्मविश्वास है ना वो बढ़ता है और जो उन्हें पंचायती राज और स्थानीय राजनीति में भाग लेने में भी उन्हें प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण और सबसे बड़ी बात है अपने में आत्मविश्वास लाना कि हम भी बोल सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं।
1: पहले महिलाएं नहीं सोचती थी,
0: पहले नहीं सोचती थी इस बात को, लेकिन अब जागरूक हो चुकी हैं। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे जिंदगी की जो भी ये लम्हे हैं इस प्यार को हम बांट लें और थोड़ा सा मनुहार के साथ अपनी जिंदगी बिताएं, क्योंकि ये जो प्यार भरी जिंदगी है बहुत ही अनंत काल तक अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छे मन के साथ हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है।
1: बिल्कुल।

0: जिंदगी के प्यार को हम बांट लें बांट लेंगे जरूर। और आज कुछ ऐसी हम बातें करने जा रहे हैं, हमारे बीच में हमारी एक आमंत्रित सदस्य भी आ चुकी हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, कुछ ऐसी बातें घुमा फिरा के नहीं, एक भूमिका में कहेंगे आपसे कि कोई भी अगर बालिका है, चाहे वह गांव में रह रही हो या शहर में, हर बालिका को शिक्षित होना बहुत जरूरी, ये बात है ना रेनू?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कभी कभी किसी कारणवश, किसी समस्यावश बालिकाओं के इच्छा अनुरूप शिक्षा नहीं मिल पाती, या आधी अधूरी पढ़ाई कर वो चिट्ठी पत्री लिखने लायक बना करके कहते हैं भाई ये बहुत हो गया, विवाह बंधन में बांध दीजिए, अपने घर जाए।
1: ये आज के समय के दौर में भी इस तरह की विचार है, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन इसी बात को और इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए, हमारे ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा में अभिभावकों की क्या भूमिका है, इस पर हमने आमंत्रित किया है सरिता गुप्ता जी, जो कि लेखिका हैं, समाज सेविका हैं और शिक्षिका हैं नई दिल्ली से।
0: बिल्कुल। और आज के इस विषय पर अगर हम देखा जाए तो ये जो बालिकाओं की शिक्षा में अभिभावकों की क्या भूमिका है, इस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू पर चर्चा होगी। और जिसके लिए जैसे आपने बताया कि इस समय सरिता जी आ चुकी हैं, सरिता जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद यमुना जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया
0: जी। सच कहें तो बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं समाज के सभी वर्ग के लोग।
1: बिल्कुल। और सरिता जी, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है?
2: बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि बेटियां अगर हम कहें तो वो सृष्टि का आधार है।
0: बिल्कुल।
2: पूरा परिवार, पूरा संसार उसी की धुरी पर चलता है।
0: जी।
2: और कहा जाता है कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है, देश शिक्षित होता है, राष्ट्र शिक्षित होता है।
0: जी।
2: अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो अक्सर वो नौकरी के सिलसिले को लेकर घर से बाहर चला जाता है, और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अधिकांशतः माँ के ऊपर होती है, महिलाओं के ऊपर होती है। और अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालती हैं, उनको आदर्श सिखाती हैं, नैतिकता सिखाती हैं, और उस तरह पूरे समाज का कल्याण होता है। तो मैं तो बेटियों के लिए यही कहूंगी, शिक्षा बेटी के लिए सर्वोत्तम उपहार, शिक्षा बेटी के लिए सर्वोत्तम उपहार, इस पथ पर चलती रहो कभी ना होगी हार। तो बेटियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, बेटियां देश का आधार हैं।
1: बहुत अच्छी बात लिखी और बोली आपने। ये कितनी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ना बालिकाओं को शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा तुलना की जाती है
2: जी।
1: कि हम कहते हैं लड़कों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे
2: जी।
1: तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है अब उनका अनुपात कम हो रहा है, क्योंकि लोग बेटियों की शिक्षा को लेकर उतने ही जागरूक हैं, उतने ही सतर्क हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत लोग हैं जो अभी भी रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो उनको ये समझना होगा कि अगर हम अपने बेटे का विवाह करते हैं

0: उसके लिए हम शिक्षित बहू चाहते हैं, और शिक्षित बहू कहाँ से आएगी जब हम बेटियों को शिक्षा देंगे। तो इसीलिए हमें अपने विचारों को विस्तार देना है, अपने विचारों को बढ़ाना है कि समाज में, देश में बेटी हो या बहू हो, दोनों को शिक्षित हम तभी पा सकते हैं जब हम बेटी को शिक्षित करेंगे।
1: कुल मिला के अगर सच कहें तो कुछ लोगों की मानसिकता, कुछ अभिभावक की मानसिकता बदली है और कुछ की बदलने की ज़रूरत है। तो जो ये चलन चला है कि हाँ शिक्षा देना है, शिक्षा नहीं देना है, ये दोनों पहलू है, लेकिन अब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, जैसे कि आप बता रही हैं। और एक बात और है, यहाँ हर अभिभावक के लिए कहना चाहेंगे कि क्या अभिभावक अपनी बेटियों की शिक्षा को परिवार का एक बोझ मानते हैं या भविष्य के निवेश के रूप में देखते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा है कि लोगों की विचारों में बदलाव आ रहा है, लेकिन हाँ, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की और बालिकाओं की बात करते हैं तो आज शहरों में तो बहुत सारे कोचिंग हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वाहन की सुविधाएं हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं, और उस पे अगर माता पिता आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो वो सोने में सुहागा है, हर विचार को आकार देने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हाँ, गाँव की अगर हम बात करते हैं, गाँवों में निश्चित रूप से अब सभी सुविधाएं वे पहुंच गई हैं जो शहरों में हैं, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा रिमोट एरियाज की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर बिजली की, पानी की सुविधाएं हैं, लेकिन वो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है जितनी शहरों में है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों की बात आती है तो विद्यालय इतने दूर हैं कि हम बच्चियों को आजकल जिस तरह के दुष्कर्म, बलात्कार की घटनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं, तो हम बेटियों की अस्मिता की तरफ से भी काफी चिंतित होते हैं, और हर समय बेटी को हर जगह भेजने के लिए हमारा मन स्वीकृति नहीं देता,
1: चाह करके भी नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर दूर एरिया है तो वहाँ पे सोचना पड़ जाता है कि हम क्या करें, कैसे करें।
2: तो इस उस पे तो हम ये भी कह सकते हैं सरिता जी कि अगर शिक्षा के साथ साथ, जैसे शिक्षा तो है ही, तो एक हम किस तरह से लड़की अपने आप को कैसे बचाव कर सके, उस तरह की शिक्षा भी मिलना
0: जी, उसके लिए आजकल टाइकंडो है, बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस की जो चीजें हैं वो बच्चियों को सिखाई जा रही है। और अच्छी बात यह है कि आजकल हर स्कूल ने इसको एक विषय के रूप में निर्धारित कर दिया है और सुनिश्चित कर दिया कि हर बच्ची को टाइकंडो या सेल्फ डिफेंस की शिक्षा लेनी जरूरी है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चियों को भी अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, और उस भरोसे में परिवार की महती भूमिका होती है, क्योंकि परिवार ही हमारे आत्मविश्वास को बुलंद करता है और परिवार ही हमारे आत्मविश्वास को खंडित कर देता है।
2: बिल्कुल। और एक बात और सरिता जी, मुझे लगता है कि हम बालिकाओं को पढ़ाने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर अभिभावक अपने लड़कों को भी शिक्षा इसी तरह से ताकि वो महिलाओं की और बालिकाओं की इज्जत उसको दे पाए वो, तो उस ओहदे पर अगर दिमाग सबका चले तो शायद ये जो नकारात्मक चीजें हमारे समाज में, कुरूतियां जो बढ़ रही हैं वो कम हो जाएंगी। आप सही कह रहे हैं
0: जी।
2: तो अब हम मनोरंजन के पास भी आ जाते हैं, आप हमें जानकारी तो दे ही रही हैं, साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है।
1: और हम बताना चाहेंगे रेनु कि जो अभिभावक होता है ना, एक भरोसा है तो होता है बच्चों का अपने अभिभावक पर, क्योंकि सब कुछ वही होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और भरोसा नहीं टूटने देना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि हर मुश्किलों को पार करके अपनी बालिकाओं को हर हाल में शिक्षित करें।
2: और इसी पर सरिता जी की फरमाइश हम पूछ लेते हैं, इसी पर अगर आपकी कोई है।
0: जी बिल्कुल, लता जी का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, एक तू ही भरोसा है, तो अगर हम वो सुन ले तो हमारे श्रोताओं को भी आनंद आए।
2: बिल्कुल,
1: बिल्कुल ख्याल रखेंगे आपका।

0: बिल्कुल, हमारा भरोसा है अपने अभिभावक पर है, और खास करके अगर हम बात करें इस समय, तो एक शिक्षित ग्रामीण बालिका अपने परिवार और समाज का जो स्तर है वो कैसे ऊपर उठा सकती है, इसके बारे में सरिता जी आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया यमुना जी आपने, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं, निश्चित रूप से उनका दोहरा दायित्व होता है, उन्हें अपनी संस्कृति को भी सींचना है और बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ग्रामीण महिलाओं में जो भी महिलाएं शिक्षित हैं, उन्हें अपने परिवार को, अपने बच्चों को तो शिक्षित करना ही है, लेकिन आसपास की महिलाओं को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी समझाने का ये दायित्व बनता है कि जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, यदि हम बदलते हुए समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारा समय निकल गया है, लेकिन हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सशक्त बनाना है। तो माता जो होती है, माता पहली शिक्षिका होती है, ऐसा कहा जाता है, ये सभी जानते हैं, परिवार पहली पाठशाला होता है और माता जो है पहली शिक्षिका होती है। और जो पहली शिक्षिका के द्वारा कोपल रोप दी जाती है, बीज बो दिया जाता है बच्चों के मन में, वही वटवृक्ष बनकर जीवन भर उन्हें सशक्त बनाता है और उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है।
2: जी, तो अगर हम बात करें गांव हो या शहर, हर मतलब जगह की बालिका शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है?
1: सरकार की अगर हम

0: युवकों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपने बहुत सारी योजनाएं सुनी होंगी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये जो है ग्रामीण जो बालिकाएं हैं उनको हॉस्टल भी प्रदान करती है और खाना पीना भी प्रदान करती है, शिक्षा भी प्रदान करती है। तो ऐसी योजनाओं को लेकर अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए इतने प्रयास कर रही है तो हमें भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी बेटियों की योग्यता को पहचानना बहुत जरूरी है। यदि हमारी बेटी के अंदर वो स्पार्क है, वो क्षमताएं हैं, तो हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहारा बनना चाहिए। और दंगल मूवी तो आप सभी ने देखी ही है कि किस तरह से जो है एक पिता अपनी बेटी के सपनों को पूरा करता है, अपने सपनों को पूरा करता है। जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की खुली आंखों में बहुत सारे सपने लेकर आते हैं और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी आंख का तारा जग की आंख का तारा बने। और अब हम बहुत अच्छा सा प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। हमारे गांव को ही आया है, जब गांव की बात
1: आपकी फरमाइश है और हमें सुनाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोता भी आनंद लेंगे उसका, बिल्कुल निश्चित रूप से।
1: चलिए आपकी फरमाइश को हम पूरा करते हैं
0: जी।

0: आप पूछना चाहेंगे सवाल कि यदि माता पिता स्वयं पढ़े लिखे ना हो
1: जी,
0: तो वो कैसे अपनी बेटियों को शिक्षा में सकारात्मक सहयोग दे सकते हैं?
1: देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और अक्सर अगर आप देखें समाज में हम अवलोकन करते हैं तो अक्सर उन्हीं माता पिता के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने की भावना ज़्यादा होती है जो स्वयं अशिक्षित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है और शिक्षित ना होने के कारण उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे माता पिता निश्चित, एक तो आजकल संचार के बहुत सारे साधन हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक बुक है, रेडियो है, अखबार है, तो उसमें जो है अपने आसपास के माहौल में जो नई योजनाएं निकल रही हैं बच्चों की शिक्षाओं को लेकर, क्योंकि अक्सर गांव में कितने ही लोग सशक्त हों लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव मैंने महसूस किया है, तो आर्थिक अभाव के कारण अक्सर माता पिता अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को साकार नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसमें विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए लेकर सरकार बहुत सक्रिय है, उनको फ्री आवास दे रही हैं, भोजन दे रही हैं, पुस्तकें दे रही हैं, दिल्ली जैसे शहरों में भी 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में पेरेंट्स को अपने आसपास के जो शिक्षित लोग हैं उनसे सलाह

0: जो बेटियों को बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सीमित दायरे में कि 7वीं 8वीं पास कर ली, चिट्ठी पत्री लिखने लायक हो गए, जरूरत क्या है, आखिर जाके घर पे काम ही तो करना है वहां पर। तो ऐसे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए सुधार की दृष्टि से क्या बात कहना चाहेंगे?
1: देखिए, ऐसे अभिभावकों को सबसे पहले ये समझना होगा कि बेटियां सिर्फ जो हैं परिवार को चलाने की मशीन नहीं है, वो पूरे समाज को सशक्त बनाने में महती भूमिका निभाती हैं। जैसा कि मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, क्योंकि शिक्षिका हूँ, कि जो है एक अगर लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और परिवार
0: दो परिवार शिक्षित होता है,
1: दो परिवार शिक्षित होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और यदि हम चाहते हैं कि बेटियाँ शिक्षित हों, हमारे घर में शिक्षित बहू आए, तो हमें जो है बेटियों की शिक्षा को लेकर आसपास के वातावरण से नई नई जानकारियाँ लेने के लिए सशक्त होना होगा, क्योंकि जीवन चलने का नाम है।

0: यमुना भारत सरकार द्वारा कई भविष्य के लिए, मतलब बेटियों के भविष्य के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने बनाई हैं, और ऐसी कई योजनाओं में जैसे एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, है ना। और उसमें क्या है कि माता पिता जो हैं, जो अभिभावक हैं, अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं, और दो बालिकाओं के लिए ये खाता खोला भी जा सकता है, ये भी एक अलग से छूट उनको प्रदान की जाती है।
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब खाता खोलते हैं तो 250 रुपये न्यूनतम कम से कम और 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि दो बेटी, जैसे आपने कहा कि दो बेटियों के लिए किया जा सकता है, और एक बात और है कि जब 50% जब पूरा पैसा जमा हो जाता है या नहीं भी जमा होता है, कुछ दिनों तक का जमा होता है, तो बेटी जब 18 वर्ष की हो जाती है या वो 10वीं पास कर लेती है और शिक्षा के लिए, आगे उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो जितना आप जमा किए उसमें से 50% आप लेकर के उस बच्ची की शिक्षा पर आगे खर्च कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है ये कि 50% आप पा जाएंगे। ऐसा नहीं कि ब्लॉक हो गया, बिल्कुल अब इतने साल में ही मिलेगा, मैच्योरिटी होने पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो अधिकतम आपको मैंने बताया 1.5 लाख रुपये और न्यूनतम 250 रुपये शुरू किया जा सकता है। और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी कागजात है वो बच्चे का जन्मतिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड अगर बच्चे का बना है तो ठीक, नहीं बना है तो माता पिता
0: का
1: आधार कार्ड से भी काम चल सकता है।
0: बिल्कुल। और ये खाता बेटी के 21 साल पूरे होने पर या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी के होने पर भी हम कहते हैं ना, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और इसका टैक्स का लाभ भी मिलता है।
1: बिल्कुल, ये छूट रहता है, इनकम टैक्स से छूट मिला रहता है इसमें।
0: हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं इसमें, डाकखाने में जाकर, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाकर भी, किसी भी बैंक में हो, सभी जगह, हाँ।

0: सभी जगह आप ये खाता खोल सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप खाता खोल पाएंगे।
1: और सबसे अच्छी बात है रेनू की, जितना ब्याज दिया जाता है हर सेविंग पे, उससे कहीं ज्यादा इस पे ब्याज दिया जाता है,
0: तो
1: सबसे ज्यादा।
0: अच्छा, तो ध्यान
1: इसमें सेविंग करना मतलब आप समझ लीजिए बच्ची का भविष्य आप बना रहे हैं एक तरीके से, और सबसे ज्यादा आप इस पे ब्याज पा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और साथ साथ आज वीरांगना क्रम में भी कुछ बात कर ले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज जैसे स्वतंत्रता और आजादी में जहाँ महापुरुषों की बलिदान की गाथा हम सुनते हैं, आज हमारी महिलाओं में भी कई ऐसी महिलाएं हैं, वीरांगना हैं, जिन्होंने अथक बलिदान के वजह से हम आज आजादी की सांस ले पा रहे हैं। और उसी में आज हम बात कर रहे हैं हमारी रानी वेलु नचियार की, जो कि भारत की पहली उन शासकों में थी जिन्होंने 1780 में यानी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लगभग 77 साल पहले एक बेहतरीन और शक्तिशाली ब्रिटिश सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। नारी शक्ति का वो मूल्यांकन करने वाली भारत की प्रथम शासकों में से एक थी जिन्होंने सेना में सबसे बहुत प्रथम कहते ना अनुशासित और घातक महिला सैनिक पलटन उठाई थी। तो और फ्रंट लाइन में कहते हैं ना कि हम चाहते हैं महिलाएं ना हो, लेकिन उन्होंने ये विवाद को भी खत्म कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं रानी वेलु नचियार की।
1: और सबसे बड़ी बात है रेनू की, वो क्योंकि एक इकलौती संतान थी इसलिए उन्हें एक राजकुमार की तरह पाला गया था, और बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और देखा जाए तो हर युद्ध में वो प्रशिक्षित थी बिल्कुल। और वह तमिल, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू जैसी कई भाषाओं की ज्ञाता भी थी। और सच कहें तो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिवगंगा के राजकुमार मुथुवदुगनाथ पेरिया उदयवेयर से हुआ था, और 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने लोहा लिया। तो ये कहा जाता है ना कि बहादुर महिला थी अपने जीवन में वो।
0: जी, और जाते जाते इनके बारे में बस इतना कहेंगे कि इन नचियार मेमोरियल का उद्घाटन इनके उसमें किया गया था, उनकी वीरता को सम्मान देते हुए दिसंबर 2008 में एक डाक टिकट जारी किया गया था, और 2014 में तमिलनाडु सरकार ने शिवगंगा वीर में मंगल वेलु नचियार मेमोरियल का उद्घाटन किया। और उसी वर्ष दुनिया के पहले आत्मघाती हमला करने वाले अंजाम देने वाले कमांडर युकिली की याद में भी शिवगंगा में एक स्मारक बनाया गया। और जाते जाते जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया, ऐसी वीरांगना को हमारा शत शत नमन
1: नमन है और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
2: सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं।

0: मार्ग बनाया गया। और जाते जाते जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया, ऐसी वीरांगना को हमारा शत शत नमन
1: नमन है और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
2: सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं।

चलते चलते ही रेनू अपने कार्यक्रम का हम पता बता देते हैं जी। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम कृषि एवं गृह कांश कमरा नंबर 610 नौ प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली पिन कोड 110001। हमारा जो ईमेल है एड्रेस वो नोट कर लें, feedback@fnh.gmail.com।

ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के

बस चैनल के इस खास फिल्मी सफर में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यादगार फिल्म की दुनिया में, एक ऐसी फिल्म जिसने दोस्ती को नई ऊंचाई दी, प्यार को नई गहराई दी और शायरी को एक नई पहचान। आज की हमारी फिल्म है साजन। साल था 1991। हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी, लेकिन उसी साल एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने लगी। एक तरफ थे संजय दत्त, गंभीर संवेदनशील जो दर्द को आंखों से बयां करते थे, दूसरी तरफ थे सलमान खान, युवा चुलबुले और आकर्षक अंदाज वाले हीरो, और इनके बीच थी भारतीय सिनेमा की धड़कन माधुरी दीक्षित। तीनों की ये जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ आई और ऐसा जादू हुआ कि फिल्म आज भी रोमांटिक फिल्मों की सूची में बड़े सम्मान से याद की जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत किसी को कहा जाए तो वो है इसका संगीत। कहते हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसकी ऑडियो कैसेट्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो चुकी थी और इसकी वजह थी संगीतकार नदीम श्रवण की मधुर धुनें और गीतकार समीर के दिल को छू लेने वाले शब्द। तो क्यों ना शुरुआत उसी गीत से की जाए जिसने लाखों दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी।

वाह क्या गीत है। दोस्तों क्या आप जानते हैं ये गीत शुरू से फिल्म का हिस्सा ही नहीं था। जी हाँ, जब फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी तब निर्देशक लॉरेंस डिसूजा को लगा कि फिल्म में एक ऐसा रोमांटिक गीत होना चाहिए जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित को की मासूमियत दिखाई जा सके। फिर क्या था, नदीम श्रवण ने धुन बनाई, समीर ने शब्द लिखे और एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज ने इसे अमर बना दिया। और अब जिक्र उस कहानी का जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया, लेकिन कहानी ज्यादा लंबी नहीं क्योंकि हमारा मकसद पूरी फिल्म सुनाना नहीं बल्कि उस फिल्म की खूबसूरती को महसूस कराना है। कहानी है दो दोस्तों की, एक का नाम अमन, दूसरे का आकाश। अमन शारीरिक रूप से कमजोर है लेकिन उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसकी शायरी उसे लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचा देती है। वो सागर नाम से कविताएं लिखता है लेकिन दुनिया नहीं जानती कि उसका असली नाम असली सागर कौन है। दूसरी तरफ है आकाश जो जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखता है, हंसमुख, शरारती और हर किसी की मदद करने वाला। फिर कहानी में आती है पूजा जो सागर की शायरी की दीवानी है लेकिन सागर को पहचानती नहीं। यहीं पर कहानी को देते हैं एक विराम और सुनते हैं इस फिल्म का प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से गीत के बाद फिल्म साजन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दो दोस्तों के बीच एक गलतफहमी का आना और फिर एक ऐसा त्याग जो कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अमन अपने प्यार से ज़्यादा अपने दोस्त की खुशी को इम्पोर्टेंस देता है और आकाश जब सच्चाई जानता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग कर देता है। लेकिन प्यार आखिरकार अपने सच्चे साथी तक पहुंच ही जाता है और इसी खूबसूरत संदेश के साथ फिल्म का अंत हो जाता है, यानी दोस्ती भी जीत जाती है और प्यार भी। तो आइए सुनते हैं फिल्म साजन से एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद आपको पता चल ही गया है कि आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से आपके पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आज की फिल्म है साजन और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त नंदा इस्सर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ip radio delhi@gmail.com। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, ip radio delhi@gmail.com। तो बने रहिए हमारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और हमारी आज की फिल्म है साजन। अब बात करते हैं फिल्म साजन के कलाकारों के अभिनय की। सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार संजय दत्त की, जिन्होंने अपनी आंखों की खामोशी, चेहरे के भाव और ठहराव से अमन के दर्द को इतना जीवंत कर दिया कि दर्शकों का दिल भी उसके साथ भर आता है। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। अब बात करते हैं सलमान खान की। 1991 में सलमान खान अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, लेकिन आकाश के रोल में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। सलमान की सहज मुस्कान, मासूम शरारत और दोस्ती निभाने का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। और अब

करते हैं उस अभिनेत्री की जिनके बिना साजन फिल्म की कल्पना अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। पूजा के किरदार में माधुरी ने मासूमियत, गरिमा और संवेदनशीलता का ऐसा सुंदर मेल दिखाया कि दर्शक उनसे जुड़ते चले गए। और भी बातें बताऊंगी फिल्म से जुड़ी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

वाह, क्या कमाल का गीत। इस गीत के बाद हमारे सारे श्रोताओं को अपने मेल का इंतजार है बेसब्री से, तो हम जल्दी से आपके संदेश शामिल कर लेते हैं। पहला संदेश हमें मिला है अजीत भवसार जी का। इन्होंने फिल्म से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें हमें बताई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है स्वर्ण सिंह जी का। इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। ये मेल हमें भेजा है गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से। और अगला

देश हम शामिल कर रहे हैं सुनील पाठक जी का। इनको ये प्रोग्राम और कहानी बहुत अच्छी लग रही है। अपने इन्होंने लिखा है कि फिल्म अपने ज़माने की खूबसूरत फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा संदीप पाठक जी, आपकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल हमें मिला है विजय सुरालकर का, मोताला महाराष्ट्र से। इनके साथ इनके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल हमें मिला है गुरमीत सिंह जी का। ये मेल हमें मिला है साउथ एक्सटेंशन से। और अगला संदेश की तरफ बढ़ते हैं। अगला संदेश है सतीश अनेजा जी का। साजन फिल्म बेहद खूबसूरत हिट फिल्म रही, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेल हमें मिला है चंडीगढ़ से। और एक और मेल शामिल करना चाहूँगी हीरामणि वर्मा जी का। इन्होंने इनको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। हीरामणि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं फिल्म का एक आखिरी गीत।

साथ में ये बता दें कि साजन के साथ साजन फिल्म को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 11 श्रेणियों में नामांकन मिला। उस समय ये अपने समय की एक बड़ी उपलब्धि थी। फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। निर्देशक लॉरेंस डिसूजा को बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया और इसी तरह से संजय दत्त, माधुरी दीक्षित को भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। सरकार ने तरल कुदरती गैस LNG की सप्लाई ते लागू हंगामी पाबंदियां हटा लिया ने। खेतीबाड़ी ते देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी कानून सफलता नाल लागू होने ते खुशी जाहिर करदिया कहा कि अगले 5 सालां च इस कानून तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वधा निवेश कीता जाएगा। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम ते पेड इश्तहारां विच बच्चों के जिनसी शोषण ते अश्लील समगरी के प्रसार नूं लैके मैटा नूं सख्त चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तों 10 जुलाई तक कतर बहरीन कुवैत ते ओमान के सरकारी दौरे ते रहणगे। प्रसिद्ध पांडवानी गायिका ते पद्म विभूषण नाल सन्मानित तीजन बाई दा देहांत हो गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने तरल कुदरती गैस LNG की सप्लाई ते लागू हंगामी पाबंदियां हटा दित्तियां ने। पछमी एशिया के संघर्ष विच जंगबंदी तो बाद हॉरमुज स्ट्रेट राही कुदरती गैस की सप्लाई मुड़ शुरू होने तो बाद फैसला लिया गया। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन विच कहा कि कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन आर्डर 2026 विच सोध की गई है। इस सोध तहत हंगामी प्रबंधा नूं हटा दिता गया है। हॉरमुज स्ट्रेट राही LNG सप्लाई विच रुकावटां तो बाद इस साल मार्च विच जरूरी वस्तुआं संबंधी कानून तहत हंगामी आदेश जारी किया गया सी। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस गल ते खुशी प्रगट की है कि विकसित भारत गरंटी फार रोजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई तो सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस मिशन तहत राज्यां नूं 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। उन्होंने कहा कि जिथे मनरेगा नूं लागू करने विच 3 सालों तो वध समां लग्या उथे विकसित भारत जी राम जी नूं सिर्फ 1 दिन विच देश भर विच लागू कर दिता गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के दृष्टिकोण नूं तेजी नाल लागू करने लई इस एक्ट तहत अगले 5 सालां विच 2,86,000 पंचायतां विच 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वध दा निवेश कीता जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2

0: साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: भारत अपनी ब्रिक्स प्रधान गेट केरला के कोची विच कल तो शुरू हो रही दो रोजा ब्रिक्स महिला कार्य समूह की मीटिंग की मेजबानी करेगा। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स मैंबर देशों के सीनियर सरकारी अधिकारी सारे खेतरां विच औरतां दे शक्तिकरण अते औरतां दी अगवाई वाले विकास नाल संबंधित मुख मुद्दयां ते विचार वटांदरा करन लई इकट्ठे होणगे। महिला कार्य समूह की मीटिंग मैंबर देशों नूं औरतां दी अगवाई वाले विकास ते विचार वटांदरा करन अते सहमति बनाउण दा मौका प्रदान करेगी। मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग 8 ते 9 जुलाई नूं होण वाली ब्रिक्स महिला मंत्री पद्धरी मीटिंग लई इक मजबूत आधार तैयार करेगी। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम ते पेड इश्तहारां विच बच्चों के जिनसी शोषण अते अश्लील समगरी के प्रसार नूं लैके मैटा नूं सख्त चेतावनी जारी कीती है। अधिकारित सूत्रों अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम नूं उन्हां सारे इश्तहारां ते समगरी नूं हटाउण दा हुक्म दित्ता है जो अजिही समगरी नूं उत्साहित करदे ने ते इस दी पहुंच नूं सुविधाजनक बनाउंदे ने। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनालोजी मंत्रालय ने 7 दिनां दे अंदर मैटा तों वेरवे सहित स्पष्टीकरण मंगिया है। सरकार इस गल दी समीक्षा कर रही है कि की प्लेटफार्म ने भारत सुरक्षा दिशा निर्देशों की पालना की है। भारत में डिजिटल कानूनों तहत अश्लील समगरी और बाल जिनसी शोषण समगरी की वंड एक अपराध है। यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके तो इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड दे 6 दिन दौरे ते जाणगे। श्री मोदी 6 तो 8 जुलाई तक इंडोनेशिया छूणगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया का चौथा दौरा है। मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधा नूं व्यापक रणनीतिक भाईवाली के पद्धर तक वधाउण तों बाद यह उन्हां दा पहला दुवाला दौरा होगा। दौरे दौरान श्री सुबियांतो नाल दुवाली गलबात होगी। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय भाईचारे नूं भी संबोधन करनगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तो 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे ते रहणगे। इस दौरे दौरान डॉ जयशंकर इन्हां देशां दे विदेश मंत्रियों ते नेतावां नाल मुलाकात करनगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दौरे का उद्देश इन्हां देशां नाल भारत के दवल्ले संबंधां नूं मजबूत करना ते खेतरी विकास ते आपसी हित के मुद्दों बारे सलाह मशवरा करना है। ओमान के अपने दौरे तो बाद डॉ जयशंकर 13 जुलाई नूं न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल लई भारत की मुहिम की शुरुआत करनगे। इस तों बाद 14 ते 15 जुलाई नूं ओ ब्रसल्स विच भारत यूरोपी यूनियन व्यापार अते तकनालोजी परिषद की तीजी मीटिंग विच हिस्सा लैणगे अते यूरोपीयन यूनियन अते बेलजियम के विदेश मंत्रियों नाल गल्लबात करनगे। प्रसिद्ध पांडवानी गायिका ते पद्म विभूषण नाल सन्मानित तीजन बाई दा देहांत हो गया है। वह लंबे समय तो बीमार सन अते एम्स रायपुर विच सिर इलाज सन। उन्होंने अज तड़के 3:15 बजे आखिरी साह लिया। अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली स्टेज मौजूदगी अते विलक्षण कथा शैली नाल तीजन बाई ने पांडवानी नूं ना सिर्फ भारत विच सगों अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इक नवीं पछाण दवाई। महाभारत दीआं कहानियां नूं स्टेज ते जीवंत करन दी उन्हां दी विलक्षण योगता ने उन्हां नूं भारतीय लोक सभ्याचार ते महान कलाकारां विचों इक बना दित्ता। भारतीय लोक कला विच उन्हां दे शानदार योगदान दे सन्मान विच उन्हां नूं पद्म श्री, पद्म भूषण अते देश दे दूजे सब तों उच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण नाल सन्मानित कीता गया सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई दे देहांत ते दुख प्रगट कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली शख्सियत अते प्रदर्शन की विलक्षण शैली नाल महाभारत दीआं कहानियां नूं स्टेज ते जीवंत कीता। राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी असाधारण प्रतिभा, समर्पण अते सालां दे सख्त अभ्यास राहीं तीजन बाई ने भारत अते विदेशां विच छत्तीसगढ़ दे अमीर पांडवानी परंपरा नूं सन्मान दवाया। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ने कहा है कि तीजन बाई का देहांत कला दे

0: इस महीने की पहली तारीख से नाफिज हो गया है। वज़ीर मौसूफ़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मज़कूरा मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद मंजूर की और इसे जारी किया। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार गारंटी स्कीम MG नरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी एक्ट को कामयाबी के साथ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि MG नरेगा पर अमल दरामद में 3 साल लग गए थे, जबकि विकसित भारत जी राम जी एक्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 1 दिन में ही नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि इस एक्ट के तहत अगले 5 साल के दौरान 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाया जाएगा, ताकि विकसित भारत के नजरिए की रफ्तार में तेजी लाई जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि इस शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इक्तिसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मज़कूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को ये हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तिहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके ज़रिए बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मज़कूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इत्तलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिल एतराज मवाद दिखाया गया है जिससे बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका अहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। छत्तीसगढ़ के मारूफ पंडवानी गुलुकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलसुबह 3:15 के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुरसर आवाज़, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अलाक़वामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिरां कद्र खिदमात के एतराफ में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर

0: रमेन डेकर और वजीर आला विष्णु देव साय ने भी तीजन बाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायात को महफूज रखने नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके ग्रां कदर रोल की सताइश की है। डॉक्टर तीजन बाई की आखिरी रसूम दुर्ग ज़िले में उनके आबाई गाँव गनियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज साबिक मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान को अवाम और मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और अज़्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और औसत बारिश होने की पेशगोई की गई है। ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहार हटाए जाएँ। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। और छत्तीसगढ़ के नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following resumption of LNG shipments through Strait of Hormuz. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan releases 25,000 crore rupees assistance to states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act. Center orders Meta to remove child abuse ads from Instagram, seeks reply in 7 days. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh Tijan Bai passes away. President, Vice President and Prime Minister express grief over her demise. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today. And in ICC Women's T20 World Cup finals, England to face Australia in London this evening. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today released the first installment, mother sanction, of over 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of VBG Ramji with rural development ministers of all states and union territories.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और आईसीसी महिला टीम

0: ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय

0: राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
1: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
5: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
6: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
4: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: सावन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार साथियों, आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी आप सभी का स्वागत करती है। साथियों, आज हम याद करेंगे और बात करेंगे हिंदी सिनेमा के महान और दिग्गज गीतकार भरत व्यास के बारे में, जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में कई कालजयी और शुद्ध हिंदी गीतों की रचना की। उन्होंने अपने करियर में लगभग 125 से अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखे। आइए फिर कार्यक्रम का आगाज भी ऐसे प्रार्थना गीत से करते हैं जो प्रार्थना के रूप में आज भी कहीं कहीं सुनने को जब जब मिल जाता है तो मन शांत होकर कुछ

वाह, लिखने वाले ने क्या लिखा और लता जी की आवाज ने उसमें क्या मिठास भर दी। फिल्म दो आंखें बारह हाथ से अभी आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार और हमारे आज के कलाकार हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास। भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। बचपन से ही उनमें कवि प्रतिभा दिखने लगी थी। उनका पहला लिखा गीत था आओ वीरों हिलमिल गाएं वंदे मातरम। उन्होंने रामू चन्ना नामक नाटक भी लिखा। 1942 के बाद वे बंबई आ गए जहां उन्होंने कुछ फिल्मों में भूमिका भी निभाई, लेकिन प्रसिद्धि तो उनको गीत लेखन से ही मिली। तो अब आपका मन किस गीत को पुकार रहा है, आइए सुन लेते हैं बिना देर किए।

उम्मीद करती हूँ हमारे गीतों ने भी हमारे श्रोताओं को अपने रेडियो सेट के करीब ला दिया होगा और वो गुजरा हुआ दौर और उसके गीत याद आने लगे होंगे। तो बने रहिए अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो केंद्रित है गीतकार भरत व्यास पर। हिंदी फिल्मों में उनको पहला ब्रेक मिला फिल्म दुहाई के लिए, जो वर्ष 1943 में रिलीज हुई। संगीत निर्देशन का श्रेय संयुक्त रूप से पन्नालाल घोष, रफी गजनवी और शांति कुमार को दिया गया। गीत नूरजहां और शांति आप्टे द्वारा गाए गए थे। भरत जी नाटकों और रिकॉर्ड के लिए राजस्थानी गीत भी लिखते थे। भरत व्यास जी को फिल्म निर्देशन में भी रुचि थी और वास्तव में उन्होंने करियर की शुरुआत में ही एक फिल्म का निर्देशन भी किया था। जी हाँ, उन्होंने 1940 के दशक में कुछ शुरुआती फिल्मों में अभिनय भी किया। मुंबई आने के बाद उनकी काव्य रचनाएं काफी लोकप्रिय हुई थीं। लेकिन 4 जुलाई 1982 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनको हमारा शत शत नमन।

श्रोताओं, मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना सारंगा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास के बारे में। तो उनके लिखे कौन कौन से गीत आपको बेहद पसंद हैं, या आज के कार्यक्रम में आप सुनने के लिए बेहद इच्छुक हैं, हमें बताइए। हमारा पता है वही ipradiodelhi@gmail.com। और अगर हमारे आज के कलाकार से जुड़ी कोई भी खास बात, खास जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारे सभी साथियों को भी बताना चाहते हैं, तो आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी आप सभी का स्वागत करती है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, जानकारी के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ईमेल्स हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप सब की आ चुकी हैं। तो चलिए, अब बारी आती है आपके संदेश पढ़ने की। अब जो हम संदेश लेने जा रहे हैं कार्यक्रम में, ये मिला है हमें मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और ये लिखते हैं, आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लग रहा है और इनको इनके पुराने दिन याद आ गए हैं। बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए ये धन्यवाद लिखते हैं। तो धन्यवाद साथी। अगली ईमेल आई है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह, और इनको बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, धन्यवाद। अगली ईमेल आई है पता पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से, आप हैं साथी नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई और इनके सभी साथी। अगला संदेश है साथियों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो हमारे साथी एक बार संदेश भेज चुके हैं, कृपया वो दोबारा ईमेल ना भेजें, जिससे हम अधिक से अधिक ईमेल शामिल कर सकें। अगली ईमेल आई है गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, और इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है अपने संदेश में, बस ईमेल भेजी है। अगली ईमेल आई है अजीत भावसार की, महान गीतकार कवि भरत व्यास ने हिंदी सिनेमा को ए मालिक तेरे बंदे हम जैसे अमर गीत दिए, और उनके बारे में इन्होंने जानकारी लिखी है जो हमने आपको अधिकतर अधिकांश इस कार्यक्रम में बता ही दी। धन्यवाद साथी, आप गौर से सुन रहे हैं और आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की। और अगली जानकारी हमें दी है, संदेश भेजा है, ये है हमारे साथी अमर रमेश कुमार खत्री, ये हैं, मैडम जी नमस्कार, चने सर गोट कराची से आप हैं अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, योर प्रोग्राम ब्यूटीफुल सॉन्ग कलेक्शन ज़बरदस्त लाजवाब। ओ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप सभी का। अगली जो ईमेल है वो है धर्मेंद्र छिप्पा जी की, भोपालगढ़ राजस्थान से इनके साथ हैं कपिल छिप्पा, पूजा परिहार, कार्यक्रम एक ही कलाकार, आज आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म जगत के मशहूर गीतकार भरत व्यास के बारे में, बेहतरीन बातें बता रहे हैं, ऐतिहासिक गीतों की रचनाओं के मशहूर गीतकार भरत व्यास ने कालजयी नगमे लिखे, आपने उनके बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुना रहे हैं, नगमे भी सुनवा रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, धन्यवाद इतनी सारी तारीफों के लिए। साथी, आप लोग जब ऐसी ईमेलों में ऐसे हौसला अफजाई करते हैं तो इससे हमारे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं। अगली ईमेल आई है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से, आप हैं राजेश सेन, सुरेश सेन, और अगली ईमेल आई है जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से, श्रोताओं के नाम है शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता लिपि, दीपाली गोप की। अगली ईमेल आई है आर कुमार की, वड़िंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की। गांव नथाना से आप हैं हमारे साथी जुड़े हुए, पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, ऐसी ही कामना के साथ हम आप सभी के लिए कामना करते हैं। ये है ग्राम पंचायत कालेगांव से, जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव कुमार, संचित वायल कुमार, प्रथमेश कुमारी, प्रणाली सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी हर्षदा, ये कि कलाकार, ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें कलाकार के जीवन पर ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, आज के कलाकार के बारे में मालूमात दी जा रही है, धन्यवाद। और ये हमारे साथी हैं संबलपुर कांकेर से फरगुन यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अगले साथी हैं जिनकी हम

मेल शायद शामिल कर चुके हैं दिग्दर्शन गौड़ जी। ये हमारे साथी हैं कार्यक्रम में। पता ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश से। श्रोता उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, बघेल परिवार के सभी सदस्य। अगले साथी हैं हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से। और इसके साथ ही हमारे अगले साथी जो हैं वो हैं संदीप मक्कर जी, ज्योति मन्नत, भरत कमल सहानी, और ये हैं जालंधर से लिखने वाले हमारे साथी। तो श्रोताओं आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और अगले साथी हैं हमारे वीरगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, और इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी फरमाइश लगभग लगभग पूरी हो गई होगी। और अगली जो हमें ईमेल भेजी है ये हैं देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया, पोता मास्टर अल कबीर। इसके साथ ही हमारे जो अगले साथी हैं वो हैं मैडम जी, प्रोग्राम के सारे सॉन्ग कलेक्शन ज़बरदस्त लाजवाब हैं। ये हमारे साथी हैं चनेसर गोट कराची से, अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल, इनकी शायद हम ईमेल शामिल कर चुके हैं। कुछ लोग हमें बार बार ईमेल भेज रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को आज के कार्यक्रम से दीजिए विदा। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारे यहाँ पे जो ये आषाढ़ को महीना चल रहा है ये बड़ो परम पावन और पुनीत महीना है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष के समस्त भूभाग में अनेक ऋतु पर्व आमे हैं और उनमें अनेक मासन की अपनी महत्ता है, पर जो ये आषाढ़ को महीना है ना ये लोक में बड़ी महत्ता रखे है।
1: जी हाँ चंपा, ग्रीष्म ऋतु के उपरांत जब पावस ऋतु आवे और आषाढ़ को महीना जब लगे है
0: और या के संग बड़ी महत्ता की बात ये है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को पर्व, देवशयनी एकादशी को पर्व, गुरु पूर्णिमा जाते व्यास पूर्णिमा के में है ना।
1: जी हाँ चंपा जी, आषाढ़ मास के जो पर्व हैं, जो उत्सव हैं, जाकू आप मुड़िया पुन्यो कह रहे हैं वो बहुत बड़ा उत्सव ब्रिज में मनायो जाए, तनिक देखो तो सही। जो चातुर्मास के जो व्रत है, जो चातुर्मास को व्रत करे हैं वे हु अपने अपने स्थानन पे आए के एकत्रित है जाए। भड़ैया नवमी को बहुत बड़ा योगदान है।
0: हाँ।
1: कि भड़ैया नवमी को ऐसा मानो जाए कि देव सुबे ते पहले ये असूझ सायो होए, कि जाको कोई सायो ना बनो होए वाको भड़ैया नवमी को कर लियो।
0: तो आप पे एक आध भड़ैया नवमी को नौ तो है के ना है?
1: अरे हम पे नौ तो है, तभी तो हमें याद आई भड़ैया नवमी, हमें तो जाने न लड्डू खावे।
0: अरे नृत्य गोपाल जी तो ऐसी बात है, लड्डू ने अकेले मत खा लीजो, हम अपने संग ले चलियो। और अब ही देखो नृत्य गोपाल जी, आप कह रहे थे ना कि चातुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे ब्रज धरा में ना इन चार महीना तक जो चातुर्मास को पर्व है, बहुत सारे श्रद्धालु ना ब्रजवास करवे के काजे आमे हैं। और भगवान जगन्नाथ को तो ये आषाढ़ को महीना समर्पित है ही है, क्योंकि वो पूर्णता के प्रतीक हैं और उनको ये परम पावन मास है। और देखो ना पूरे ब्रज मंडल में इंद्रनान जय जगन्नाथ जय बलभद्र जय सुभद्रा इनकी ही गूंज सुनाई पड़ रही है।
1: देखो चंपा, मोकू कभी गंग को एक छंद याद आ रहे हो,
0: सुनाओ।
1: राधिका रमैया रंग भूमि को नचैया, भारी भय को भजैया कवि गंग उर लाइये, कंस को मरैया बलवंश को धरैया, काली नाग को नथैया नाथ निशदिन गाइये, अग को हरैया सुख ब्रंद को करैया, तिहु लोक को तरैया तिन बिन तन ताइये, बलि को छलैया बलभद्र जू को भैया, ऐसो देव की को छैया छाड़ और कौन धाइये।

0: तो प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो ब्रज भक्ति की बात तो इतनी विलक्षण है, कई विषय ही ऐसो है यहाँ पे ना, हम कितनी भी बात करते जाएं, विशद व्याख्या ब्रज भक्ति साहित्य के काजे हुई है उनकी बात करते जाएं, कोई और कोई छोर है ना है।
1: हाँ चंपा, ब्रज में बड़ी सुंदर सी लोकोक्ति है, ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, त्यों चतुरन की बात में बात, बात में बात।
0: तो आप हमें चतुर कह रहे
1: अरे
0: हो?
1: आपकी बात में तो वार्ता निकल रही है, तो आप चतुर ही हैं।
0: अरे नृत्य गोपाल जी, बार्तान की बात करोगे ना तो बार्तान की तो बात ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ऐसो करें कि ऐसी ही कोई रोचक चर्चा की ओर अपने भैया बहनान को ले चलें।
1: जी हाँ, अवश्य ले चलो ना चंपा जी।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये वार्ता, जाको विषय है ब्रज का वार्ता साहित्य। आलेख है मोनीश कमल जी को और वाचन कर रहे हैं नृत्य गोपाल जी।
1: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे सब श्रोतान को मोनिश कमल के राधे राधे। श्रोताओ, ब्रज क्षेत्र में वार्तान को अपनो महत्व है। वार्ता सो तात्पर्य हुए है वार्तालाप या बातचीत। आपसी वार्तालाप में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु विकसित है जाए जिनमें क्षेत्रीय जनमानस की भावनाओं को और लोक संस्कृति को स्वरूप विकसित है जाए है। वार्ता के अनेक रूप हों, ब्रज क्षेत्र के वार्ता स्वरूप को अध्ययन करते भए ऐसो पतो चले है कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास में इन वार्तान की बड़ी भूमिका रही है। जी हाँ श्रोताओ, जो हिंदी गद्य विकसित भयो वा में ब्रज भाषा के वार्ता साहित्य की बड़ी भूमिका है। ब्रज भाषा गद्य को प्रारंभिक रूप वार्ता साहित्य में देखने को मिले। ऐसो देखो जाए है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जिनने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी, वल्लभ संप्रदाय के स्थापक, उनके पुष्टि मार्ग में वार्ता लिखवे की बड़ी परंपरा रही है। पुष्टि मार्ग के दो ग्रंथ, एक है 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरो है 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों प्राचीन ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथन को संपादन अनन्य वैष्णव श्री हरि राय जी ने करो है। 84 वैष्णवन की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के उन सेवकन को चरित्र वर्णित है जो पुष्टि मार्गी भक्ति के प्रचारक है, और 252

वैष्णवन की वार्ता में गोस्वामी विठल नाथ जी के उन शिष्यन को चरित्र है जिनने पुष्टि मार्ग को जन सामान्य तक पहुंचावे में महत्वपूर्ण कार्य करो। अष्ट छाप के कविन को चरित्र हो सबसों पहले इन ग्रंथन में ही प्रकाशित भयो। ये दोनों ग्रंथ ब्रज वार्ता साहित्य की अमूल्य निधि हैं। वार्ता साहित्य मूलतः जीवनी

जी के अनन्य सेवक दामोदर हरसानी जी ने विकसित करे हो वाको साहित्यिक रूप या वार्ता साहित्य में दिखाई पड़े। दामोदर हरसानी जी ने संत और भक्तन की जीवनी को प्रवचन करके वाको एक स्वरूप प्रदान करे हो। ब्रज के वार्ता साहित्य में अष्ट सखान की वार्ता को हो बहुत महत्व मान्यो जाए है या में अष्ट छाप के जो कवि है उनको परिचय दियो गयो है। 16वीं-17वीं शताब्दी में जटमल नामक कवि ने गोरा बादल की बात नामते एक पद्य ग्रंथ लिखियो या में पात्रन के कथन को वार्ता शब्दों प्रकट कियो गयो है। जैसे दूसरा वाण आन दिए वार्ता आज साहित्य में वार्ता विधा के रूप में विकसित है गई है और विशेषतः जब हम रेडियो पे देखे हैं तो रेडियो पे एकल विचार प्रस्तुति को वार्ता या टॉक कहो जाए है। ब्रज क्षेत्र में कृष्ण लीलान को प्रदर्शन प्रिय मनोरंजन साधन है। इनमें संगीत साहित्य नृत्य अभिनय संवाद मंच सज्जा आदि को कलात्मक रूप दिखाई पड़े। लोक वार्ता ने या के स्वरूप को न केवल परिवर्तित कियो है वरन या को समसामिक हु बनायो है। रासलीला के आचार्यन में गोबर माणन लीला को प्रदर्शन बहुत बार करो जाए। यह श्रीमद् भागवत के प्रसंग पे आधारित अभिनय लीला है या में एक गोपी गाय के गोबर सो कृष्ण को श्रृंगार करे। और जब गोबर की बात चले तो आप सब जाने कि गोबरते गोवर्धन बनाएवे की लोक वार्ता है और लोक वार्ता पे आधारित ही है। यह भाद्रपद यानी भादों के महीना में बरसाना क्षेत्र में जब साधु संतन की 84 कोस की परिक्रमा चले तो 15 दिन तक बूढ़ी लीलान को उत्सव मनायो जाए। बूढ़ी लीला उत्सव को आधार लोक वार्ता है। इन उत्सवन के अंतर्गत बरसाना के आसपास के गांवन में चिकसौली रिठोरा ऊंचा गांव संकेत वन गाजीपुर आज नोक कमई करहला आदि में कृष्ण की माधुरी लीलान को मंचन करो जाए है। इन लीलान में मटकी फूरन चीरहरण दान लीला मान लीला महारास आदि को मंचन करो जाए पर ये जो स्थानीय मंचन है वह को आधार वहाँ की लोक वार्ता है। ब्रज 84 कोस की यात्रा में बहुत से प्रसंग लोक वार्तान पे आधारित हैं। कामवन क्षेत्र में चरण पहाड़ी भोजन थारी फिसलनी शिला व्योमासुर की गुफा 84 कूप 84 मंदिर 84 कुंड 84 खंबा आदि को ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ज्यादा ना मिले पर ये सब लोक वार्तान पे इतने आधारित हैं और उनको महत्व इन लोक वार्तान सो ही स्थापित करो जाए। इनको संदर्भ लोक प्रचलित वार्ता हैं। 84 खंबा के 2 स्थान ब्रिज में हैं, एक वृंदावन में और दूसरो कामवन में। दोनों के बारे में कहो जाए कि एक ही रात्रि में काउ अदृश्य शक्ति ने इनको निर्माण कर दियो, इन्हें कोई गिनना पावे। वस्तुतः ये स्थल वास्तुकला के अनुपम उदाहरण है। कोटवन में हूँ या ही प्रकार एक वास्तुकला स्थित है। ब्रज क्षेत्र में बहुत से कुआ तालाब और वृक्ष अनेक प्रकार की लोक वार्ता और लोक कथांसों जुड़े भए हैं। राधा कुंड को गोप कुआ गोवर्धन परिक्रमा में स्थित उद्धव कुंड गोविंद कुंड इन सब को लोक वार्ता परक महत्व ज्यादा है। मथुरा को गोविंद कुंड वृंदावन में रंगजी मंदिर की बगल में बनी बाबरी आदि की कथा ऐतिहासिकतासों परे तथ्यगत कम और लोक वार्तान पे आधारित अधिक हैं। वृंदावन के निधिवन और सेवा कुंज में बने भए तालाब देखवे में ही ऐसे लगे हैं कि ये तालाब नाए, इन्हें ललिता कुंड और विशाखा कुंड को नाम दियो गयो है और इनके संबंध में जो कथा या वार्ता प्रचलित हैं वे लोक वार्ता ही हैं। ब्रज क्षेत्र में बहुत से ऐसे वृक्ष हुए हैं जिनके संबंध में नाना प्रकार की लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में जहाँ रमण रीति है वाके भीतर श्वेत और श्याम वर्ण के वृक्ष एक दूसरे से लिपटे भए हैं। संत इन वृक्षन में श्यामा श्याम सनीही को देखे हैं। वंशीवट को नाम जब वृक्ष के आधार पर पड़ो वाकी प्राचीनता के संदर्भ में कहो जाए कि यह वही वृक्ष है जहाँ पे बैठ के श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन वेणुवादन करो। वृंदावन स्थित काली देह पे जो विशाल और प्राचीन वृक्ष है वाको संबंध हो कृष्ण काल से जुड़ो जाए है। भावनात्मक प्रतीकात्मक और

0: लोक मान्यता जैसे होए पर इन लोक वार्ता ने प्रमुख रूप तो धारण कर ही लियो है जासों लोग प्रभावित हुए है। ब्रज क्षेत्र के प्रत्येक गांव में देवी देवता जिनके नाम स्थानीय आधार पर प्रचलित है जाएं, शेड़ चावड़ मल्ल बाबा मंदिर वारे बाबा झूला वारो बाबा आदि आदि इन सब के नाम ते कोई ना कोई लोक वार्ता प्रचलित है। ब्रज के प्रसिद्ध संतन के साथ हो कोई ना कोई लोक वार्ता जुड़ी भई है। स्वामी हरिदास जी को ललता सखी को अवतार मान्यो जाए, हित हरिवंश जी को मुरली को अवतार मान्यो जाए है और हो अनेक संत हैं जिनके संग कोई ना कोई वार्ता जुड़ी भई है। लोक साहित्य में वार्तान को प्राधान्य रहे, जो लोक गीत ब्रज की अमूल्य निधि बने भये हैं उनमें लोक की कोई ना कोई वार्ता छिपी रहे। ब्रज क्षेत्र को प्रसिद्ध लोक गीत है चंदा तेरी निर्मल कही है चांदनी राजा की रानी पानी नी करी। अब यह लोक गीत में नायक नायिका के मध्य जो वार्तालाप है वह ब्रज वार्ता को ही एक स्वरूप है। यही प्रकार सावन भादों या वर्षा ऋतु में मोरा गीत चंद्रावली निहाल देव चंदना मल्हार ये सब जो लोक गायन की शैली हैं, उनमें कोई ना कोई लोक वार्ता छिपी रहे। ब्रज क्षेत्र में एक पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है कि यहाँ पे बुढ़िया पुराण की चले। अब ये कोई परंपरागत शास्त्र ना है, ये जो बुढ़िया पुराण है या में वृद्ध और वृद्धान के मौखिक विचार ही प्रमुख हुए हैं, इनमें अनुभव की प्रधानता रहे। वृद्धान की ये बात पुस्तकाकार रूप में संकलित नाए होए परंतु कोई शुभ कार्य होए या अशुभ कार्य सब में इनके अपने ही प्रावधान होए, इनमें तर्क वितर्क की कहूं गुंजाइश ही नाए होए, बस इतनो कहवो ही पर्याप्त होए हमारी डोकरी तो ऐसे ही कराए भाई। अब याही सो या को बुढ़िया पुराण के हो जाए। उदाहरण के ताई ऐसो देखो जा सके है कि काहू घर में कोई मंगल कार्य होए, अब कितने हु मंत्र पढ़ लें पर जब तक बहन बेटी आरतो ना उतारेंगी तब तक वह लोक मंगल के कार्य की पूर्णाहुति ना होए। ये जो आरतो होए या आरते में कोई बोल का वो शास्त्र सो ना लिए गए, ऐसो लगे जैसे शास्त्र और लोक की बात दोनों एक ही हैं। जन्म छठी पूजन कुआ पूजन कन छेदन मुंडन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार विवाह संस्कार इन सब अवसरन पे लोक गीत और लोक वार्तान को अपनो महत्वपूर्ण योगदान हुए है और लोक के जितने ब्रज के उत्सव हैं, जितने हु त्योहार हैं, जितने हु व्रत हैं, उन सब में कोई ना कोई लोक वार्ता जुड़ी भई है। हमारी सब मैया बहन जब कोई व्रत करें तो वाको परायण करते वहे वाको खोलते वहे आप जाने हैं कि वे कोई ना कोई लोक वार्ता को जरूर पाठ करें या गायन करें या सामूहिक रूप में सुने हैं। यही लोक वार्ता हो और ब्रज में इन लोक वार्तान की व्याप्ति बहुत बड़े स्वरूप में देखी जाए है। जय जय श्री राधे।
1: प्यारे भैया बहनाओं अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो ब्रज का वार्ता साहित्य, आलेख हो मोनिश कमल जी को और वाचन स्वर हो नृत्य गोपाल जी को। तो नृत्य गोपाल जी
0: जी चंपा जी
1: देखो हमारी ब्रज वसुंधरा को जो वार्ता साहित्य है ना बाकी ऊपर आपने बड़ी रोचक चर्चा हमारे श्रोता भैया बहनान को सुनाई है पढ़ के, तो याके काजे हम आपके आभारी हैं और अपने भैया बहनान के आभार की तो हम आपको बात बता मई का जितनी बात बताएंगे उतनी ही कम है।
0: देखो चंपा जी अषाढ़ को महीना लग जाए तो ऐसी कछु कछु बात याद आ जाए हैं।
1: ये तो ब्रज की लोकोक्ति है, ब्रज की कहावतें, ये तो बहुत ज्ञान को अतुल्य भंडार है ब्रज की जो वाणी है ये।
0: जी हाँ चंपा जी देखो तनिक घाघ भड्री भये उनने वर्षा ऋतु के ऊपर कितनी सुंदर सुंदर लोकोक्ति लिख दी जो अषाढ़ सावन में अपने आप याद आ जाए हैं।
1: हाँ?
0: न देखो उन्हें कही कि तीतर बरनी बादरी रहे गगन पर छाए कहे डंक सुन भड्डुरी बिन बरसे ना जाए।
1: बरसे बदरी तो धानी ना बरसे तो पानी पानी। और एक और है गोबर राखी पाती सड़े फिर खेती में दाना पड़े।
0: देखो चंपा जी ये जो खेती की बात है ऐसी तो अनेक लोकोक्ति हैं। छोड़े खाद जोत गहराई फिर खेती का मजा दिखाई।
1: और हमारे ब्रज में तो देखो कितनी प्रचलित बात है कि भादों की छठ चांदनी जो अनुराधा होए, ऊबड़ खाबड़ बोए के अन्न घनेरा होए।
0: जी हाँ चंपा, ये जो लोक की अपनी साधना है, यही में उनके सवरे शास्त्र आ जाए, चाहे वे मौसम विज्ञान की बात करें या ज्योतिष की करें, नक्षत्रन की करें, यही सो तो जो आपने कही ना कि या में भादों की छठ चांदनी, तो ये जो नक्षत्रन को या मौसम

0: स्वरूप है
1: जी
0: वाकुल लोक में कैसे वर्णित कर दियो जाए।
1: अनुमान है।
0: हाँ
1: हाँ
0: आप तनिक देखो, कहें कि आषाढ़ मास पूनो दिवस बादल घेरे चंद, गाओ भैया रागनी होय परम आनंद।
1: तो ये सब चीज जो है अनुमान, अगर ये ऐसे दिखाई पड़े तो या को सीधो सो मतलब है कि भैया खुशी के गीत गावे को समय है, रागनी गावे को समय है, रागनी सुनवे को समय है।
0: हाँ मेह के रिपटवे को हु समय है।
1: हाँ, और मेह बरसेंगे तो हमारे ब्रज में कहावत है झर लग रही है।
0: हाँ
1: तो नृत्य गोपाल जी, जब यह आषाढ़ माह की बात चल रही है तो यह आषाढ़ मास के ही कोई लोकगीत की ओर अपने श्रोता भैया बहनान को ले चलें।
0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुने आषाढ़ मास को ये प्यारा सो लोकगीत।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये मनभा वंशो लोकगीत शालिनी शर्मा के मधुर स्वर में सुन रहे हते। तो नृत्य गोपाल जी
1: जी, चंपा जी,
0: देखो अषाढ़ के महीना की बात चली, जामुन की और आम की बात ना चले, ये कैसे हो सके। और ये तो देखो हमारे जो वाणीकार हुए हैं, जो संत साहित्य की रचना भई है, तो वहां पे भी इन रसीले फलन को ना वर्षा ऋतु में, विशेषकर अषाढ़ सावन भादो में पढ़वे के काजे हमें मिले है।
1: जी हाँ चंपा, चलो सखी अनुपम आम के बाग, बैठे श्याम जहां राधा संग धर अमरसी पाग। प्यारी जब फल मांग्यो श्याम सो, कह पिए वचन अनुराग, ले गुलेल तब तोरे प्रिया मिस वृंदा विपिन सुहाग। बीनत भर भर छाव राधा, अरु ब्रज नारी बड़ भाग, श्याम ग्वालिनी परम फल पायो, गायो नेह मृदुराग।
0: जी नृत्य गोपाल जी, तो देखो जब आम जामुन जैसे जो रसीले फल हैं ये मिलेंगे, तो कौन अनुराग के रागन में ना डूबेगो, कौन रागनी ने ना गाएगो, कौन लोक गीतन की तानन पे ना झूमेगो। तो ये जो आषाढ़ को महीना है, ये बड़ो परम पुनीत पावन महीना है। तो हम अपने श्रोता भैया बहनान थे यही कह में चलते चलते के प्यारी भैया बहनाओ, चातुर्मास को परम पावन पर्व आरम्भ होवे वारो है, उड़िया मेलो आए रहो है, जगन्नाथ रथ यात्रा आए रही है। तो आषाढ़ मास के जो ये पर्व उत्सव हैं, इनको आनंद लेवे के काजे आप ब्रज धरा में पधारो। ब्रज धरा आपको बड़े स्नेह ते बुलाए रही है, आमंत्रण दे रही है। तो इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को, कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जय वी की अनुमति प्रदान करें। नमस्कार, नमस्कार।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: ना रोने की वजह होती है ना हंसने का कोई बहाना, ऐसा होता है बचपन जो खुलकर है बिताना। बचपन के दिन बहुत सुहाने होते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था बस मुझे बड़ा नहीं होना, और बड़े होने के बाद भी लगता है वापस फिर से छोटी हो जाऊं। हाँ, बचपन में ये जरूर होता था कि बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन जो खेलने का मजा था वो अपना अलग था। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो भाई इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां, ऐसे में अगर हम अपना बचपन भूल जाएं तो कैसे अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएं। तो बचपन को याद रखना बहुत जरूरी है, बच्चों को प्यार देना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है रेडियो किड्स, जिसमें बच्चों की खिलखिलाती मुस्कान को आप सुन पाते हैं, उनकी प्यारी बातें सुनते हैं, और कितने टैलेंटेड हैं ये बच्चे भाई ये भी जानने का मौका मिलता है। आज रेडियो किड्स में हमारे कौन कौन से बच्चे आए हैं, उनमें क्या क्या टैलेंट छिपा है, ये आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये तो जान लीजिए आज आपके साथ है कौन। आज आपके साथ हूं मैं सुरति, करूंगी आपके साथ ढेर सारी बातें और बहुत सारे बच्चों की प्यार भरी बातें आज आप तक पहुंचाऊंगी। इससे पहले कि हम जाने कि बच्चे हमारे जो आज आए हैं वो कितने टैलेंटेड हैं, उनमें क्या क्या टैलेंट छुपा है, एक वेलकम तो ले लें। तो हमारे प्यारे क्यूट बच्चे अब आपका स्वागत करने वाले हैं अपने स्टाइल में। तो विद दिस 1, 2 एंड 3
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: आहा, क्या बात है भाई, हमारे क्यूट बच्चों ने एक प्यारा सा स्वागत आपका किया है। अब ये तो जान लें कि आखिरकार ये क्यूट बच्चे हैं कौन कौन। तो मैं अब सारे बच्चों से कहूंगी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हमारे सुनने वाले जान सकें कि आज कौन कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आए हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले बच्चे छोटे वाले से। सबसे पहले, हाँ जी, आपका क्या नाम है बेबी?
2: राजवीर।
0: कौन सी क्लास में हो?
2: वंशी।
0: और आपकी एज क्या है?
2: 5 years।
3: मेरा नाम वियान है, मैं 7 साल का हूँ और 3rd में हूँ।
4: मेरा नाम अथर्व है, मैं 12 साल का हूँ और मैं 7th में हूँ।
5: मेरा नाम सारांश है, मैं 14 साल का हूँ और 10वीं कक्षा में हूँ।
6: मेरा नाम अर्णव है, मैं 6th क्लास में हूँ और मैं 10 साल का हूँ।
7: मेरा नाम स्वर्णिम है, मैं कक्षा 8 में हूँ और मैं 13 साल की हूँ।
8: मेरा नाम क्षितिज है, मैं 14 साल का हूँ और 10वीं कक्षा में हूँ।
9: मेरा नाम अनन्या सिंह है, मैं अभी 14 साल की हूँ और मैं अभी 10th क्लास में हूँ।
0: ओके, क्या बात है, एक बार सारे बच्चे अपने लिए जोरदार ताली बजा दे, दिल खोल के तालियां।

0: सो हमारे प्यारे क्यूट बच्चों की प्यारी प्यारी आवाजें तो आपने सुन ली, लेकिन अब बारी आ गई है ये जानने की कि आखिरकार इनका फेवरेट टॉपिक क्या है, क्योंकि हर किसी का फेवरेट टॉपिक होता है। तो हम सबसे छोटे क्यूट राजवीर से शुरू करते हैं। राजवीर, आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक है?
1: कि छोटा ही रहना।
0: छोटा रहना, राजवीर को छोटे रहना बहुत पसंद है। अब राजवीर से हटकर हम बात करते हैं अथर्व से। अथर्व, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
2: बड़ा होकर फुटबॉलर बनना।
0: बड़ा होकर फुटबॉलर बनना, अमेजिंग। अथर्व को क्या पसंद है?
3: खेलना।
0: खेलना, अथर्व को खेलना बहुत पसंद है। अब बात आ गई है आगे बढ़ने की, तो आगे हमारे साथ है सारांश।
4: मेरा फेवरेट टॉपिक है क्रिकेट खेलना और गिटार प्ले करना।
0: सारांश, आप क्रिकेट खेलते भी हो?
4: यस।
0: कितना खेलते?
4: स्कूल की हॉलीडेज होती हैं तो उन दिन ज्यादा खेलता हूँ।
0: ओके, और आपने कहा गिटार प्ले करना आपको पसंद है।
4: Yes.
0: कितना टाइम डिवोट करते हो आप गिटार के लिए?
4: मैक्सिमम 1 to 2 hours इन अ डे।
0: ओ वाओ। क्षितिज की बारी आ गई है। क्षितिज, आपको क्या पसंद है?
5: खाना बनाना।
0: खाना बनाना, ओ वाओ। जो सबसे ज्यादा खाने में आपको क्या बनाना पसंद है?
5: नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज।
0: अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आ गई है अर्णव की। अर्णव को क्या पसंद है?
6: मेरा कीबोर्ड बजाना पसंद है।
0: अरे वाह। अर्णव, आप कीबोर्ड प्ले करते हो? कितना टाइम डिवोट करते हो कीबोर्ड प्ले करने में?
6: हाफ आवर एंड वन आवर।
0: हाफ आवर एंड वन आवर। अब हम आपके टैलेंट को भी देखेंगे। आप एक घंटा देते हो तो कितने टैलेंटेड हो ये भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप सबके टैलेंट को जाने, स्वर्णिम की बारी आ गई है। स्वर्णिम, आपको क्या पसंद है?
7: स्विमिंग करना और कीबोर्ड बजाना पसंद।
0: क्या बात है, स्विमिंग करना तो मुझे भी पसंद है। आप कितना स्विमिंग करते हो?
7: मैं एटलीस्ट 2 घंटे प्रैक्टिस में जाता
0: हूँ। वेरी नाइस। और कीबोर्ड कितने घंटे प्ले करते?
7: 1 घंटा।
0: 1 घंटा, दैट्स अमेजिंग। वेरी नाइस। अनन्या,
8: मैं आर्ट करती हूँ बहुत ज्यादा, तो उसी पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है।
0: लवली। तो आपने जान लिया कि हमारे बच्चों को क्या क्या पसंद है, कितने टैलेंटेड है ये। इनमें डेफिनेटली बहुत सारी स्किल्स भी है, पढ़ाई के साथ साथ एक अलग टैलेंट हर बच्चे में होता है। तो यहाँ पर भी हमारे स्किलफुल बच्चे आपके सामने हैं। इनकी स्किल्स के बारे में चलिए जानते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने क्या क्या और सीखा है, या किसमें इनकी एक्सपर्टीज है? बहुतों ने हमें बताया गिटार पसंद है, कीबोर्ड प्ले करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है। तो ऐसे में क्या क्या टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर भरा है, उस टैलेंट को सिर्फ जानना नहीं है, अब हम सुनेंगे भी, आपको सुनाएंगे भी।

अमेजिंग ब्यूटीफुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। लवली परफॉर्मेंस, क्या बात है, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस बाय आर चिल्ड्रन। तो ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था जो हमने सुना और बहुत ही ब्यूटीफुली बच्चों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए। तो ये तो शुरुआत थी, कहते हैं ना ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अभी बहुत सारे गाने सुनने बाकी है। बच्चों के टैलेंट को हम सुन रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं।

ये बचपन बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सुहाना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लवली, और ऐसे में हम इन बच्चों की प्यारी प्यारी सी परफॉर्मेंसेस का आनंद ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस की ओर।

तो चलते चलते इनके प्यारे गीत याद रखना, इनकी प्यारी बातें याद रखना और साथ ही इनकी प्रतिभा को भी याद रखना। ये हमारे रेडियो किड्स हैं और हमारे रेडियो किड्स ने जो अपने जलवे दिखाए हैं, ये जलवे हमेशा याद रखने वाले हैं। आई एम श्योर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आगे भी आपको आने वाले टाइम में हमारे प्रोग्राम्स और पसंद आएंगे। तो रेडियो किड्स में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे उनका प्रिय कार्यक्रम रेडियो किड्स। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार। लोक संगीत जो हमारी जिंदगी का रस है। जैसे धरती पर सावन बरस जाता है तो धरती तृप्त हो जाती है और हमारा मन कहता है कि जहाँ जीवन ये हंसता है, संस्कृतियों के मेले लगते हैं, चलो अपनी जड़ों की ओर चलते हैं। उत्सव मेले और इस तरह के अन्य त्योहारों पर जब लोक समूह में लोक गीत गाते हैं, हमारा लोक संगीत जिसमें बसती है हमारी संस्कृति, हंसती है हमारी लोक भाषा, मुस्कुराती है हमारी जीवन शैली। आइए महसूस करें अपने देश की माटी को, अपने देश की संस्कृति को। स्वांग जो कि लोक संगीत की सदियों पुरानी विधा है, इसमें लोक कथा है, गीत है, नृत्य है और इसमें कहानी है। आज का स्वांग है किस्सा शाही लकड़हारा। ये कहानी है उस लकड़हारे की जो राजकुमार होकर भी जंगल जंगल लकड़ियां काटता रहा, भटकता रहा। प्रस्तुत है लोक संगीत विधा स्वांग किस्सा शाही लकड़हारा। इस स्वांग को प्रस्तुत कर रहे हैं कलाकार गुलाब सिंह और पार्टी।

स्याही लकड़हारे का सांग पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा रचित है और आपके सामने प्रस्तुत है। जोधपुर रियासत के अंदर राजा जोधानाथ, राजा जोधानाथ

बड़े दयालु और धर्मात्मा किस्म के राजा थे। उनकी रानी का नाम रूपाणी था। राजा और रानी बड़े सुख चैन से आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन का जिक्र है, राजा की और रानी की दोनों की किसी बात को लेकर शर्त लग जाती है और शर्त के मुताबिक जो भी शर्त हार जाएगा वो 12 साल के लिए बड़ों में दसोटे के रूप में चला जाएगा। साहिबान, वो शर्त रानी रूपाणी हार जाती है और शर्त के मुताबिक 12 साल के लिए रानी रूपाणी को जंगल बियाबान में भेज देते हैं। जिस टाइम रानी जंगल बियाबान में पहुंची, उस टाइम रानी गर्भ से थी, आशा उम्मीद थी। जंगल बियाबान में जाकर के रानी ने एक झोपड़ी बनाई और वहाँ झोपड़ी में रह करके अपना गुजारा करने लगी। अब उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था, कोई काम नहीं था। रानी ने सोचा अपना पेट गुजारा करना है, लकड़ियाँ तोड़ती। और पास में एक माधोपुर शहर था, माधोपुर शहर में लकड़ियाँ बेच कर और अपना दो रोटी का गुजारा करने लग जाती है। समय आने पर रानी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया और जब वो बच्चा 8 साल का हो जाता है तो एक दिन रानी रूपाणी की तबीयत खराब हो जाती है। रानी को इतना भारी बुखार चढ़ा और रानी ने सोचा कि भाई शायद मैं बचूं ना बचूं, लेकिन इस बच्चे को पता नहीं कि इसका पिछला जो पता है ये किस राजा का बेटा है और कहाँ इसकी नगरी है, क्या इसके पिता का नाम है, इसको कुछ नहीं पता। रानी ने एक चिट्ठी में लिख कर और उस लड़के की भुजा पर वो चिट्ठी ताबीज के रूप में बांध दी और खुद स्वर्ग सिधार जाती है। राजा की जो रानी थी रूपाणी, वो स्वर्ग सिधारने के बाद बेटा रोता है, बिलखता है, विलाप करता है और अपनी माँ के वियोग में एक बात के द्वारा क्या कहता है।

परमात्मा ने इंसान के यो पेट लगा दिया और इस पेट में दोनों वक्त भूख लगती है, वो कहाँ से पूरी होगी।

0: कहे लखमी चंद तले बोझ कह छाती करी कर ली के जीव अकेले का बन में जब बालक की मां मरली। सजनों वो लड़का अपनी माँ का क्रियाक्रम करने के बाद वही काम जो माँ किया करती वही करने लग जाता है, क्योंकि और कोई वहाँ व्यवसाय नहीं था। बन में से लकड़ियाँ तोड़ता है और माधोपुर शहर नज़दीक था, माधोपुर शहर में बेचने चले जाता है, उसी सेठ के वहाँ बेचता है जहाँ माँ जाया करती। साहिबान माधोपुर में राजा राय सिंह का राज था और राजा राय सिंह बहुत ही घमंडी अहंकारी बहुत ही क्रूर किस्म के राजा थे। उनकी दो बेटियां थी, बड़ी का नाम बीना और छोटी का नाम बेला। बीना थी पढ़ाई लिखाई में होशियार थी और उसी में अपना रुचि रखती थी, और बेला खेल कूद में ध्यान कराया करती। एक दिन दोनों बहनें आपस में इकट्ठी होती हैं और बेला पहुंचती है बीना के पास और कहती है कि बहन आप यही बड़े रहते हो, मेरी बात सुनो, आपस में क्या बातें होती हैं।
1: बीना बहन नमस्कार।
2: नमस्कार बहन, नमस्कार, कैसी हो?
1: बहन ठीक हूँ मैं, क्या कर रहे हो आप?
2: मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ बहन।
1: बहन सारा दिन पढ़ाई, चलो बाग में चलते हैं।
2: नहीं बहन मैं बाग में नहीं जाऊंगी, आप जाइए।
1: नहीं बहन आपको चलना पड़ेगा।
2: बहन अगर आप जिद करती हैं तो मैं चल पड़ूंगी, नहीं तो मुझे अपनी पढ़ाई
1: आपको चलना पड़ेगा।
2: चलो चलिए।

0: हाँ बहन बोलो।
1: बाग में कैसा लगा आपको?
0: कितना सुंदर है, तरह तरह के फूल खिले हैं।
1: हाँ बहन,
0: मुझे ये तो बताया ही नहीं था।
1: हाँ बहन, कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर झूले डले हैं, सभी सखियां खेल रही हैं। तो बहन देखो ये क्या लिखा है दीवार पे?
0: वहाँ पर लिखा हुआ है कि हर इंसान राजा के कर्म का खाता है।
1: नहीं बहन, ये आप गलत बोल रही हो, सभी पिताजी के कर्म का खाते हैं। पैसे तो कैसे बोल रहे हो?
0: अरे राजा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
1: हाँ बताइए कैसे।
0: इसको मैं ठीक कर देती हूँ बहन। मैंने अब इस पर लिख दिया है
2: कि
0: हर इंसान अपने भाग्य का खाता है और पतिव्रता स्त्री अपने शुभ कर्मों के अनुसार अपने भव सागर से पार उतर जाती है।
2: साहिबान, बीना और बिला दोनों बाग में घूमती हैं और राजा राय सिंह ने बाग के दरवाजे पर लिखा हुआ था कि प्रजा के अंदर हर इंसान राजा के कर्म का खाता है, लेकिन बीना को ये बात अच्छी नहीं लगी। बीना पढ़ी लिखी थी, उसने वो पढ़ा और उसको काट के और लिख दिया कि हर इंसान अपने कर्म का खाता है और हर पतिव्रता औरत अपने पतिव्रत धर्म से संसार सागर से पार हो जाती है। बीना लिखवा गए और चली जाती हैं दोनों। उधर से राजा राय सिंह घूमते घूमते बाग में पहुंचते हैं और मंत्री की और राजा राय सिंह की आपस में क्या बात होती है देखिए।
3: मंत्री,
4: कहिए महाराज। कहिए महाराज, क्या?
3: चलिए बाग के अंदर घूमने चलते, तैयारी करो।
4: चलिए,
3: आज बहुत अच्छा मौसम है।
4: ठीक है, आइए। ठीक है महाराज, तैयारी है महाराज, चलो।
3: मंत्री देखिए कितना सुंदर बाग है हमारा, इतना सुंदर झरना है, और ये क्या? इस बोर्ड पर हमने क्या लिखवाया था?
4: इस बोर्ड पर तो ये लिखा था जो यहाँ के रहने वाले हैं सभी राजा के भाग का खाता है।
3: लेकिन इस पर क्या लिखा है आप देखिए।
4: ये तो ये लिखा है महाराज, सब अपने अपने कर्म का खाता।
3: ये किसकी हिम्मत? हमारे होते हुए हमारे राज्य में जो हमारे भाग्य का खाता है वो इस तरह से लिखवाता है, कौन है पता करो उसका।
4: महाराज ये तो जनाना बाग है, इसमें बीना और बेला सखी सहेली वही आ सकती है, यहाँ और तो किसी मजाल नहीं जो यहाँ इस बाग में घुस जाए।
3: इसका मतलब हमारी लड़की ने ही लिखवाया है ये।
4: हो
3: आपका
4: सकता
3: कहना
4: है
3: यही है। ठीक है, दरबार को हाजिर करो और पता
4: करवाओ। ठीक है महाराज, अभी दरबार हाजिर। चलो भाई सभी दरबार के अंदर।
5: दरबार हाजिर है?
4: हाजिर है दरबार महाराज।
3: दरबार हाजिर है?
4: हाँ महाराज।
3: हाँ भाई दरबार
5: जी,
3: आप बताइए आप किसके भाग का खाते हैं?
5: जी महाराज, मैं आपके भाग के खाता हूँ।
3: बहुत बढ़िया। संतरी
4: महाराज,
3: तुम बताओ।
4: महाराज हम आपके भाग के अलावा और किसका भाग का खा सकते हैं?
3: बेटी बेला तुम बताओ, तुम किसके भाग का खाती हो?
1: पिताजी ये तो सभी जानते हैं, राजा के भाग का से भी खाते हैं, हम भी आप ही के भाग का खाते
3: हैं। शाबाश मेरी बेटी, बहुत बढ़िया। बीना
0: पिताजी
3: तुम बताओ, तुम किसके भाग का खाती हो?
0: पिताजी मैं आपकी इस लिखावट से सहमत नहीं हूँ।
3: क्यों?
0: क्योंकि हर इंसान अपने अपने भाग्य का खाता है, अपने मुकद्दर का खाता है।
3: अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है या तो इंसान अपने शुभ कर्मों से या अपनी पति के पतिव्रता

क्या बताया कि लक्ष्मी चंद कहे बिन माली के यो हरा बाग नहीं बनता। काम क्रोध मद लोभ तजे बिन, रे काम क्रोध मद

राजा राय सिंह बीना से क्रोधित होकर के और दरबार लगाते हैं और दरबारियों को आदेश देते हैं कि भाई इस लड़की में इतना अहंकार है,

0: इस लड़की के अहंकार को मैं देखता हूँ, जो ये कहती है कि मैं पतिव्रत धर्म में मार दूंगी, तो इसका पतिव्रत धर्म में देखता हूँ कितना बड़ा धर्म ये निभा सकती है। और अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि जाओ इस बीना के लिए ऐसा वर ढूंढ के लाओ जिसका ना घर हो ना दर हो, ऊपर आसमान और नीचे धरती हो, कुछ नहीं हो, खुश्क और कंगाल, वो वर ढूंढ के लाओ, मैं देखता हूँ इसका कैसा धर्म है। क्या बातें होती हैं।
1: अरे देखो इससे कंगाल और कौन होगा, मैं बात करता हूँ उसे। क्या नाम है?
0: मैंने लक्कड़ारा कहते हैं जी।
1: कहाँ रहते हो?
0: यही जंगल में झोंपड़ी है मेरी।
1: यार तेरी किस्मत बहुत अच्छी है।
0: मेरी
1: राजा के सिपाही हैं
0: आप? मैंने कोई गलती नहीं करी महाराज।
1: मेरी सुनो, राजा की लड़की की शादी हम तेरे साथ करेंगे और हम आपको लेने के लिए आए हैं।
0: नहीं मैंने नहीं करवानी महाराज।
1: तू मानेगा नहीं?
0: नहीं मैं नहीं मानूंगा।
1: मानेगा नहीं?
0: क्यों?
1: ऐसा करो,
0: मैं तो बहुत कंगाल आदमी हूँ, और मैंने बकस दो तुम किसी और को ले जाओ भाई।
2: अरे हम तो नहीं इसी जगह ले चल रहे, तेरे भाग खुल जाएंगे फूटे भाग वाले।
0: मेरे भाग तो भाई फूटे भाग वाले हैं, मेरा पाव नहीं खुलता। मेरी बात सुनो,
2: सुना के कहना चाहता

भाइयों, एक बंजारे ने एक शेख साहूकार से पैसे ले लिए थे और वहाँ कुत्ता छोड़ दिया था अपना, कि भाई जब मेरे पास पैसे होंगे तेरे दे जाऊंगा और अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। हे रे सेठ ते ले लिए दाम करारे एक

0: और भाई वो देखे पकड़ना है देखिए साहूकार है मानस ने पकड़ ले जाओ, राजा के घर में शादी है तो राजा के लेवल का मानस पकड़ो, तुम मन के पकड़
1: ले
0: हो
1: तो तन्ने ले जाएंगे
0: ना, मरने के करोगे ले जाएंगे।
1: अच्छा।
0: रज्जा ने मारो ते मारियो उसकी जित माया दब

0: भाई मन ने प्यार नहीं करवाना तो मन छोड़ दो।
1: अरे
0: भाई मन पकड़
2: ना, चल तू दरबार में ले जाए कसाई।
0: अरे वो लाला जी मारेगा फिर मेरा कैम हो गया लकड़िया का।
2: हाँ भाई लकड़िया का पिंडा छुटवाओ मेरा बेटा मानता नहीं।
0: हाँ हाँ
2: चल
3: राजा दो
2: महाराज की जय हो।
0: मैंने कुछ नहीं करे जी, ये दंगचाने पे पकड़ रहे हैं।
3: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत।
0: हाँ जी
3: ये बताओ आपका नाम क्या है?
0: लक्कड़ आ रहा है जी।
3: आपकी माताजी का नाम?
0: महाराज मर गई।
3: माताजी मर गई?
0: हाँ।
3: आपके पिताजी का क्या नाम है?
0: बेरा जी।
3: पिताजी का भी नहीं बेरा, कहाँ के रहने वाले हो?
0: मदारा जंगल में रहू जी।
3: अच्छा इसका मतलब
2: बेरा जी क्या है ये तो?
3: ना कोई दर ना कोई घर, कुछ नहीं है।
0: नहीं महाराज
3: ठीक है, अब मेरे पास लाने की क्या जरूरत थी? बाहर ले जाओ इसको और वहीं बीना के साथ जो ना झाड़ फूक फेरे करके और भेज दो, विदा करो इसको।
0: साहिबान राजा के आदेश अनुसार लक्कड़हारे के साथ बीना की शादी झाड़ फूक फेरे करवा के और कर दी जाती है। और जब वो दोनों बहनें आपस में बिछड़ती है, बीना और बेला दोनों आपस में, एक मिनट के लिए उनकी क्या बात होती है?
4: बहन बेला जी, दीदी मेरे भाग्य में मेरे कर्म में जो लिखा था वो मुझे मिल गया।
5: ठीक है बहन,
4: और अब मैं अपने पति के साथ जाती हूँ। अपना ख्याल रखिए और पिताजी का भी ख्याल रखिए।
5: ठीक है बहन, आप मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज।

0: साहिबान बीना और बेला दोनों आपस में एक दूसरे के प्यार में स्नेह में आंखों में आंसू भरते हैं और रोती हैं। और एक छन कंगन जो बीना की माँ जिस वक्त गुजरी थी वो रख के गई थी और बेला को दे के गई थी कि भाई जब कभी बीना की शादी हो उसको मेरी ओर से ये कन्यादान के रूप में दे देना। वो छन कंगन बीना को दे देते थे और लकड़हारे के साथ उसको विदा करके भेज देते हैं। और बीना और लकड़हारे की आपस में क्या बात होती है। हाँ भगवान।
1: हाँ महाराज।
0: आपका नाम तो ले हुए थे उड़े पर मेरे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे।
1: महाराज मेरा नाम बीना है।
0: अच्छा अच्छा आपका नाम बीना है।
1: हाँ महाराज आपका क्या नाम है।
0: बीना मेरा नाम लकड़हारा है।
1: लकड़हारा।
0: हाँ
1: ये भी कोई नाम हुआ।
0: अरे मेरी माँ तो बहुत प्यार से नाम लिया करती और सब लोग मुझे लकड़हारा कहा करते।
1: महाराज आपको लकड़हारा क्यों कहते थे।
0: मेरी माँ लकड़ियाँ बेचने जाया करती शहर में, मैं उसके साथ जाया करता। वो ज़्यादा बड़ा बरोटा रखा करती सिर पर, मैं छोटा सा रखा करता। तो मेरी माँ को लकड़हारी और मेरे को लकड़हारा बोलते थे, मेरा नाम लकड़हारा पड़ गया।
1: ठीक है महाराज।
0: बीना एक मेरी बात मानेंगी।
1: महाराज मैं आपकी सारी बातें मानूंगी।
0: तो बस एक बात मान ले।
1: बोलिए महाराज।
0: तू अपने घर वापस चली जा।
1: महाराज।
0: हाँ
1: ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी।
0: मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ
1: महाराज, मेरी आपके साथ विवाह हुआ है, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी।
0: देखो आपकी मेरे साथ शादी हुई है, लेकिन ना आपको पता है ना आपके पिता को पता था कि मैं क्या हूँ। मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे खुद की दो रोटी के लिए मेरे पास मेरा ब्योत नहीं है, मैं तेरे को कहाँ से खिलाऊंगा।
1: महाराज गरीबी अमीरी तो आनी

ना सबसे बड़ा औरत का भाग जिसका मर्द बिल्कुल छोटा और औरत उम्र में बड़ी। औरत का लेवल बहुत ऊंचा और मर्द का बहुत कम, लेकिन हमारे पुराणों में वेदों में तो कुछ और लिख रखा है, मर्द का बड़ा होना चाहिए औरत का कम में घटिया होना चाहिए। क्या बता

0: समय बिना, और समय निकलने के बाद लकीर पीटने में कोई फायदा नहीं। समय रहते रहते कोई बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा तेरे को। तेरे पिता के साथ तेरी कोई दुश्मनी तो नहीं थी?
1: महाराज आप कैसी बात करते, वो मेरे पिता हैं।
0: फिर तेरे पिता ने एक मेरे जैसा कंगाल और निर्धन आदमी कैसे ढूंढा?

0: समय का ऊपर सच्चाई बताने लग रहा हूं, और अगर सच्ची बात मेरी तेरे को बुरी भी लगे तो लगी है, एक बार बुरी लगेगी, लेकिन जिंदगी भर तू पछताएगी।
1: महाराज आपके बेकार की

0: हमारे रुख की
1: अच्छा
0: सजन वे ते हो सलुगाई दुख की सजन वे ते हो सलुगाई।
1: सुनिए लक्ष्मी चंद बात कहेगा हमारे रुख की सजन वे ते हो से लुगाई दुख की कौन सी।

0: अच्छा ओ पिया भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो मेल में टोटा के उसे बताती है कि महाराज तेरा मेरा मेल मिला रहेगा टोटा नफा तो आने जाने हैं ये तो चले जाएंगे बिना फिर तो तू नहीं मानती ना चले सांझ और नोरी है दिन से पढ़ने
1: महाराज ये बताओ एक पहली बात
0: हाँ हाँ
1: कि आपका घर कहाँ पर है
0: बस अपना यार थोड़ी सी दूर रह गया
1: अच्छा थोड़ी दूर
0: नहीं हो रहे हैं
1: अच्छा
0: थोड़ी ही दूर पर देखे वो ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहे पीछे
1: वो दिख रहे वो दिख रहे
0: उन के नीचे अपनी झोपड़ी है
1: झोपड़ी
0: हाँ ले ले आ मेरे चलती आ जा
1: चलो
0: बिना
1: हाँ महाराज
0: ये है अपनी झोपड़ी लेकिन अपना गुजारा इसमें हो जाएगा कोई बात नहीं देखे नौकर
1: हाँ महाराज
0: तू इतने बैठ
1: ठीक है महाराज
0: मैं लाकड़ी दिया
1: लालाजी
0: पिटे का मैंने ना दे लकड़ हरा लकड़िया लेकर के उस सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ के पास जब जाकर और सेठ ने पूछा भाई कई दिन में आया वो बोला जी कई दिन में किया आया मैं तो ऐसे ऐसे फंस गया था और पीछे से बिना उसकी इंतजार करती है और जब वो लाकड़ी बेच कर वापस आया तो बिना उसकी लकड़ियों को देखती है और आपस में फिर क्या बात होती है ले बिना एक चक्कर तो लगा दिया दूसरा चक्कर और तैयार हो रहा है
1: हाँ
0: ये लकड़ी देख तू देख
1: महाराज
0: हाँ
1: आप ये लकड़ी बेच के आते हो
0: हाँ ये लकड़ी बेच के आता हूँ
1: महाराज ये लकड़ी ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है
0: और किसी
1: ये चंदन की लकड़ी है बहुत महंगी लकड़ी है
0: रही रहेगी
1: रही रहेंगी कैसे आप इसको है? कितने में बेच के आते हो
0: लकड़ी लकड़ी वो है लकड़ी है
1: ये लकड़ी नहीं है महाराज कैसी बात करते हो
0: और क्या
1: ये इतनी कीमती लकड़ी है चंदन की लकड़ी मिलती नहीं है ये
0: अच्छा
1: हाँ
0: फिर लाला से हिसाब करवा लूं
1: हाँ बिल्कुल हिसाब करवाओ मैं साथ चलूंगी आपके हिसाब करने के लिए
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो चलो साहिबान बीना और लकड़हारा दोनों उसी सेठ के पास पहुंचते हैं और जाकर के सेठ को बताते हैं कि भाई आपने तो इतने साल हो गए ये आम लकड़ी नहीं ये चंदन की लकड़ी है बहुत बेशकीमती लकड़ी है इसका हिसाब कर दो बीना ने सेठ को अपना परिचय दिया कि मैं इसके साथ शादी कर दी सेठ ने उसको पैसे दे दिए उसका हिसाब कर दिया और जब पैसे देकर वापस आ गए तो बीना उसको कहती है कि महाराज धन हो गया अपने पास और धन की शोभा होता है दान महाराज इतना धन आपके पास हो गया इसको दान में लगा देते हैं कहीं ना कहीं सजनों बीना और लकड़हारा दोनों दान करने के लिए गंगा जी में पहुंच जाते हैं और कवि एक बात के द्वारा क्या कहते हैं।

दोनों का समय बदल गया और उस परमात्मा ने कृपा कर दी। समय बदलते देर नहीं लगती, माता पिता ने तो बिना जन्म दिया था, किस्मत तो अपनी अपनी थी, माता पिता ने किस्मत नहीं लिखी थी।

वो तो जन्म दिया था, लेकिन इंसान का जो शुभ कर्म होता है वो उसका साथी होता है, सतगुरु का जो ज्ञान होता है वो उसका साथी होता है। क्या बताता है इस रागिनी में।

में विचार करता है कि भाई लाकड़िया ने डोड हो गए सरके सारे बाल उठ गए गंजा हो लिया, लेकिन उस परमात्मा की जब निगाह हुई मेरे को दोबारा से वही जीवन दे दिया जो मेरा पिताजी का था। क्या बताया,

और चौथी कली में उस पंडित लक्ष्मीचंद की जो अपने सतगुरु के प्रति भावना थी वो उजागर होकर आती है। क्या उस मालिक ने दवा दिया और उस

हिसाब कर ले आए थे, पैसा बहुत हो गया था, और आहिस्ता आहिस्ता करके उनके वो पुराने समय बदलते चले गए। और बीना ने बता दिया कि महाराज आप एक आम लकड़ारी नहीं हो, आपकी भुजा पर जो ताबीज बंधा हुआ था उस ताबीज में आपका पूरा पता लग के गई थी आपकी माँ, और आप जोधपुर रियासत के राजा जोधानाथ के लड़के हैं, और अपना राज का जो आप संभालोगे चल के। ये सांग यही समाप्त होता है।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे लोक संगीत विधा स्वांग का किस्सा शाही लकड़हारा। इसकी भावपूर्ण प्रस्तुति दे रहे थे मुख्य कलाकार गुलाब सिंह खंडेलवाल, आपके साथ सहगायक राजबीर भारद्वाज, लीला सैनी, गीता देवी, दलबीर और नफी सिंह। संगत कलाकार नगाड़ा पर राजेश, हारमोनियम पर राम मेहर, ढोलक पर मदन और क्लेरिनेट पर ओम प्रकाश।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
2: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री

सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: अश्विनी भाई देखिए लोकगीत हमारी संस्कृति और मिट्टी की खुशबू से जुड़े होते हैं और ये गीत किसी एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे समाज की रचना होते हैं। इन्हें गाने के लिए किसी विशेष शास्त्रीय संगीत की ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे दिलों से निकलते हैं और सदियों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए ना, दिल से निकल कर की बात की है सुनील जी ने यहाँ पर, तो मैं भी ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे मनों में कहीं ना कहीं बसे होते हैं, क्योंकि उस ज़माने में ना ही मोबाइल था ना ही रेडियो था, बस यही था कि छोटे मोटे जो गुनगुना दिया वही कहीं ना कहीं लोकगीत के रूप में प्रचलित हुए और वही कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी से हमारी धरती से जुड़ या हमारी कृषि से, क्योंकि हर खुशी में चाहे वो विवाह का गीत हो, चाहे वो कुछ शिक्षा का गीत हो, चाहे उससे कुछ शिक्षा मिल रही हो, तो और क्यों ना, और जैसे हमारा खुशी मनाने का तरीका पहले क्या क्या था सुनील भाई?
0: बिल्कुल,
1: ये खुशी का तरीका ये था कि कहीं ना कहीं अगर हम कृषि अगर काट रहे हैं, धान काट रहे हैं या गेहूं काट रहे हैं, तो वहीं पर किसी ना कुछ ना कुछ गुनगुना दिया, या माई ने रोटी बनाते बनाते कुछ गुनगुनाया तो वही गीतों के रूप में निकल कर सामने आया और इतना मन में बैठ जाता है जब हम सुनते हैं ना। सुनील भाई भी अभी ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं क्योंकि लोक रंजनी कार्यक्रम की यही खासियत है, कहीं ना कहीं इन लोकगीतों को जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फ्लैश में चल रहा होता है कभी कि हम भी गांव की मिट्टी से जुड़े और गांव में पहुंच जाएं और इसका आनंद लें।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पुष्पा गोसाई की गाए इस लोकगीत से।

0: अश्विनी भाई, ये तो लोकगीत सुना पुष्पा गोसाई से। और देखिए, आप जैसा कि कह रहे थे कि भाई जो लोकगीत हैं उनको, जैसे हमारी बताया कि माँ खाना बना रही होती, गुनगुनाने लग जाती, खेतों में काम करते। तो देखिए, हर अवसर के लिए अलग अलग लोकगीत बनाए गए हैं। जैसे त्योहारों की बात हो तो त्योहारों के लोकगीत, शादियों के, बच्चों के जन्म के, खेती के अलग अलग अवसरों के, और इसी तरह देखिए भाई, खुशी, दुख, रीति रिवाज, रोजमर्रा की जिंदगी, सब इनमें झलकती है। लोकगीत सही मायने में हमारे समाज का दर्पण है, जो हमारी जड़ों से जुड़कर हमेशा रखते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए ना कहीं अगर हम लोकगीतों को अपने जीवन में अगर ले लें या उतार लें, इनसे शिक्षा तो मिलती है, साथ साथ में यहाँ पर ये हमें प्यार भी करना सिखाते हैं कि अपने भाइयों से, माता से, पिता से, अपने अपने बड़े लोगों से। और कहीं ना कहीं छेड़खाने की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं छेड़खानी भी चलती है। साली जीजा का जैसा रिश्ता है या ननद देवर का रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हमें लोकगीतों के माध्यम से सुनने को मिलती हैं। कहीं पर नानी गुनगुना रही है, कहीं पर दादी गुनगुना रही है, कहीं पर, और कहीं ना कहीं हमें इस भागती दौड़ती दुनिया में कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि कहीं हम लौट चलें उस गलियों में जहाँ सुकून मिलता था, और सुकून वहीं मिलता है जहाँ पर चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाज़ें, खेत में गुनगुनाते हुए लोग और खेती करते हुए लोग जहाँ पर देखते हैं, वहाँ मन कितना प्रसन्न होता है। अगला जो लोकगीत है जो वीणा डिल्लोर की आवाज़ में सुन लेते हैं।

0: अश्विनी भाई, ये तो लोकगीत सुना वीणा ढोल और सखियों से, और हम बात कर रहे थे। देखिए, आज के आधुनिक युग में, डिजिटल दौर में, हमें अपने इन लोगों को बचा कर रखना है और उनको बढ़ावा भी देना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि हमारी पहचान और अनमोल धरोहर है। तो आइए हम सब मिलकर इस शानदार विरासत और गौरव के और इसे अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ।
1: बिल्कुल, देखिए ना कहीं एक एक बात यहाँ लाइन जोड़ देता हूँ यहाँ पर। अगर हम घूमर सुनते हैं तो पांव खुद ब खुद थर उठते हैं, और रागनी सुन लो तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और कजरी आप बिहार सुन लो तो दिल में गहराइयों को छू लेता है। यही एक लोकरंजनी कार्यक्रम की हमारी सबसे बड़ी खासियत है।
0: तो चलिए, कार्यक्रम के अंत में मंजू शर्मा से सुन लेते हैं एक और लोकगीत।

अश्विनी भाई, ये तो लोकगीत सुना मंजू शर्मा से, और मंजू शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। जी हाँ, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में, जहां हर खेल की धड़कन हम आपके दिल तक पहुंचाते हैं। और आज मैं हूं आपके साथ हेमंत, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अरशद अहमद। तो अरशद, क्या कुछ रहेगा खास आज के कार्यक्रम में?
2: आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। जी हाँ, 2026, उसी के साथ बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट की दुनिया में आज है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। उसी के साथ बात होगी Under-20 रेसलिंग की, और साथ में बात होगी आर्चरी की।
1: बिल्कुल, और उसके बाद हम बात करेंगे संडे ऑन साइकिल की। एक रिपोर्ट सुनवाएंगे, जहां हमारे साथी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, यानी फीफा की तरफ चलते हैं। अरशद,
2: आइए शुरू करते हैं फीफा के साथ।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 राउंड ऑफ 16 के शुरुआती मुकाबलों ने पूरी दुनिया के फुटबॉल प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस नॉकआउट स्टेज की भूमिका बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि यहां एक भी छोटी सी गलती का मतलब टूर्नामेंट से सीधे बाहर होना है। इस स्टेज पर टीमों के पास संभलने का कोई दूसरा मौका नहीं होता। सभी टीमें क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए जी जान से लड़ रही हैं। इस कांटे के सफर में सह मेजबान कनाडा का सामना मोरक्को से हुआ, जबकि दूसरी ओर फ्रांस की भिड़ंत पराग्वे से हुई। इन दोनों ऐतिहासिक मैचों ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा, जहां मैदान पर जबरदस्त ड्रामा, आक्रामक खेल और बेहतरीन रणनीतियों का शानदार संगम देखने को मिला। इन मुकाबलों के नतीजों ने आगे की राह तय कर दी है। कनाडा और मोरक्को का ये मुकाबला पूरी तरह से दो अलग अलग हिस्सों में बटा नजर आया। घरेलू दर्शकों के भारी समर्थन के साथ मैदान पर उतरी कनाडा की टीम ने मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक और सकारात्मक अंदाज में की। पहले हाफ के शुरुआती 30 से 45 मिनट तक कनाडा का खेल देखने लायक था। उनके फॉरवर्ड्स ने मोरक्को के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और गोल करने के कई अच्छे मौके भी बनाए। कनाडा की ओर से जोनाथन डेविड और तानी अलुवासिए ने मोरक्को के अनुभवी गोलकीपर यासीन बोनो की कड़ी परीक्षा ली, लेकिन वे गेंद को गोल पोस्ट के अंदर भेजने में नाकाम रहे। मोरक्को ने शुरुआती दबाव को बेहद शांति से झेला और अपने डिफेंस को बिखरने नहीं दिया। दोनों टीमों के बीच पहले हाफ में कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके चलते पहला हाफ बिना किसी गोल के 0-0 की बराबरी पर छूटा। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। मोरक्को की टीम एक नई और अधिक आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरी। मैच के 49वें मिनट

0: में मोरक्को के मिडफील्डर अजेदीन ओनाही ने एक शानदार गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी। ये गोल कनाडा के लिए एक बड़ा झटका था। इस गोल के बाद कनाडा की टीम दबाव में आ गई और उसने बराबरी हासिल करने के लिए अपने कई खिलाड़ियों को आक्रमण में झोंक दिया। कनाडा की इस रणनीति का मोरक्को ने भरपूर फायदा उठाया। जैसे ही कनाडा के खिलाड़ी आगे बढ़े, मोरक्को के तेज तर्रार फॉरवर्ड्स को काउंटर अटैक करने के लिए मैदान में काफी खाली जगह मिल गई। मैच के 81वें मिनट में अजेदीन ओनाही ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और मैच का अपना दूसरा गोल दागते हुए स्कोर 2-0 कर दिया। इस दूसरे गोल ने कनाडा की वापसी की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद भी मोरक्को की टीम नहीं रुकी। मैच के अंतिम पलों में यानी स्टॉपेज टाइम के दौरान सुफियान रहीमी ने कनाडा के थके हुए डिफेंस का फायदा उठाते हुए मैच का तीसरा गोल दाग दिया और मोरक्को की 3-0 से एक तरफा जीत पक्की कर दी। इस शानदार जीत के साथ मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई। कनाडा के लिए भले ही यह सफर यहीं समाप्त हो गया, लेकिन अपनी मेजबानी में नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना उनके फुटबॉल इतिहास के लिए एक बड़ा और गर्व का क्षण रहा। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में खेले गए दूसरे राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में फ्रांस का सामना पराग्वे की बेहद जिद्दी और शारीरिक रूप से आक्रामक खेल खेलने वाली टीम से हुआ। इस मैच में फ्रांस को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन पराग्वे ने उन्हें हर एक इंच के लिए कड़ी टक्कर दी। पराग्वे की टीम ने एक बेहद मजबूत चुस्त डिफेंसिव रणनीति अपनाई, जिससे फ्रांस के स्टार खिलाड़ियों के लिए गोल करना बेहद मुश्किल हो गया। फ्रांस ने गेंद पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और लगातार पासिंग के साथ खेल को डोमिनेट किया। हालांकि पराग्वे के खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक ताकत और रफ टैकलिंग का इस्तेमाल करके फ्रांस के पासिंग गेम को बराबर बाधित किया। फ्रांस के स्टार विंगर्स उस्मान डेम्बेले और माइकल ओलिस को पराग्वे के डिफेंडर्स ने खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने भी मैदान पर अद्भुत खेल दिखाया और फ्रांस के लिए कई खतरनाक शॉट को रोककर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। फ्रांस की टीम पहले हाफ में लाख कोशिशों के बाद भी पराग्वे के इस किले को नहीं तोड़ पाई और पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ। दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपने खेल की गति को थोड़ा और बढ़ाया। मैच का सबसे बड़ा निर्णायक पल 17वें मिनट में आया, जब फ्रांस के युवा खिलाड़ी डेसरे डुए को पराग्वे के पेनल्टी बॉक्स के अंदर गिरा दिया गया। रेफरी ने बिना किसी देरी के फ्रांस के पक्ष में पेनल्टी का फैसला सुनाया। फ्रांस के कप्तान और स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे इस बेहद दबाव वाले मौके पर पेनल्टी के लिए आगे आए। एम्बापे ने बेहद शांत दिमाग से गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया और फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिला दी। ये इस वर्ल्ड कप में एम्बापे का छठवां गोल था और वे गोल्डन बूट की रेस में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस गोल के बाद पराग्वे ने भी अपने खेल में आक्रामकता बढ़ाई और बराबरी का गोल दागने के लिए अपने खिलाड़ियों को आगे भेजा। मैच के आखिरी मिनट बेहद तनावपूर्ण और गर्मा गर्मी वाले रहे, जहां पराग्वे ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस के मजबूत और अनुभवी डिफेंस ने विपक्षी टीम के हर हमले को नाकाम कर दिया। निर्धारित समय और लंबे स्टॉपेज टाइम के खत्म होने के बाद फ्रांस ने इस मैच को 1-0 से जीतकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया। पराग्वे की टीम भले ही इस मैच को हार गई, लेकिन उनके जुझारू और शेर जैसे जज्बे ने दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जीत लिया। इन दोनों मुकाबलों के नतीजों ने अब वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल की तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है।
1: और अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले राउंड ऑफ 16 के दो बड़े मुकाबलों की। आज का पहला मुकाबला 5 बार की चैंपियन ब्राजील और नॉर्वे के बीच खेला जाएगा। ये मैच न्यूजर्सी में भारतीय समय अनुसार रात 1:30 पर शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 4 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें नॉर्वे ने 2 मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। यानी ब्राजील को अभी भी नॉर्वे के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है। फीफा वर्ल्ड कप के दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे पहले 1998 में वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराया था। अगर मौजूदा टूर्नामेंट की बात करें तो दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। ब्राजील अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है। टीम ने 4 मैचों में से 3 में जीत दर्ज की है, जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। इस मुकाबले में दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ियों पर भी सभी की नजर रहेगी। ब्राजील को विनिशियस जूनियर से सबसे बड़ी उम्मीद है। वो इस टूर्नामेंट में अब तक 4 गोल कर चुके हैं। मिडफील्डर लुकास पाकेता ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं नॉर्वे की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनके स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड। हॉलैंड अब तक 5 गोल कर चुके हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे के बाद तीसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। राउंड ऑफ 16 में मैक्सिको का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 से मैक्सिको सिटी स्टेडियम से खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में मैक्सिको का प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है। टीम ने अपने 4 मुकाबले जीते हैं और सबसे खास बात यह है कि उनके खिलाफ अब तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है, लेकिन आज उनके सामने होगी हैरी केन की इंग्लैंड। फीफा वर्ल्ड कप में दोनों टीम दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे पहले 1966 में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने मैक्सिको को 2-0 से हराया था। वहीं इंग्लैंड भी अब तक अजय रही है। टीम ने 4 मुकाबले में 3 जीत दर्ज की है, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। आज के मुकाबले में मैक्सिको की उम्मीद है इसके स्टार फॉरवर्ड सेंटियागो

जेमिनेस पर होगी, वहीं इंग्लैंड अपने कप्तान और स्ट्राइकर हैरी केन के दम पर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल करना चाहेगी। हैरी केन भी इस टूर्नामेंट में अब तक 5 गोल कर चुके हैं, यानी आज दोनों मुकाबलों में इतिहास, रिकॉर्ड और स्टार खिलाड़ियों के फॉर्म पर दाव होगा। आज देखना दिलचस्प होगा कि क्वार्टर फाइनल की आखिरी दो जगहों पर कौन सी टीमें अपना नाम दर्ज कराती हैं।

0: अब बात करते हैं क्रिकेट की। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रफर्ड मैदान में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की इस T20 सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है, क्योंकि सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए इस मैच में एक ऐतिहासिक पल तब आया जब 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 डेब्यू किया। इसके साथ ही वे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। वहीं सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के करियर का ये 50वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आक्रामक रही। डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि वो 14 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 24 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाए। मध्य क्रम में उपकप्तान ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को मजबूत दी और तीसरे विकेट के लिए 65 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। ईशान किशन ने 40 गेंदों में 6 चौकों की बदौलत सबसे ज्यादा 49 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों में 37 रन बनाए। एक समय भारत 210 से अधिक रनों की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम करन ने 33 रन देकर 3 विकेट चटकाते हुए भारतीय मध्यक्रम को झटके दिए और रन गति पर अंकुश लगाया। आखिरी ओवर में तिलक वर्मा ने 11 गेंदों में 24 रन और हर्षित राणा ने 3 गेंदों में 6 रन बनाकर भारत के स्कोर को 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन तक पहुंचाया। 191 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब और सनसनीखेज रही। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में इंग्लैंड के दोनों दिग्गज सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और जॉस बटलर को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद हैरी ब्रुक और टॉम बेंटन ने पारी को संभाला। ब्रुक ने केवल 15 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 39 रनों की तूफानी पारी खेली। इसी दौरान भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने हैरी ब्रुक को आउट कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए और वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय स्पिनर बने। इसके बाद टॉम बेंटन ने भी 39 रन बनाए। मैच का असली पासा पलटा युवा इंग्लिश बल्लेबाज जैकब बैथल ने, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। बैथल ने महज 46 गेंदों में 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। मैच का टर्निंग पॉइंट 17वां ओवर रहा, जिसमें बैथल ने रवि बिश्नोई के खिलाफ लगातार बड़े शॉट्स खेलकर इस ओवर में 29 रन बटोरे। इस ओवर ने मैच का रुख पूरी तरह इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। अर्शदीप सिंह ने 40 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन वे इंग्लैंड की रनगति को रोक नहीं पाए। इंग्लैंड ने 19 ओवरों में 6 विकेट खोकर 191 रन बना लिए और 6 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। जेकब बैथल को उनकी शानदार मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए ये हार एक अनचाहा रिकॉर्ड लेकर आई, क्योंकि कप्तान के तौर पर अपने शुरुआती 4 मैचों में से 1 भी जीत दर्ज नहीं कर सके हैं। इस हार के बाद क्या कहा श्रेयस अय्यर ने, आइए सुनते हैं।
1: I think we all know where it went away, but I don't want to pinpoint at any particular player. The way we were cruising until 15th over, I think we were doing exceptionally well, and then suddenly the momentum shifted towards them, and from there onwards, I felt it was a cakewalk for them.
0: अब दोनों टीमें 4 जुलाई को नॉटिंगहम में होने वाले तीसरे T20 मुकाबले में आमने सामने होंगी।
2: और अब बात करते हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित फाइनल। आज क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जाएगा, जहां आमने सामने होंगी टूर्नामेंट की 2 अजेय टीमें, मेजबान इंग्लैंड और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में 6-6 जीत के साथ फाइनल तक का सफर तय किया है, और अब सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर खिताब किसके नाम होगा। इंग्लैंड 2009 के बाद चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजर अपने रिकॉर्ड 7वें विमेन्स T20 वर्ल्ड कप खिताब पर होगी। अगर दोनों टीमों के आपसी रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 45 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 23 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड के खाते में 21 जीत दर्ज हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा था। वहीं वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक 7 बार आमने सामने आई हैं।

0: इनमें से 5 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने और 2 इंग्लैंड ने जीते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें चौथी बार वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ रही हैं। इससे पहले 2012, 2014 और 2018 के तीनों फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। हालांकि लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड का रिकॉर्ड शानदार रहा है। यहां खेले गए 4 महिला T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है। फाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों के लिए फिटनेस भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी की फिटनेस पर सभी की नजरें रहेंगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में वह क्वाड्रिसेप्स की परेशानी के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। हालांकि फाइनल से पहले उन्हें नेट्स में अभ्यास करते हुए देखा गया। उधर इंग्लैंड को भी सेमीफाइनल से पहले बड़ी राहत मिली है। कप्तान नेट्स कीवर ब्रेंट चोट से वापसी करते ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 47 गेंदों में 75 रन की मैच जिताओ पारी खेलकर शानदार लय में नजर आई। अब बात करते हैं लॉर्ड्स के पिच की। जी हाँ, इस वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स की पिच तेज गेंदबाजों के लिए सबसे मददगार साबित हुई। नई गेंद से सीम मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। पूरी टूर्नामेंट में तेज गेंदबाजों की इकोनॉमी भी यहाँ शानदार और बेहतर रही है। हालांकि इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ 171 रन का लक्ष्य हासिल कर इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेज भी किया था। फाइनल में एक और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है स्पिन गेंदबाजों और टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के बीच। ऑस्ट्रेलिया की सोफी मेलिन्यू इस टूर्नामेंट में 10 विकेट ले चुकी हैं, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम के नाम 7 विकेट हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड की सोफी एलेक्सटोन और चार्ली डीन ने 9 विकेट लेकर अपनी टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। एलिस पेरी भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिला चुकी हैं, जबकि सोफी मेलिन्यू टूर्नामेंट में 10 विकेट लेकर शानदार फॉर्म में। इंग्लैंड की बात करें तो डेनी वाइट हॉज इस वर्ल्ड कप में 294 रन बना चुकी हैं और एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। कप्तान नेट स्क्वायर ब्रेंट ने सेमीफाइनल में 75 रन की मैच जिताओ पारी खेली थी और सोफी एलेक्सटोन ने तो 9 विकेट के साथ शानदार लय में नजर आ रही हैं, जबकि नई गेंद से लॉरेन बेल इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी। अब दोनों टीमें अपनी प्लानिंग के साथ मैदान पर उतरने को तैयार हैं। आइए जानते हैं कि प्रेस से बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कप्तान ने क्या कहा था।
1: I think it's been an incredible tournament so far for this group. You know, whatever happens tomorrow happens. I think we're going to walk away, I suppose, really proud of the type of cricket we've played over the last few weeks. Look, the girls have played with freedom. They've been brave, and I think they've played. We've played in a really amazing team game of cricket. Which, look, I think that's. You know, we can take so many positives away from this tournament, but in terms of a legacy, I think, yeah, definitely tomorrow we'll, if we can, yeah, get over the line, that could only add to that, that's for sure.
0: ये थी ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन सोफी मेलिन्यू। आइए जानते हैं इंग्लैंड की कैप्टन ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि टीम प्रेशर कैसे हैंडल कर रही है।
2: It's going to be a big occasion, but it's why we've done everything that we've done so far, everything that we've you know, worked on and everything was to try and get us to this point. So, yeah, I suppose acknowledging that and, yeah, try and take in as much of the day as you can. I mean, being part of the 2017 final, we sort of spoke in a similar way about how special a day it was going to be and try and, I guess, be really present during the day and try and enjoy yourself as much as you can. So, yeah, that was what I've been trying to instill in everybody.
3: क्रिकेट की ही बात करें तो एक खबर भारत के लिए बहुत अच्छी श्रीलंका से आ रही है, जहां श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में भारत ए ने श्रीलंका ए को 10 विकेट से हरा दिया। तो ये तो बात रही क्रिकेट की, और अब चलते हैं अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की तरफ, जहां अर्शद बता रहे हैं ये जानकारी।
0: अंडर 20 एशियन फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के पहले दिन भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए 4 पदक अपने नाम किए हैं। पहले दिन भारतीय पहलवानों ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर दमदार प्रदर्शन किया। दिन की सबसे बड़ी सफलता 70 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित कुमार लक्ष्मण भास्कर ने दिलाई। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया। 79 किलोग्राम भार वर्ग में सौरभ यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। हालांकि वे फाइनल मुकाबला नहीं जीत सके, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। इसके अलावा भारत को 2 कांस्य पदक भी मिले। 57 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित ने कांस्य पदक जीता, जबकि 97 किलोग्राम भार वर्ग में लकी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में एक और कांस्य पदक डाला। इस तरह अंडर 20 एशियन फ्रीस्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय टीम की यह शानदार शुरुआत आगे के मुकाबलों के लिए भी काफी उत्साह बढ़ाने वाली है। और हेमंत, अब बात करते हैं पैरा आर्चरी 2026 की। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार मेडल पर निशाना साधने में कामयाबी हासिल की। भारतीय महिला खिलाड़ी भावना ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो वहीं पूजा ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं मेंस कंपटीशन की बात करें तो निशाना थोड़ा सा चूक गया। जी हाँ, हरविंदर सिंह को फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

0: महिला और पुरुष सिंगल्स के तीसरे राउंड में कई अहम मैच खेले गए। दिन की सबसे बड़ी खबर थी डिफेंडिंग चैंपियन इगा स्वायटेक और पूर्व चैंपियन एलेना रायबाकिना का बाहर होना। महिलाओं के ड्रॉ में दो बड़े उलटफेर हुए जिसने पूरे टेनिस जगत को चौंका दिया। फिलीपींस की 21 साल की अलेक्जेंड्रा इला ने डिफेंडिंग चैंपियन और तीसरी सीड पोलैंड की इगा स्वायटेक को सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से हराकर इतिहास रच दिया। पहला सेट दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला था। ये ट्राई बेकर तक गया जहां इला ने संयम बरता और 11-9 से जीत हासिल की। पहले सेट में जीत से इला का आत्मविश्वास काफी बढ़ा। इस जीत के साथ अलेक्जेंड्रा इला किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड में पहुंचने वाली फिलीपींस की पहली खिलाड़ी बन गई। एक और बड़े मैच में बेल्जियम की एलिस मर्टिनेस ने 2022 विंबलडन चैंपियन और दूसरी सीड एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से हराया। रायबाकिना को मैच जीतने का फेवरेट माना जा रहा था लेकिन मर्टिनेस ने शानदार खेल दिखाया। पहला सेट ट्राई ब्रेकर जीतने के बाद मर्टिनेस ने दूसरे सेट में रायबाकिना को कोई मौका नहीं दिया और मैच जीतने के लिए सिर्फ एक गेम गवाया। रायबाकिना के बाहर होने से अब महिला सिंगल्स मुकाबला और भी खुल गया है। इसके अलावा 2024 विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली इटली की जैस्मीन पाओलिनी ने ग्रीस की मारिया सक्कारी को बेहद आसान मैच में 6-1, 6-2 से हराया। पाओलिनी का सामना अब चौथे राउंड में अलेक्जेंड्रा इला से होगा। मेडिसिन कीज ने ऑल अमेरिकन मैच में शानदार वापसी की और पिछले साल के उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा को 3-6, 6-6, 6-3 से हराया। यूक्रेन के मार्टा कोस्ट्यूक ने अमेरिका की अम्मा नेवारो को 3 सेटों के मुकाबले में 6-2, 4-6, 6-1 से हराया। मैरी बोज़कोवा ने लुडमिला सिमसोनोवा को 4-6, 7-6, 6-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। एशलिन क्रूगर ने डारिया स्नुगर को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया। 4 जुलाई को पुरुषों के एकल स्पर्धा में कुछ अविश्वसनीय रूप से लंबे 5 सेट के मैराथन मैच हुए जिसने दर्शकों को चौंका दिया। ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड आर्थर फेरी ने बेल्जियम के जिजो वर्गर्स के खिलाफ 2-6, 7-5, 2-6, 7-6 के खिलाफ 5 सेटों का महाकाव्य जीता। वह चौथे और पांचवें सेट में 4-1 से पीछे चल रहे थे। घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच फेरी ने उल्लेखनीय जज्बा दिखाते हुए दोनों सेट जीते और मैच ट्राई ब्रेकर में जीता। इस जीत के साथ ही वो 1993 के बाद विंबलडन के चौथे दौर में पहुंचने वाले पहले ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। पांचवी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डिमिनोर ने अमेरिका के जाचरी स्वेजदा को 4 सेटों तक चले मुकाबले में 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 से हराकर चौथे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। डिमिनोर ने पूरे मैच में अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल किया और कई बार स्विजदा की सर्विस तोड़ी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरब ने अमेरिका के मार्कोस गिरोन को सीधे सेटों में 6-2, 7-6, 6-4 से हराकर अपनी लय बरकरार रखी। तेजी से उभरते सितारे जिरी लेहेका ने स्पेन के जैम मुनार को 4 सेटों में 6-4, 4-6, 6-4 से हराया। फ्रेंच ओपन के फाइनलिस्ट फ्लाबियो कोबोली ने केरन खिचानेव के खिलाफ 5 सेट तक चले मैराथन मैच में 6-7, 6-7, 6-2, 6-2 से जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। टेनिस प्रशंसकों के लिए निराशाजनक खबर में दिग्गज सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स ने महिला युगल प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। सेरेना विलियम्स को एक एकल मैच के दौरान घुटने में चोट लग गई थी जिससे उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। पुरुष युगल में भी बड़ा उलटफेर हुआ जहां दूसरी वरीयता प्राप्त मार्सेल और होरेसिया जेबेलोस को सैंडर गिल और सैम बर्विक ने सीधे सेटों में बाहर कर दिया। विमेन सिंगल्स में 2 सबसे मजबूत दावेदारों के बाहर होने के बाद अब ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि विमेन सिंगल्स का टाइटल कौन जीतेगा। दूसरी ओर आर्थर फेरी और अलेक्जेंड्रा इला जैसे युवा खिलाड़ियों की जीत ने साबित कर दिया है कि टेनिस का भविष्य नए और ऊर्जावान खिलाड़ियों के हाथों में है। अब सभी की नजरें अगले राउंड पर हैं जहां मुकाबले और भी कड़े होने की उम्मीद है।
1: अब सुनते हैं शिवांश की एक खास रिपोर्ट ऑन संडे ऑन साइकिल।
2: जब कोई शहर अपनी सुबह की शुरुआत दौड़ते कदमों, घूमते पहियों और मुस्कुराते चेहरों के साथ करता है तो वो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती बल्कि एक स्वस्थ समाज की तस्वीर भी होती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 80वें संस्करण का आयोजन कम्युनिटी फिटनेस राइड थीम के साथ किया गया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में खिलाड़ियों, युवाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और फिटनेस प्रेमियों ने एक साथ साइकिल चलाकर फिटनेस को जन भागीदारी का उत्सव बनाने का संदेश दिया। किसी भी अभियान की असली ताकत उसकी निरंतरता और लोगों की भागीदारी होती है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 80वां संस्करण भी इसी सोच को आगे बढ़ाता नजर आया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फिटनेस को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। आइए सुनते हैं।
3: संडे ऑन साइकिल मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट है। आप साइकिलिंग करेंगे, आप रन करेंगे, आपका हार्ट फिट रहेगा, आपका माइंड फिट रहेगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपका सोल भी फिट रहेगा। साइकिलिंग करने से दोस्तों एक की जगह पे चार फायदा है। साइकिलिंग करने से हम फिट रहते हैं। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग देश का फ्यूल बचाता है और साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है। इसलिए चलो हम देश के युवा तय करते हैं हर संडे एक घंटे साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें। धन्यवाद।
2: सत्य साई सेवा संगठन भारत के अखिल भारतीय अध्यक्ष निमेश पांड्या ने संडे ऑन साइकिल पे क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: सर, आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में साइकिलिंग जैसी आउटडोर एक्टिविटीज को युवाओं के बीच बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा सकता है? सर,
5: युवाओं को सबसे पहले तो अपने फिजिक को, अपने जो शरीर है उसके लिए इज्जत सिखानी चाहिए कि शरीर जो हमारा है ये हमारे लिए जीवन और मृत्यु के बीच का जो रास्ता है उसके लिए हमारी ये गाड़ी, हमारी मर्सिडीज बेंज है, इसका ख्याल करना बहुत आवश्यक है। फिजिकल एक्टिविटी, बीइंग इन फ्रेश एयर, ब्रीदिंग गुड एयर, मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन दिस ह्यूमन बॉडी टिल द टाइम लाइफ टाइम इज, बिकॉज मेनी पीपल कोलैप्स। इट्स लाइक गोइंग ऑन अ हाईवे इन अ कार, इफ यू डोंट मेंटेन योर कार यू कैनॉट रीच योर डेस्टिनेशन। देयरफॉर द ह्यूमन बॉडी इज इंपॉर्टेंट। द यूथ मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे शुड रिस्पेक्ट द ह्यूमन बॉडी एज ए ग्रेट कैरियर बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन लाइफ टाइम। A healthy body is a healthy mind. A healthy mind is a happy mind.
4: आज की थीम थी हमारी सर कम्युनिटी फिटनेस राइड। आपके हिसाब से अगर हर शहर में नियमित रूप से ऐसी कम्युनिटी फिटनेस राइड आयोजित हो तो क्या हम सभी लोगों की लाइफस्टाइल में परमानेंट बदलाव ला सकते हैं?
5: हाँ जी, फिटनेस जो है और जब कम्युनिटी फिटनेस होती है तो एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है, एक दूसरे को एनकरेजमेंट मिलता है। अकेला इंसान जो कर सकता है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा एक कम्युनिटी में कर सकता है, और कम्युनिटी में जो हैप्पीनेस का क्वेश्चन है वो ज्योमेट्रिक हो जाता है। इंडिविजुअल में इट्स अ लिमिटेड थिंग, व्हेन यू कम टुगेदर, जब साथ आते हैं लोग तो जो खुशी के जो दायरा है वो बहुत गुना बढ़ जाता है और पूरे वातावरण में पॉजिटिविटी आती है। और जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो तो मन भी पॉजिटिव सोचता है, और मन पॉजिटिव सोचता है तो एक्शन पॉजिटिव होता है, और एक्शन पॉजिटिव होता है तो कैरेक्टर बनता है। ऐसा एक का जो पाथवे है, गुड थॉट्स गिव गुड एक्शंस, गुड एक्शन मेक गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स मेक गुड कैरेक्टर। देखो कम्युनिटी में ये फायदा है, एक दूसरे को प्रोत्साहन। वैल्यू योर बॉडी, इट इज द ग्रेटेस्ट एसेट नेचर हैज गिवन यू। इट इज बिकॉज ऑफ द बॉडी दैट यू कैन एंजॉय लाइफ एंड यू कैन लिव लाइफ। देयरफॉर लाइक यू टेक केयर ऑफ योर मोटरसाइकिल, लाइक यू टेक केयर ऑफ योर कार, यू मस्ट टेक मोर केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज दैट्स योर व्हीकल। देयरफॉर नेवर अब्यूज इट, नेवर मिस यूज इट, ऑलवेज ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट एंड लव, बिकॉज विदाउट द ह्यूमन बॉडी देयर इज नो लाइफ।
2: फिल्म जगत से जुड़े वरिष्ठ कलाकार नासिर अब्दुल्ला ने संडे ऑन साइकिल पे क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: हाउ इज योर एक्सपीरियंस टुडे फॉर दिस इवेंट?
6: वेल, इट वाज अमेजिंग, अ लिटिल टू अर्ली फॉर मी ऑन अ संडे, बट आई हैड हर्ड अबाउट इट, आई हैड बीन इनवाइटेड, एंड इट वाज ग्रेट टू सी द एनर्जी हियर। सम 13,000 ऑफ द पीपल हैड कम, यंग, मिडिल एज्ड, ओल्ड, ओल्डर, एंड देन आई सॉ अ 3-year-old बॉय साइकिलिंग ऑन द ट्राइसाइकल. Amazing guy. He just was so full of energy. Obviously, they always are. Amazing experience. Very good. And the sports minister was also here, and he also gave a wonderful speech. And then, yeah, they had a lot of other people around. The dignitaries, surgeons, health experts, sab aaye the. Aur bahut acha laga. Nice.
2: फिट इंडिया के डायरेक्टर सुशांत खंडेलवाल ने क्या कहा आज, आइए सुनते हैं।
4: सर, जैसे कि आज हर एज ग्रुप के लोग इस राइड में शामिल हैं, क्या यही इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत?
7: जी बिल्कुल, आप देख ही रहे होंगे ये 80th एडिशन है संडे ऑन साइकिल का, और जैसा कि आपने बताया हर तबके का, हर वर्ग का, हर उम्र का आदमी यहाँ पे था, और यही हमारे मूवमेंट

0: एक सोच है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, हम हर इंसान को छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक को हम फिटनेस के इस मूवमेंट से जोड़ सकें और इसी बहाने लोग घरों से बाहर निकलें और कुछ एक्टिविटी करें। तो डेफिनेटली इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन है और ये बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। देखिए, संडे ऑन साइकिल तो एक मिशन है, इसके अलावा ये सिर्फ यहाँ दिल्ली में नहीं हो रहा, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हम अलग अलग हर संडे, जगह अगर आप देखेंगे हमारी थीम अलग अलग कम्युनिटीज के साथ होती है। कभी हम डॉक्टर्स के साथ करते हैं, कभी हम लॉयर्स के साथ करते हैं, कभी हम इस बार हमारी कम्युनिटी जो हमारे जितने पार्टनर्स हैं कम्युनिटी वाले उनके साथ था। तो आइडिया यही है कि जो युवा हैं उनके बीच में ये मैसेज पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा तबकों तक मैसेज पहुंचे कि साइकिलिंग एक फिजिकल एक्टिविटी, ना सिर्फ साइकिलिंग बल्कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उनको फिट रखे वो करते रहें। और इसके साथ साथ आपने अगर ध्यान दिया हो तो आज हमारा नशा मुक्त भारत अभियान का भी एक मैसेज हमने दिया है युवा को, एक प्लेज सबने मिलकर साथ में लिया है कि हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे और नशे से दूर रहेंगे।
1: आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अगर आपको देश के यंगस्टर्स के लिए फिटनेस को लेकर सिर्फ एक मैसेज देना हो तो वो क्या हो?
0: मेरे हिसाब से जो मैसेज है वो प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज और फिट इंडिया तो हिट इंडिया। तो हमको फिट रहना है क्योंकि ये सिर्फ हमको बेटर नहीं बनाता, हमारे समाज को और हमारे देश को बेटर बनाता है। हम आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ शरीर में रहता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फिट रहें।
2: कम्युनिटी फिटनेस राइड केवल साइकिल चलाने का आयोजन नहीं बल्कि ये संदेश है कि जब फिटनेस समाज की साझा जिम्मेदारी बन जाती है तो उसका प्रभाव हर घर और हर पीढ़ी तक पहुंचता है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का ये 80वां संस्करण भी इसी सामूहिक सोच और स्वस्थ भारत के संकल्प को मजबूती देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
3: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी अर्शद को और मेरे साथी हेमंत को साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: खेल खिलाड़ी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस

0: ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबंध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघड़, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. The monsoon session of Parliament will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. The government has withdrawn emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, today met a delegation of Bharatiya Mazdoor Sangh, BMS, and affiliated employees organizations to discuss a range of issues relating to government employees, pensioners and administrative reforms. Dr. Singh appreciated the constructive role played by employee organizations in bringing service-related issues before the government through institutional dialogue. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. In Raigad district, 10 to 12 tourists were safely rescued by the police from Adoshi waterfall near Kopoli after the water level suddenly rose. Authorities have advised people to stay away from rivers, waterfalls and other water bodies during the monsoon. In Mumbai, a 63-year-old man was killed after a tree fell on a shop in Kurla during heavy rain this afternoon. The BMC said 64 incidents of tree falls and 8 cases of wall or partial house collapses have been reported across the city. Heavy rain and strong gusty winds have also disrupted flight operations significantly. The India Meteorological Department has issued a red alert in the Konkan districts including Mumbai, Thane, Palghar, Raigarh and Ratnagiri. Heavy to very heavy rainfall is also predicted in the ghat areas of Satara, Pune and Kolhapur. In rest of Maharashtra, the weather office has forecast thunderstorms with lightning, gusty winds of 30 to 40 km per hour and extremely heavy rainfall at isolated locations. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra.

0: प्रगाढ़सम्बन्धाः आर्थिकसहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते। तेनग्रे प्रतिपादितं यत् भारत इंडोनेशिया देशयोः मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा विचारभिन्नता नास्ति, अतः सम्प्रति उभे अपि राष्ट्रे विकसित भारत तथा च स्वर्ण इंडोनेशिया इत्येतयोः दूरगामी लक्ष्याणां प्राप्ते सुदृढं रणनीतिकसहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते। आईसीसी महिलावर्गस्य विंशतिः प्रतिविंशतिः क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। उभौ दले संपूर्ण स्पर्धायां अपराजिते स्तः। ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपांति स्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया दलेन वेस्टइंडीज दलम पराजित्य अपि च इंग्लैंड दलेन दक्षिण अफ्रीका दलम पराजित्य अंतिम स्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः। आदौ मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। होर्मुज जल डमरू मध्य इतनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषण से पुनः प्रारंभात अनंतरम भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तो आपत्कालिकः प्रतिबंधः निरस्तीकृतः इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोतो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्विनी भाई कार्यक्रम लेकर आजे। देखिए किताबों का यानी जो पुस्तकों का
1: जी।
0: हमारे जीवन में अपना महत्व है,
1: बिल्कुल।
0: जन्म से लेकर भाई एक तरह से, और जब पढ़ाई हमारी शुरू होती है तो पुस्तकों से हमारी पढ़ाई जो शुरू होती है, और पुस्तकों के साथ साथ भाई देखिए पुस्तकालयों की अगर बात करें, विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, तो पुस्तकालयों का अपना जो सामुदायिक पुस्तकालय जो होते हैं उनका अपना अलग महत्व है। ये जहाँ भाई देखिए गाँव में रहने वाले छात्रों, युवाओं, किसानों को उचित मार्गदर्शन करते हैं, वहीं भाई देखिए नई नई कृषि तकनीक से जुड़ी जानकारियाँ भी इनके माध्यम से मिलती हैं। सस्ती शिक्षा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर छात्र के पास महंगे शिक्षण संस्थान या निजी कोचिंग का विकल्प कम होता है, तो पुस्तकालय सभी को मुफ्त या बहुत कम लागत में अच्छी और शैक्षिक पुस्तकें प्रदान करते हैं। साथ ही भाई कृषि और व्यावसायिक विकास की बात करें तो एक अच्छे ग्रामीण पुस्तकालय में कृषि की नई नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं, छोटे व्यवसायों से संबंधित किताबें और पत्रिकाएं उपलब्ध होती हैं, जो किसानों और स्थानीय उद्यमों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं।
1: बिल्कुल, देखिए ना, आपने ग्रामीण प्रवेश की बात करी, किसानों की बात करी, युवाओं की बात करी, वहाँ पर सामुदायिक पुस्तकालयों के रूप में जो लाभदायक होता है और कैसे लाभदायक हो सकता है, यहाँ पर आधुनिक खेती है, उन्नत बीज है, जैविक कृषि है, जल संरक्षण है, फसल सुरक्षा है, मौसम की जानकारी है, और कृषि योजनाओं से संबंधित पुस्तकालयों पत्रिकाओं के माध्यम से नई जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे खेती अधिक लाभकारी बन सकती है। वहीं पर अगर हम बड़े और बूढ़ों की बात करें, युवाओं की बात करें, वहाँ पर परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकते हैं, महिलाओं को शिक्षा कैसे दे सकते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी कैसे दे सकते हैं, स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्रदान कर सकते हैं, यहाँ सामाजिक संवाद, विचार विमर्श, संस्कृति गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। पुस्तकालयों का अपना एक महत्व है, जहाँ पर हमारे चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे बूढ़े हों, हमारे युवा हों या कोई हों, वो जो जानकारी वहाँ से मिलती है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि डिजिटल युग आ गया है, कई सामुदायिक पुस्तकालयों इंटरनेट के माध्यम से ई पुस्तक और डिजिटल संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं, इससे ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार संबंधी अवसरों की जानकारी घर बैठे भी मिल सकती है। तो क्यों ना इस ज्ञान को लिया जाए और अंधकार को मिटाया जाए और नई तकनीकों को अपनाया जाए, जिससे हमारे
0: भाई इतना ही नहीं, देखिए जो पुस्तकालय जो होते हैं, जो हमारे विशेषकर हम बात करें ग्रामीण समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं
1: जी,
0: उनको दूर करने में भी काफ़ी हद तक मदद करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और सामाजिक स्तर को सुधारने में भी मदद करते हैं। यहाँ तक कि देखिए पुस्तकालय बच्चों और युवाओं का ध्यान गलत आदतों से हटाकर उन्हें रचनात्मक और ज्ञानवर्धक दिशा में भी ले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है और जो समाज के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातचीत भाइयों से और भी करेंगे भाई। आज देखिए विशेष कार्यक्रम है पुत्रोत्तर लोक संगीत के साथ, भाइयों की फरमाइश हमें काफ़ी संख्या में मिली है। आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो है कालू राम यादव और सतीश यादव, और इनको सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है ये मिली है गांव लोहड़ा जिला बागपत से, जगमोहन सिंह प्रजापत, सुधीर नूतन और उनकी पोती भुवनेश्वरी देवी की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव चोलदा बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया की। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है MLB रोड ग्वालियर से, सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव आरव, मेघा साक्षी, आशीष, अनुज और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और ये पत्र हमें मिला है नागोड़ा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं हमें लक्ष्मी देवी को, गोस्वामी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मनीषा और उनका पूरा परिवार जो
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश अश्विनी भाई मिली है वो मिली है चंडीगढ़ से भाई सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की।
1: जी, अगला जो पत्र हमें शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में, ये कोटवारा नारायण बल्ली से पत्र में भेजा है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, उनका पूरा परिवार है। दोपहिया निदावाला जिला गाजीपुर से पत्र में भेजा है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय और उनका पूरा परिवार है। यहीं पर बुन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से पत्र में भेजा है, ये विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ डोगर गांव से, उसको भेजने वाले राष्ट्रपाल राधिका और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ग्राम ममना जिला हमीरपुर से, और इसको भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना और उनका समस्त परिवार।
1: ये पत्र मिला है गांधी नगर गुजरात से, हम शामिल करते हैं जिन्होंने सुनना चाहा है कालूराम और सतीश यादव को। ये है सुरेश राठौर, मंडल राठौर, विशाल और निशा उनका पूरा परिवार। और ये बठिंडा रोड मंडी डवाली से पत्र में भेजा है, ये है राजेंद्र अनुज मोहित तानिया और उनका पूरा परिवार।
0: कलू राम और सतीश यादव को सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है वो करावल नगर दिल्ली से मिली है रामनाथ प्रजापति श्रीमती सुमन देवी की।
1: और ये पत्र मिला है जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कंडवासरा, सचिन कंडवासरा, सतीश, योगेश और उनका पूरा परिवार। यहीं पे एक और पत्र शामिल कर लेते हैं जिन्होंने सुनना चाहा है कालूराम और सतीश यादव को। ये है देवगन शंकर तोमरिया, अजय देवगन तोमरिया, तुषार देवगन तोमरिया और पत्र मिला है हमें बलदौर छत्तीसगढ़ से।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली हांडीखेड़ा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल, कौशल्या, हेमलता और डिंपल और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक की।
1: ये जनकपुरी सहारनपुर से पत्र हमें भेजा है, ये हमारे पुराने श्रोता हैं और पत्र हमें ज़रूर हमारे कार्यक्रम में भेजते हैं। ये जॉन डिकोस्टा, रॉजी डिकोस्टा, पाड़ल डिकोस्टा, विलियम डिकोस्टा उनका पूरा परिवार।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है गाँव चौधरीवास हरियाणा से मांगे राम स्तोड़, रितु सिंह, ईमानी, शुभम और यश कुमार की।
1: ये पराली छत्तीसगढ़ से पत्र हमें भेजा है नितेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद देवगन, प्राग देवगन, तनुषा, ईशा और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, डब्बू और बब्बू की। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कालू राम यादव और सतीश यादव से ये रागनी किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी कालूराम यादव सतीश यादव से, और किस्सा था महाभारत का। और देखिए, सरकार द्वारा जो भाई किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। ये एक पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को हर महीने 3,000 से लेकर सालाना 36,000 रुपये के रूप में, पेंशन के रूप में दी जाती है। और भाई, इसमें अगर पात्रता की बात करें अश्विनी भाई, तो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच वाला छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही अंशदान की बात करें तो यह एक अंशदान योजना है, जिसमें किसान की उम्र के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक प्रीमियम देना पड़ता है। किसान जितना योगदान करता है, केंद्र सरकार भी उसी हिसाब से उसके पेंशन कोष में उतनी राशि जमा करती है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही देखिए भाई, इसमें एक लाभ ये भी है कि कल को मान लो किसी, ना करे भगवान, के किसी किसान भाई की मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार को भी या उसके जीवन साथी को भी पारिवारिक पेंशन के रूप में 1500 रुपये तक दिए जाते हैं
1: जी।
0: और भाई साथ ही देखिए, जो जो किसान पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ रहे हैं, वे सीधे उस योजना से मिलने वाली जो किस्तों से अपना प्रीमियम कटवा सकते हैं। और पात्र किसान अपने आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि के दस्तावेज जिसमें खतौनी आदि शामिल है, लेकर अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इन्हीं सभी योजनाओं का हमारे जो हर व्यक्ति जो 18 से 40 वर्ष का हो चुका है, उसको ये ज़रूर ये योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, और अपने आप को भी लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने भाई बंधुओं को लेकर इन सब योजनाओं का लाभ लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे सुनील भाई ने बताया है, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर पहुँचेगा। कार्यक्रम करो और आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानानंद जी की आवाज़ में ये जो फरमाइश हमें भेजी है, उसके लिए पत्र, पहला पत्र हमारे सुनील भाई के हाथ में है।
0: बिल्कुल। पहली फरमाइश हमें मिले जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद अर्णव और दुर्गेश्वरी जायसवाल की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राई, मेहरा जान, और ये फरमाइश भेजी है आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी की।
1: और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं हमने कार्यक्रम में। ये पत्र भेजा है भोला कॉलोनी घरनोंडा जिला करनाल हरियाणा से, पत्र मिला है विजेंद्र कुमार जयान और कांता रानी, गुंजन साहिल वारन और उनका पूरा परिवार। वहीं पर एक और पत्र गांव कुमारा हेड़ा सहारनपुर यूपी से, पत्र हमें भेजा है ये शायद मशरूम शाइन अंसाज नाजिया और इनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का की।
1: ये पत्र दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, पत्र मिला है ये हीरा मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौकली और उनका पूरा परिवार। और इन वो ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम नरेंद्र शर्मा है, प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम फरमाइश करते हैं हमारी जो फरमाइश है जो इस प्रोग्राम में शामिल की जाए। लीजिए नरेंद्र शर्मा जी, आपकी फरमाइश को पूरा कर दिया है। ये कलानौर से पत्र भेजा है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार की। और भाई देखिए, ज्ञानेंद्र सराधा को भी सुनना चाहते हैं बलराम, बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद, गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से।
1: और ये गांव खोकरवाली श्रीगंगानगर से पत्र में भेजा है ये विनोद कुमार बारसा, रोशनी बारसा, ये हमारे पुराने श्रोता हैं। और एक पत्र और शामिल कर लेते हैं, ये है बहरल वाला खुर्द सिरसा से, पत्र हमें भेजा है बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया, हिमानी, शिवम और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: पटेल नगर मालोट से पत्र हमें भेजा है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और उनका पूरा परिवार।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ज्ञानेंद्र सधाना से ये रागनी और किस्सा रहेगा रामायण का।

0: अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी ज्ञानेन्द्र सनातन से। और भाई, किस्सा था महाभारत का।
1: जी
0: और अगली जो रागनी है भाई, वो जिसके लिए हमें फरमाइश मिली है योगेश कुमार और साथियों की, और इस रागनी का जो किस्सा है वो रामायण का किस्सा रहेगा। और इसके लिए फरमाइश आपके हाथ में दिखाई दे रही है अश्विनी भाई।
1: जी ये पत्र, पहला पत्र पढ़ ले लेते हैं इनके लिए। ये पत्र भेजा है ऊपर कोट मोहल्ला चौधरी वात्से बुलंदशहर से, मोहम्मद ईसाई अब्बासी और शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी और अरजान अब्बासी और उनका पूरा परिवार, और योगी मोहल्ला बरखड़ा जिला अम्बाला से पत्र मिला है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से, और इसको भेजने वाले कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू और पायल शाहू।
1: और ये पत्र जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पत्र मिला है शरण का प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन, लविश और उनका पूरा परिवार।
0: और भाई देखिए, काफी और भी फरमाइश सुनी भाई हमें मिली हैं, जो हमेशा की तरह हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो आप कार्यक्रम कृषि जगत भी सुनते रहिए। और अब सभी की पसंद पर सुनते हैं योगेश कुमार और साथियों से यह रागनी, और किस्सा रहेगा रामायण का।
1: जी।

0: सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी योगेश कुमार व साथियों से। किस्सा था रामायण का, और योगेश कुमार की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: असोनी भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं
1: जी।
0: देखिए जुलाई का महीना शुरू हो गया है और जुलाई का महीना जो खरीफ फसलों और सब्जियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और भाई जिन किसान भाइयों ने भाई देखे धान की नर्सरी लगा रखी है वो जुलाई के पहले दूसरे पखवाड़े में धान की रोपाई कर सकते हैं। यह समय उत्तम समय माना जाता है। और देखिए साथ ही भाई जो मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई इस समय पूरी कर लें, कतारों में रोपाई करें और साथ ही खेत में जो उचित जल स्तर बना के रखें। जिन किसान भाइयों ने भाई देखे मक्का सोयाबीन और अरहर लगाना चाहते हैं और अभी बुआई नहीं की है तो भाई वो भी इसमें देरी ना करें और जुलाई के पहले सप्ताह में ही अगर कर ले तो अच्छी रहेगी
1: जी।
0: और कम अवधि वाली दालों बाजरे की बुआई भी इस महीने की जा सकती है। साथ ही सब्जियों की अगर बात करें तो भाई इनकी जो नर्सरी तैयार होने के बाद खेतों में रोपाई टमाटर और बैंगन की कर सकते हैं। खीरे की अगर बात करें तो मचान विधि या उठी हुई मेड़ का इस्तेमाल करके जिसमें बारिश में फसल गलने से बचे और अच्छी पैदावार हो। फूल गोभी और पत्ता गोभी बरसात के मौसम के लिए विशेष किस्में जैसे मानसून क्वीन उगा सकते हैं। और साथ ही बात करें तो भाई देखिए प्रबंधन की अगर बात करें तो जल निकासी भारी जो बारिश के कारण कई बार भारी बारिश हो जाती है तो भारी अगर बारिश होती है तो भाई खेतों में जल भराव की समस्या हो जाती है। खेतों की मेड़ों को मजबूत करें ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके। और खरपतवार नियंत्रण भी भाई फसलों को समय से खरपतवार से बचाने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें। साथ ही देखिए मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित जो उर्वरक और जैविक खाद चाहे गोबर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। और कीट और रोग नमी में अधिक होते हैं तो भाई कीट और रोगों से भी फसलों को बचें।
1: और एक छोटा सा मैं भी यहाँ पर बोलना चाहूँगा सुनील भाई कि यहाँ पर अगर हम अधिक वर्षा की स्थिति में खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें ताकि फसल की जड़ों को नुकसान कम से कम पहुँचे। और वहीं पर खरपतवार नियंत्रण की बात हमारे सुनील भाई निकल रही है कर रही है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो देख संभावनाएं हैं तना छेदक और फॉल ऑर्मिक और केला महुआ आदि कीट रोगों से उनकी सावधान रहें। और धान की नर्सरी की बात जो ऑलरेडी उन्होंने निकल रही है और कम से कम सबसे महत्वपूर्ण जो जुलाई के महीने में ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हमारे पशुपालक हैं वो अपने पशुपालक पशुओं को इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा लें जिसमें टीकाकरण कराना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान पर नज़र रखें उसी के अनुसार खेती के कार्यों में और योजना बनाएं और फसल बीमा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का भी समय पर लाभ उठाएँ।
0: बिल्कुल तो देखिए भाई इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमने पहले

0: बताया कि भाई जुलाई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अश्विनी भाई बातचीत भाइयों से और भी करेंगे, आज पत्रोत्तर लोक संगीत के साथ है कृषि पत्रोत्तर, तो भाई वो भी शामिल करेंगे,
1: जी
0: लेकिन पहले भाइयों का मनोरंजन कराते हैं और विनोद कुमार से सुनाते हैं उपदेश। और विनोद कुमार से उपदेश सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है वो मिली है नूर महल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है कुलाम रोड हरिगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से, सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिले बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, सुरेश गरोवर, बेबी गरोवर, गौरव गरोवर और महेश और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है भाई, ये फरमाइश हमें मिली है जीटीबी
1: पंजाब
0: मार्केट
1: मंडी
0: मंडी से,
1: पंजाब
0: और
1: से जी
0: भेजने वाले हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, हीना और उनका समस्त परिवार।
1: जी अगले पत्र मिला है जामियाना गाजियाबाद गाजीपुर से है। ये सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति उनका पूरा परिवार वहीं पर। ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल और इनका पूरा परिवार। ये है गोयरा जलंधर से पत्र में भेजा है। ये एक और पत्र शामिल कर लेते हैं। ये है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से पत्र है। ये खिलेश कुमार साहू, चित्रलेखा साहू, शुभम और उनका पूरा परिवार।
0: विनोद कुमार को ही सुनना चाहते हैं, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। साथ ही फरमाइश मिली है अनारकली बाजार जगरो पंजाब से, ये भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक और जयपाल यादव।
1: जी एक और पत्र में हमें जो सुनना चाहते हैं विनोद कुमार जी को, ये है गांव गाला जिला अम्बाला हरियाणा से पत्र मिल लिखते हैं। ये इन्होंने अपना नाम लिखा है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और उनका पूरा परिवार। FNH ढाना नरसाना भिवानी से पत्र हमें लिखा है। जगदीश चंडालिया, राजीव राजीव चंडालिया, सीता सतीश चंडालिया, रितेश एंड का पूरा परिवार। और
0: ये
1: जी
0: फरमाइश हमें मिली है सुनी भाई गांव टोरावाला से पंजाब से, और उसको भेजने वाले गगनदीप थांदी, त्रिपिता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी और उनका समस्त परिवार।
1: ये रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से पत्र मिला है हमें। ये है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और उनका पूरा परिवार। और चाक MD पतरडोड़ अनूपगढ़ राजस्थान से पत्र हमें मिला है। ये है मंगला मंगला श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है धनौरी तेलीवाल उत्तराखंड से, और इसको भेजने वाले हैं निसारा सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। साथ ही हमें फरमाइश मिली है कनेरा मोहला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, कर्ण बत्ता और उनके समस्त परिवार की तरफ से। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाइश मिली रजाक मोहम्मद, समीम बेगम और उनके परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कायल कोयल मल्होत्रा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: शिवाजी कॉलोनी रोहतक से भी पत्र में मिला है। ये पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और उनका पूरा परिवार। और यहीं पर जिला मुरादाबाद गांव दुपल्लापुरा उत्तर प्रदेश से पत्र मिला है। मुकेश कश्यप, सोनू और राजपाल, मानवीय लक्ष्य, मोहिनी और उनका पूरा परिवार। और एक यह है सले भाड़ा महासुंदर छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है। जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिवांशु और उनका पूरा परिवार। और ये गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से पत्र मिला है। स्वर्ण गिल, दलजीत सिंह, रंजीत सिंह, गुरनेर लाल और अजीत काल, उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है रामगढ़ कैंट से, और इसके भेजने वाले महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब चौधरीवास से। फरमाइश मिली है राजू अग्रवाल, केशव, प्रियंका और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: ददरेंगी से ये पत्र मिला है। भगवत वर्मा, शांति देवी वर्मा, ललावती वर्मा, उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली रिंगरी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की।
1: जी जो ये पत्र एक और शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। ये नारे वाले महाराज से पत्र मिला है। PC नेहवाकर, निर्वाण नेहवाकर और विशाल नेहवाकर, उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है पुराना तालाब डुमराव से, वली अल्लाह अंसारी से, बेगम शबनम राज और उनका समस्त परिवार।
1: जलालाबाद वेस्ट से पत्र मिला है जिन्होंने सुनना चाहा है विनोद कुमार को। ये है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, उनका पूरा परिवार। और ये है दादा बाबू रोड गिरई झारखंड से पत्र मिला है। मोहम्मद यासी अंसाज और बाबू एहसाद फिरकी, बेबी चाहत और उनका पूरा परिवार।
0: विनोद
1: और
0: कुमार से उपदेश सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से, और भेजने वाले सज्जन जागड़ा, राजबाला, कार्तिक व वेदांश।
1: जी
0: और ये लिखते हैं कि भाई ये जो
1: ग्रामीण
0: ग्रामीण
1: कार्यक्रम
0: संसार का जो कार्यक्रम बहुत पुराना है, वह मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि भाई ये कार्यक्रम को सुनते हैं।
1: जी बिल्कुल। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, हमारे भाइयों ने लिखा है, ये पत्र आया है हमें, ये है, ये पत्र गांव तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से पत्र मिला है। नाम है मिंटू और सुनील और इनका पूरा परिवार, और ये

0: परिवार
1: ये फरमाइश हमें मिली है गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, भाई वेद मीडा और अलका मीडा की। और तो आइए अब सभी की पसंद पर सुन लेते हैं विनोद कुमार से ये उपदेश।
0: जी।

0: कह दे कोई पाप कमा न होया करे। साज बाज बेन मेहर सिंह तेरा यू के गाना।
1: तो भाइयों ने सुना अपनी पसंद पे विनोद कुमार को और अब हम इसके बाद हम एक पत्र में मिला है, ये पत्र में भेजा है क्या, ये जोधपुर राजस्थान से पत्र में मिला है। ये विनोद भाई ये पत्र लिखते हैं, लिख रहे हैं कि क्या मैं बाजरे की बिजाई इस समय कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ तो इस बिजाई में किस्में उन्नत किस्में क्या क्या हो सकती हैं, कौन सी भूमि उचित रहती है, और इसके लिए हम बीज की क्या मात्रा ले सकते हैं, और कौन कौन सी क्रियाएँ करें जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले।
2: तो विनोद भाई देखिए, आप बाजरे की बिजाई करना चाहते हैं तो वैसे तो इसका जो सही समय है वो जून में जुलाई के मध्य तक का समय माना जाता है। मध्यम अवधि वाली जो किस्में की अगर बात करें, 70 से 80 दिन में पकने वाली हैं, तो वो 10 जुलाई तक उसकी जो बिजाई करना सबसे उचित माना जाता है। और शीघ्र पकने वाली किस्मों की बात करें तो भाई 20 जुलाई तक इसकी जो बिजाई करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो भाई समय अब खेत की अगर आपकी तैयारी है तो देरी ना करें। और जहाँ तक भाई खेत की तैयारी की बात की तो देखिए, इसकी बिजाई के लिए 2 या 3 जुताई आवश्यक है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए गहरी जुताई करना बहुत ही अच्छी है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो भाई देखिए, उन्नत किस्मों में स्कूल किस्मों की अगर बात करें तो आप राजस्थान से बात कर रहे हैं, 171 82 से 87 दिन में जो पककर तैयार हो जाती है, CZP 98 से 274 से 82 दिन में पककर तैयार हो जाती है, ICTP 82-03 जो 70 से 75 दिन में, और MP 383 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। संकर किस्मों की अगर बात करें तो HHB 67-65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, GHB 538-70 से 75 दिन में, RHB 121-75 से 80 दिन में, और GHB 719-70 से 75 दिन में, ICMH 356 की बात करें तो 75 से 80 दिन में। जहाँ तक जब भूमि की आपने बात की, वैसे तो देखिए भाई, उचित जल निकासी वाली सभी प्रकार की भूमि में बाजरा उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट भूमि इसके लिए अच्छी तरह और उचित मानी जाती है। साथ ही भूमि में भाई जल निकासी का उचित प्रबंध होना बहुत ही जरूरी है। और बीज की मात्रा की आपने बात की, तो जो बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सबसे उचित व उन्नत माना जाता है। और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है। जहाँ तक भाई सिंचाई की बात है तो देखिए, बाजरे की फसल सामान्यतः असिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। फसल में सिंचाई की आवश्यकता विशेषकर फूल आते समय ही पड़ती है। यदि उस समय पर्याप्त नमी नहीं हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। बुराई के 3 से 4 सप्ताह तक खेत में निराई गुड़ाई कर लें और आवश्यकता अनुसार दूसरी गुड़ाई इसके 15 या 20 दिन बाद अवश्य कर लें। बाजरे के सिट्टे जब हल्के भूरे रंग के बदलने लगे तब पौधा सूखने लगे तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, उन्नत किस्म लेंगे, समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे बाजरा फसल से भरपूर उत्पादन।
1: जी, अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं ओम वीर आर्य से ये

अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने उपदेश सुना उम्मीद आगे से, और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दे। कल 5:10 पर कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे। 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के बारे में, और साथ ही चर्चा करेंगे बाबू जगजीवन राम स्मृति दिवस के बारे में। और भाई 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी दे रहेंगे खरीफ फसलों में जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन, और साथ ही भाई योजना के बारे में जानकारी देंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय भाई यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं लीजिए अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजाई कार्यक्रम।

रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ के युगल स्वरों में अभी आपने सुनी ये प्यारी सी गजल। और श्रोताओं, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा देते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, गजलों से सजा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ब्रेक
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 7 में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक वर्ष के लिए ग्रीन कैलेंडर तैयार किया। उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न जिलों में चयनित सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
10: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिशन कायाकल्प को जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सहयोग देने वाली संस्थाओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदाय के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकारी संसाधनों के साथ साथ समाज की भागीदारी से स्कूलों में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी का एक प्रभावी उदाहरण है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मिशन कायाकल्प के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों में जिससे बदलाव दिखाई देने लगे हैं। दक्षिण जिले के रामानुजन सर्वोदय कन्या विद्यालय महरौली में लगभग 48 लाख रुपए और सर्वोदय क्वेट सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में करीब 58 लाख रुपए की लागत से बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए हैं। वहीं पश्चिम जिले के मोहन गार्डन के सरकारी विद्यालयों में लगभग 77 लाख रुपए की लागत से व्यापक आधारभूत ढांचा सुधार कार्य और जनकपुरी में स्थित GSKV में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से आधारभूत मजबूती को बल दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी जिले के गोकुल और शाहदरा के विद्यालयों में भी बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिशन कायाकल्प केवल रंग रोगन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी स्कूलों के समग्र रूपांतरण का अभियान है। इसके अंतर्गत स्कूल भवनों की मरम्मत, दीवालों की पेंटिंग और व्हाइट वॉशिंग, जर्जर शौचालयों का नवीनीकरण, स्वच्छ पेयजल के लिए RO पॉइंट और वाटर कूलर की स्थापना की जा रही है।

0: प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 1,00,000 रुपए से अधिक की संयुक्त सब्सिडी देकर रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पालम विधानसभा के द्वारका सेक्टर 7 स्थित एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स इंक्लेव में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस योजना को केंद्र सरकार से 90,00,000 रुपए और दिल्ली सरकार से 10,00,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ विकसित भारत जी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने 1 वर्ष का ग्रीन कैलेंडर तैयार किया है, जिसके अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। श्री चहल ने यह बात आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के 31वें संस्करण पर बीबी के दत्त कॉलोनी में सामूहिक वृक्षारोपण के आयोजन के दौरान कही। एक पेड़ माँ के नाम पहल पर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल अभियान नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक उत्तरदायित्व का जन आंदोलन है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आगामी वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम स्थल के तैयारियों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को करेंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प राजधानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक ग्रीन, क्लीन और स्वस्थ बनाना है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय और पश्चिम दिल्ली के बीच जुड़ाव को अधिक बेहतर बनाने के लिए आज मोरी गेट टर्मिनल से खेड़ी बाबा पुल के बीच नई बस सेवा रूट 753 एक्सटेंशन की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट।
3: परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ये रूट जनकपुरी, विकासपुरी, हस्तसाल, शिव विहार, उत्तम नगर, हरिनगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सेंट्रल दिल्ली और मोरी गेट तक सीधा, किफायती और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन उपलब्ध कराकर आवागमन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इस मार्ग का निर्धारण राजधानी में दफ्तर जाने वालों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वालों की सुविधा को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये रूट दिल्ली के सबसे व्यस्त अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्ट हब में से एक, मोरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डा और कश्मीरी गेट जैसे राजधानी के प्रमुख अंतरराज्यीय परिवहन केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा ये रूट अंतरराज्यीय बस सेवाओं और दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सुविधाजनक और किफायती कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र साउथ दिल्ली मेन पाइपलाइन के रखरखाव कार्य के कारण कल कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जल बोर्ड ने बताया कि इन इलाकों में कल सुबह 10 बजे से लेकर अगले 8 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। लोकसभा

0: अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आज संसद भवन में देश की विभिन्न रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल, श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महामंत्री सुभाष गोयल भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने आने वाले मॉनसून सत्र के लिए सभी जरूरी इंतजाम और तैयारियां कर ली हैं। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत पूरी तरह से तैयार है।
1: एनडीएमसी की तो अपनी सत्र की तैयारी से पहले जो भी रखरखाव व्यवस्था सब चीजें हमारी पूरी तरह तैयार है। माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली हर चीजों के लिए तैयार है। मानसून की भी तैयारी हमने पूरी तरह कर रखी।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की गति और व्यापकता को नई परिभाषा दी है और जन कल्याण को सुशासन का केंद्र बिंदु बनाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात आज रोहिणी सेक्टर 10 स्थित सांवरिया से टेंट में आयोजित सांस्कृतिक संध्या को संबोधित करते हुए कही। उत्तर स्वामी मलाई मंदिर का महाकुंभाभिषेक समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह श्री कांची कामकोटी पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन और उपस्थिति में आयोजित किया गया था। समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने अपनी प्रतिभा और आजीवन साधना से भारतीय लोक परंपरा को नई प्रतिष्ठा दिलाई। साथ ही उनकी कला ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और अनगिनत कलाकारों को प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जाना भारतीय लोक कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज केशवपुरम जोन के गुजरावाला टाउन स्थित एक पार्क का नामकरण प्रख्यात समाजसेवी और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक स्वर्गीय डीजे सचदेवा की स्मृति में किया। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 7 में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक वर्ष के लिए ग्रीन कैलेंडर तैयार किया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए। विगत 25 जून को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया।

0: नमस्कार, आज हमारे युवा साथी हमारे साथ हैं अपनी रचनाओं को लेकर। हमारे ऐसे युवा दिल हैं जिनकी धड़कनें पन्नों पर शब्दों के रूप में धड़कती हैं। लिखना अपने आप में एक साधना है, आप इस बात को मानते होंगे, लेकिन अपनी लिखी हुई बात को पहली बार किसी के सामने सार्वजनिक रूप से पढ़ना, साझा करना, ये साहस की बात है। और हमारे युवा साथियों ने आज ये साहस किया है। आकाशवाणी ने युवा प्रतिभा को और बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और इनकी रचनाओं के बारे में जानने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच उपलब्ध करवाया है। हमारे युवा साथी अपना लेखन आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आकाशवाणी में पहली बार मंच पर अपनी रचनाओं का पाठ करने जा रहे हैं हमारे ये साथी, तो जोरदार तालियों से एक बार सभी का स्वागत कीजिए, सभी का हौसला बढ़ाइए। और सबसे पहले मैं आशु को आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु सिंह, मैं गाजियाबाद से यहाँ आया हूँ। मैं अभी MCA कर रहा हूँ, दूसरे वर्ष का छात्र हूँ मैं। और ज्यादा भूमिका ना निभाते हुए सीधे सीधे मैं अपने रचना की तरफ आपको ले चलता हूँ। एक शेर देखिएगा कि समझना जरूरी है कि बिछड़ना जरूरी है, समझना जरूरी है कि बिछड़ना जरूरी है, मजबूरी ये भी है कि संभलना जरूरी है। और भूल तो जाऊं मैं उसे कुछ पल में शायद, भूल तो जाऊं मैं उसे कुछ पल में शायद, मसला ये है कम वक्त उसकी गली से गुजरना जरूरी है। और एक गीत की तरफ लेके चलता हूँ आप सभी को कि नहीं

0: सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने।
1: तो ये थे हमारे पहले रचनाकार आशु सिंह। जमीन से उठकर फलक को छूने का ख्वाब रखते हैं ये नए परिंदे हैं, हौसले बेहिसाब रखते हैं। तो हमारे युवा साथी जो आकाशवाणी में आज पहली बार प्रस्तुति दे रहे हैं, इनके बहुत बुलंद हौसले हैं और उन हौसलों में आपने भी थोड़ी सी ऊंचाई फूंकनी है अपनी तालियों के माध्यम से। हमारी अगली रचनाकार की डायरी के पन्ने भी खुलने को तैयार हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं स्वाति को, स्वाति स्वर्णकार शाश्वत। तो आइए सुनते हैं स्वाति हमसे क्या साझा करने जा रही हैं।
2: सर्वप्रथम माँ वीणा वादनी को नमन करती हूँ, अपने गुरुजन माता पिता को नमन करती हूँ, आप सभी के पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, अपने आराध्य देव को याद करते हुए पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। फलक

0: कुछ और मैं भी शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। उसके हिस्से न देखी इतवार मैंने, उसके हिस्से न देखी इतवार मैंने, न देखा कभी ऐसा किरदार मैंने। सारे जग ने श्रेष्ठ जिसे कहा अब तक, उसके देखे हैं लाखों उपकार मैंने। मेरे सारे गम भी उससे डरते हैं, उन हाथों में देखा है चमत्कार मैंने। जो देती रही सदा उजाले सभी को, देखा है उनका सिर्फ अंधकार मैंने। बसाती है दुनिया जो हमारी खातिर, बसाती है दुनिया जो हमारी खातिर, जीवन भर देखा समर्पण अपार मैंने। मुस्कुरा सब कुछ निछावर जो कर दे, न देखी माँ जैसी कोई दिलदार मैंने। बेवजह चूमे लो हाथ तुम भी उनके, बेवजह चूमे लो हाथ तुम भी उनके, देखे हैं आँखों ने हजार प्यारे हमने। ईश्वर की अनुपम छवि दिख जाए जैसे, ईश्वर की अनुपम छवि दिख जाए जैसे, घर घर में देखी ऐसी सरकार मैंने। शाश्वत ही है ये अवतारे उनका, शाश्वत ही है ये अवतारे उनका, आंचल में जिसके देखा संसार मैंने, आंचल में जिसके देखा संसार मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो स्वाति ने अपने भाव हमारे साथ साझा किए कुछ कहता है दिल कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने कहा कि आकाशवाणी के मंच पर इनकी प्रथम प्रस्तुति है, तो आवाज में थोड़ा संकोच हो सकता है, लेकिन कल्पना की उड़ान जो है वो कमाल की है। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये उड़ान जारी रहेगी, इसी तरह से लेखन जारी रहेगा और हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे प्रोत्साहित करने का। मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ अब अमित कुमार यश को। अमित,
2: सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, पावन मंच को नमन करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे चार पंक्ति

है। बहुत आभार। एक गीत मैं जन्मदेवी माँ के चरणों में रखता हूँ, उसकी भूमिका में चार पंक्तियाँ कहता हूँ कि जैसे मानव जीवन में आदर्श जरूरी होता है, जैसे मानव जीवन में आदर्श जरूरी होता है, किसी लक्ष्य को पाने में संघर्ष जरूरी होता है, और काशी मथुरा हरिद्वार तो जाओ पर सबसे पहले, काशी मथुरा हरिद्वार तो जाओ पर सबसे पहले माता पिता के चरणों का स्पर्श जरूरी होता है, माता पिता के चरणों का स्पर्श जरूरी होता है। तब वो गीत पढ़ता हूँ, सुनिए। तू

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया अमित कुमार। तो हमारे युवा साथी की ये रचना अलग अलग भावनाओं से जुड़ी हुई और माहौल में पूरी तरह भावुकता आपने भर दी है। हम आपके साथियों की जो तालियां बार बार आपको मिलती रही, इसने ये बताया कि आपके शब्द सबके दिलों को छू रहे थे। ऐसे ही होते हैं रचनाकार, कभी मोहब्बत, कभी इबादत, कभी शिकायत। और कैसी होती है रचनाकारों की दुनिया, कवियों की दुनिया, ये हमें बताएंगी अब हमारी अगली साथी। मैं मंच पर बुला रही हूँ मोनिका डागा को। मोनिका अपनी रचनाएं लेकर हमारे बीच आ रही हैं।
2: नमस्कार, मैं मोनिका डागा, राजस्थान विश्वविद्यालय की शोधार्थी। मेरी पहली कविता है कवियों की दुनिया। हम कवियों की दुनिया भी कितनी निराली है, हम कवियों की दुनिया भी कितनी निराली है, कभी ठंडा दूध तो कभी गर्म चाय की प्याली है। व्यंग्य अलंकारों से सजी शब्दों की यह शब्दावली है, अभिधा और लक्षणा तो जैसे आधी घरवाली ही है। कुछ वाक्यों की उलझन तो कुछ शब्दों की जुगलबंदी है, स्वर व्यंजन और मात्राओं की बस थोड़ी माथा फोड़ी है। कभी चांद की महफिल में करते अटखेलियां, कभी चांद की महफिल में करते अटखेलियां, तो कभी करते तारों संग यारी है, कभी गूंजती तालियां तो कभी तानों की प्रतिध्वनि सी है। कभी टूटा दिल तो बने खुद के ही मीत और पक्की सहेली है, कभी हुआ इश्क तो हर पंक्ति हर श्रृंखला एक पहेली है। कभी हुआ इश्क तो हर पंक्ति हर श्रृंखला एक पहेली है। हर अधूरी ख्वाहिश को लिखा हमने, हर अधूरी ख्वाहिश को लिखा हमने कि याद तेरी सताई है, भीड़ में रहकर भी लगता जैसे वर्णमाला बिना तो सिर्फ तन्हाई है, वर्णमाला बिना तो सिर्फ तन्हाई है। और ज्यादा क्या लिखूं, बस मुख में पान और एक तकिया कलाम, इतनी सी पहचान लाजमी है, इतनी सी पहचान लाजमी है। मेरी अगली कविता है किताब। सुंदर जिल से सजी किताब हूँ मैं, सुंदर जिल से सजी किताब हूँ मैं, बरसों से किसी के इंतजार में हूँ मैं। सुकून से पल भर बैठ कोई पढ़े तो मुझे, सपनों की सैर को तैयार हूँ मैं। हर दिल को छू लूँ, हर दिल को छू लूँ वो एहसास हूँ मैं, छोटे बड़े हर उम्र के लिए ईजाद हूँ मैं। हर पन्ने में छुपे कई राज हूँ मैं, हर पन्ने में छुपे कई राज हूँ मैं, चुप्पी में भी बोलता अंदाज हूँ मैं, शब्दों की दुनिया का एहसास हूँ मैं, हर अकेले दिल का विश्वास हूँ मैं, हर अकेले दिल का विश्वास हूँ मैं। पर एक अरसे से बैठी अंदर बहुत उदास हूँ मैं, एक अरसे से बैठी अंदर बहुत उदास हूँ मैं, एक नई दोस्ती की चाहत को बेताब हूँ मैं, एक नई दोस्ती की चाहत को बेताब हूँ मैं। सुंदर जिल से सजी किताब हूँ मैं, सुंदर जिल से सजी किताब हूँ मैं। धन्यवाद।
1: तो अपनी रचना के माध्यम से मन में आशा जगाती ये थी मोनिका डागा। पहली बार मंच पर होने का डर भी आपकी रचना के तेवर के सामने कहीं टिक नहीं पाया। सराहनीय प्रस्तुति। लफ्जों में छुपी हुई हर बात समझ जाओगे, लफ्जों में छुपी हुई हर बात समझ जाओगे, तुम एक बार सुनो तो सही, जज्बात समझ जाओगे। तो हमारे साथ ही आपके साथ साहित्यिक विधाएं साझा नहीं कर रहे, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं। और अभी एक लंबा सफर इनके सामने है। शुरुआत आकाशवाणी के इस प्रतिष्ठित मंच से हो रही है, कुछ कहता है दिल में। अब मैं यहाँ इस मंच पर बुला रही हूँ नितिन वशिष्ठ को। आइए सुनते हैं नितिन अपनी कौन सी रचना हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं। नितिन,
3: मंच को नमन करता हूँ। मेरा नाम नितिन वशिष्ठ है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का थर्ड ईयर का छात्र हूँ। अपनी मुख्य रचना रखने से पहले चंद अल्फाज रखता हूँ कि मैं बनते जुनून से बनी राह पर हूँ, ना जानूं कि जाने कहाँ जाऊंगा मैं बनते जुनून से बनी राह पर हूँ, न जानूं के जाने कहाँ जाऊंगा मैं, मगर बात कहकर ये निकला हूँ घर से, न पीछे मुड़ूंगा न घबराऊंगा मैं, क्या किस्मत बताएगी नजरों को मेरी कि क्या इनमें

अपन पे एक आब खाब बनकर मैं जन्मा नहीं था किसी रोशनी में, मगर जी रहा हूँ आफ्ताब बनकर। हर हाल हालात ही हारते हैं, समझो के ऐसी मेरी शख्सियत है। नवाबी चमक से न पहचान मांगू, मेरा आम होना मेरी खासियत है। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं अपने गीत की तरफ आता हूँ, जो कि मैंने अपने देश के ऊपर लिखा है कि ऊंचा हिमालय अंबर को चूमे गए।

0: बहुत आभार रसूल का।
1: बेहद रोमानी अंदाज में अपनी ये रचना नितिन वशिष्ठ ने हमारे साथ साझा की। अब इस कार्यक्रम की ये अंतिम रचना मैं मंच पर आवाज दे रही हूँ विपिन कुमार ओम को।
2: मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और इस मंच को नमन करते हुए अपनी गजल का मतला और चंद अशार आपके सामने रखता हूँ। ये गजल पिता को समर्पित है। तो गजल का मतला कुछ यूं है कि बयां अपने वो दर्दो गम नहीं करता, बयां अपने वो दर्दो गम नहीं करता, पिता दुख का कभी मातम नहीं करता। कि बयां अपने वो दर्दो गम नहीं करता, पिता दुख का कभी मातम नहीं करता। वो बच्चों के लिए चलता है जीवन भर, वो बच्चों के लिए चलता है जीवन भर, सफर अपना कभी भी कम नहीं करता। और शेर सुने के दबा लेता है तकलीफे वो सीने में, दबा लेता है तकलीफे वो सीने में, पिता रोए तो आंखें नम नहीं करता। हुए नासूर सारे जख्म देखो ओम, हुए नासूर सारे जख्म देखो ओम, असर कोई भी अब मरहम नहीं करता, असर कोई भी अब मरहम नहीं करता। गीत का शीर्षक है चंचल मन। गीत सुनिएगा। अधर गुलाबी कमल नयन है, कोमल काया चंचल मन है, उसकी सूरत जैसे मूरत, बोली कोयल सी कंचन है। अधर गुलाबी कमल नयन है, कोमल काया चंचल मन है। गीत का पहला बंद सुनिएगा कि सब

0: का तन मन है, अधर गुलाबी कमल नयन है, कोमल काया चंचल मन है। धन्यवाद।
1: तो ये थे हमारे साथी विपिन कुमार ओम। बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने हमारे साथ साझा की और कुछ उपमाएं भी। आंखों के लिए झील हमने बहुत सुना था, आज आपने आंखों को मानसरोवर बताया, तो बहुत सुंदर। आज सफर की शुरुआत हुई है, मंजिल अभी बाकी है। आज सफर की शुरुआत हुई है, मंजिल अभी बाकी है, लिखी है बस कुछ पंक्तियां, पूरी किताब अभी बाकी है। तो अपने सभी युवा साथियों से हम यही कहेंगे कि आप मुस्कुराते रहिए, जीवन के अनुभव रचते रहिए, लिखते रहिए, साहित्य से जुड़े रहिए, और जो भी आप लिखते हैं आप उचित माध्यम से हम तक पहुंचिए, हमारे साथ अपनी रचनाएं साझा कीजिए, और अगर उपयुक्त लगी आपकी रचनाएं तो आकाशवाणी का ये प्रतिष्ठित मंच आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम है हमारा कुछ कहता है दिल, युवा लेखन श्रृंखला है। आप जिस भी विधा से लिखते हैं उस विधा में अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं, मार्गदर्शन भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के द्वारा समय समय पर। तो मैं नीलम मलकानिया कुछ कहता है दिल कार्यक्रम से अब आप सभी से यहाँ लेती हूँ अनुमति, इस वायदे के साथ कि आप लिखना पढ़ना जारी रखेंगे, पठन पाठन की ये परंपरा आकाशवाणी की प्रेरणा से यूं ही चलती रहेगी। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक मधुर धुन के साथ की थी, इसी धुन के साथ हम समापन भी कर रहे हैं।

0: अभी आप विगत 25 जून को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश सुन रहे थे। प्रतिभागी थे मोनिका डागा, आशु सिंह, नितिन वशिष्ठ, अमित कुमार यश, विपिन कुमार ओम और स्वाति स्वर्णाकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी नीलम मलकानिया। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं कारवा फिल्म से लिया गीत। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है RD बर्मन ने। लीजिए फिल्म संगीत में सुनिए ये पहला।

जी हाँ श्रोताओं, हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो वादे से जुड़े हुए कई सारे गीत हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई सारे नगमे हैं जिसमें प्यारे प्यारे वादे का जिक्र है, तो कहीं ये सवाल भी कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म से लिया गीत। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब जहां एक सवाल है कि क्या हुआ तेरा वादा, तो हम लता मंगेशकर की आवाज़ में आपको अगला गीत सुनाते हैं जो कलाकार या कहें कि गीतकार ने ये कहा है कि वादा ना तोड़।

0: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

0: ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया

0: के लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में

0: वह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

संध्या और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संगे बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोज़ा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर अजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यूजर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेज़ी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज़्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहाँ बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ ज़िले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नज़दीक अदूशी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर ज़खायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। BMC ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुज़वी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से परवाज़ों के आने जाने में भी काफ़ी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नगिरी समेत कोंकण ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में दांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। IMD अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएँ। इसी दौरान दिल्ली NCR के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संगे बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये ज़िला सनअती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तसव्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिज़ाइल भारतीय फ़ौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौक़ों की जस्तजू की।
डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायज़ों से वाकिफ़ कराने के लिए

0: की तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक्वामी मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी कौंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहीं अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनेसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोज़गार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायज़ा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरख्वाह फंड्स मौजूद हों, ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी, ताकि विकसित भारत के तस्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटीरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुँचाने वाले और इस मवाद को फ़रोग देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोज़ की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज़ वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें। हुकूमत ने आबनाए हुरमुस के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें ख़त्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाज़े में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकाम लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुस के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज़ INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमरीका के बैन अलाक़वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हडसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर ज़माना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फ़खरी अंदाज़ में भारतीय तिरंगा लहराया,

0: जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफर की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत जिले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोहरा आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाक़े में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाक़ा बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आज़ादी पर जारी एहतजाज मुजाहरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहरों के बाद खत्े में 600 से ज़्यादा सिविल हकूक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बकाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामिना ई के की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविज़न की खबरों के मुताबिक अजीम रहनुमा के तीनों बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा ने तेहरान के मुसल्ले आज़म में जनाजे की क़यादत की। इस मौके पर सदर मसूद पेजिशकियाँ, पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और आला कमांडर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उनके मुल्क के तारीखी दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर 2026 और 27 के दौरान 15 महीने तक जारी रहने वाले प्रोग्राम के जरिए इसकी याद मनाएगा। आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफ़ीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राज़ील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेज़ी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपये है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोज़ा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें ख़त्म हुई।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स है, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहाँ इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं एंड वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores every year to bring it to level where people even at 500 meters. अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती, बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा

0: पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है। जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई प्योर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो EV का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर e-waste रिसाइकलिंग।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।

0: जमशेदपुर 31 एनआईटी से देश का एक एनआईटी है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में। तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट, रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
0: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे, प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
0: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
3: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए, हम लोग कम लिए।

0: और अपना क्षेत्र में काम किया, उसमें मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया, और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
1: जामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
0: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
1: एक सुदूर गाँव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का जामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपने आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
0: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी, और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
1: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हैं स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में, और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
1: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ो मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मक से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
1: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
1: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सके।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
4: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड

0: है। उसके बाद हमारी एकेडमी से कुमुलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
2: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
2: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व्ड है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
3: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरति जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
3: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस RDC लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
4: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या बिष्टुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मांदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने अभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आँखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
5: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया।

0: बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Sri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Maudgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankarlal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था पंडित कैलाश चंद शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

0: महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुईं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid winds.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है काला बाजार और इस गीत को सुनने के लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो है पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, सबीर, सलमा, मुमताज, नासिर और उनके पूरे परिवार ने। तो आइए आपकी पसंद से सुनवाते हैं ये गीत।

बिल्कुल श्रोताओं, चांद भी खोया खोया है और आप भी इस चांद को देखते हुए कई सारे अनगिनत सपनों में खो जाइए। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी पसंद के गीत हम लगातार आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके भेजे गए ईमेल के माध्यम से हम आपकी हर एक फरमाइश गीत को शामिल करें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं नमक हराम फिल्म से लिया गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की और इस गीत को सुनना चाहा है हमारे श्रोता हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक और सचिन। साथ ही साथ हमें फरमाइश मिली है।

पिलिस मऊनाथ उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ये लिखते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। शिव मंदिर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। साथ ही साथ हमें फरमाइश मिली है चंडीगढ़ सिटी से सतीश।

शामोहन टिल्लू नायक, मधु नायक, जो कि लिख रहे हैं कि आप कोई सा भी गीत अपनी पसंद का सुनवा दीजिए। तो श्रोताओं, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं नमक हराम फिल्म से लिया गीत।

श्रोताओ, बात तो बिल्कुल सही है। जो दोस्त होते हैं वो बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। दोस्त ऐसे तो बहुत सारे बच जाते हैं, लेकिन जो हमारे हमराज होते हैं, हम सफ़र होते हैं, या कहें कि सुख दुख के हमारे साथी होते हैं, ऐसे दोस्त बहुत ही कम मिलते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसे दोस्त हैं तो हम उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें, उनका साथ, उनका हाथ कभी हमसे ना छूटे। श्रोताओ, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं सुहाग फिल्म से लिया गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है वो रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने इस गीत को सुनना चाहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संभाजी नगर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, अंशुमन, ओवी, सुभाष।

नीरज और विराज, साथ ही साथ दत्रिंगी से हमें जो फरमाइश मिली है, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की, जो कि लिख रहे हैं कि आप कोई भी गीत सुना दीजिए लेकिन हमारे नाम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कीजिए, तो आपकी फरमाइश हम ज़रूर शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ शिषपाल वर्धन ने भी हमें ईमेल भेजा है और ये लिख रहे हैं कि किसी भी गीत पर हमारा ये नाम शामिल कीजिए, तो बिल्कुल आपका नाम हम शामिल कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में। हमें ईमेल मिला है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश को शामिल करते हुए, आप सभी के नाम को शामिल करते हुए सुनवा देते हैं ये गीत।

श्रोता, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना सुहाग फिल्म से लिया ये गीत। श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आइए, आप ही की फरमाइश को शामिल करते हुए अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत। ये गीत है खूबसूरत फिल्म का और आवाज़ है कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति की। इस गीत को सुनने के लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल सपकाल की। साथ ही साथ हमें सुन रहे हैं मोहम्मद कमर, जिन्होंने लिखा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए लेकिन अपने नाम का इंतज़ार हम कर रहे हैं। तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है क्योंकि हम आपका ईमेल अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। गुन्नौर से आदिल कमर, तज़िक अली, मुजफ्फर अली, सभी तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं और साथ ही साथ लिखा है ईमेल में कि आप अपनी फरमाइश शामिल कर लीजिए। साथ ही मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला, अनिकेत, अंकिता, आप भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि अपनी फरमाइश का हमें कोई गीत सुनवा दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश को हम शामिल करते हुए गीत सुनवाएंगे। आपको बता दें कि अस्सुपुरा ज़िला मऊ से मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने भी हमें ईमेल भेजा है। साथ ही साथ कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लिख रहे हैं हमारे श्रोता फागुराम यादव। संबलपुर कांकेर से हमें ये मेल मिला है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही प्यार भरे नमस्कार के साथ हमें ईमेल मिला है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी और किदवई नगर से जुबेर अली खान का। तो आइए, आप सभी की फरमाइश को शामिल करते हुए आपको सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, लगातार हमें आपकी फरमाइश ईमेल के माध्यम से मिल रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके नाम शामिल करें अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए अपने कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। और इस फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है। इस गीत को सुनने के लिए हमें जो फरमाइश मिली है वो है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा की। साथ ही साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा और मधु नायक, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता भी हैं। इनका ईमेल भी हमें मिला है जो कि अपना नाम इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपका नाम हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल बिल्कुल कर लिया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश और कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, जो लिख रहे हैं कि हमें कोई सी भी फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, तो बिल्कुल हम आपको सुनवा रहे हैं और आपका नाम भी हम शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ रश्मि पांडे का हमें ईमेल मिला है और वो लिख रही हैं कि ये सॉन्ग की तर्ज एक महिला ने तैयार किया है, जो कि लिख भी रही हैं कि कौन सा गीत वो सुनना चाहती हैं। और साथ ही साथ रश्मि झरना राजकोट गुजरात से हमें ये ईमेल मिला है। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद को शामिल करते हुए आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

श्रोताओं, मेरा साया फिल्म से लिया गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की इस आवाज में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अब आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म से लिया गीत। हमारे श्रोता हैं

हैं नासिर शेख, जिनका ईमेल हमें मिला है और लिख रहे हैं, उद्घोषक दीदी आदाब नमस्कार, हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरा मेल ज़रूर शामिल कीजिए। तो बिल्कुल नासिर जी, आपका मेल हमने शामिल कर लिया है। और साथ ही साथ श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से, हमने आपकी भी फरमाइश को शामिल कर लिया है। हमें ईमेल मिला है ताज मोहम्मद का, जो कि लिख रहे हैं, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए। ताज मोहम्मद अंसारी के साथ साथ गुलाम साबिर राही, महराज जहां ने भी इस गीत को सुनना चाहा है, आपका नाम हम शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे श्रोता हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, आप भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो बिल्कुल हम अपने कार्यक्रम में आपकी फरमाइश और आपका नाम शामिल कर रहे हैं। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू भी हमारे इस फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का मेल भी हमें मिला है। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, आप भी हमें ईमेल भेजा है, तो आपका भी नाम हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और श्रोताओं, हमारी कोशिश यही है कि आपके जितने भी ईमेल हमें मिल रहे हैं तो हम अपने इस कार्यक्रम में आपका नाम ज़रूर शामिल करें। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ, सुहेल हसन और रसीद वारसी की भी हमें फरमाइश मिली है। तो श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म से लिया ये गीत।

श्रोताओं, आपसे भी यही गुजारिश है कि आप हमें ना भुलाएं और लगातार अपने ईमेल भेजते रहें। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं

0: की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जल संबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तनाव बढ़ गया है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर जारी दमनकारी कार्रवाई के बीच हुई है। पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां जूनियर डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और अस्पताल की सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state, triggering rescue operations and rain-related incidents yesterday. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli for today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड मध्य प्रदेश चीफ

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत के साथ हमने शुरुआत की है मौसम मस्ताना है फिल्म लालच से। जी हाँ, फिल्म लालच किशोर कुमार, लता मंगेशकर और कोरस की आवाज़ में बहुत ही शानदार रचना। फिल्म लालच 1983 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत सत्य मूवी द्वारा है और संगीत से सजाया है बप्पी लाहिरी ने। जी हाँ साथियों, बहुत सारी जानकारियां हैं और जैसे कि अभी हमने बताया था कि मुस्कुराता चेहरा और दिल में बसा संगीत का अथाह समंदर। वे केवल एक संगीतकार नहीं थे बल्कि एक ऐसा दौर थे जिसने युवाओं की धड़कनों को नया संगीत दिया। आज की इस महफिल में हम याद करेंगे भारत के डिस्को किंग, महान संगीतकार, मधुर गायक और अनोखे व्यक्तित्व के धनी बप्पी लाहिरी साहब को। जी हाँ दोस्तों, और आइए सुरों की इस सुनहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बप्पी लाहिरी का जन्म परिचय की बात करें तो पूरा नाम उनका आलोकेश लाहिरी यानी कि बप्पी लाहिरी, और जन्म 27 नवंबर 1952 जलपाईगुड़ी में पैदा हुए थे। और बप्पी लाहिरी का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ। उनके पिता अपरेश लाहिरी प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और माता बंसरी लाहिरी और वो थी शास्त्रीय संगीत एवं गायन की दक्ष थीं। घर में हर समय संगीत का वातावरण रहता था। यही कारण था कि बप्पी दा ने बहुत छोटी उम्र से ही तबला और पियानो बजाना शुरू कर दिया। फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं। ये गीत भी बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ही गीत और उनकी जानकारियों आप तक पहुँचाएंगे। तो फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है। ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, दिल तेरा जान तेरी, और ये फिल्म है फूल बने अंगारे, 1991 प्रदर्शित फिल्म फूल बने अंगारे। गायक बप्पी लाहिरी और अलका याग्निक, संगीत बप्पी लाहिरी का है और सुनवाते हैं ये शानदार और बेहद खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार और लाजवाब खूबसूरत गीत। ज्यादातर गीत बिल्कुल मस्ती भरे अंदाज में खूबसूरत गीत रचना है हमारे, जी हाँ, बप्पी लहरी। और बढ़ते हैं कुछ और जानकारी की ओर। जी दोस्तों, कहा जाता है कि मात्र 3 वर्ष की उम्र में उन्होंने तबला बजाकर सभी को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात होती है 3 वर्ष की उम्र में तबला बजाकर उनको चौंका दिया था। संघर्ष की कहानी की अगर हम बात करें तो मुंबई का सफर आसान नहीं था। नई सोच, नया संगीत और बिल्कुल अलग शैली। शुरुआत में लोगों ने उनके डिस्को संगीत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बप्पी दा ने हार नहीं मानी। उन्होंने भारतीय धुनों में पश्चिमी संगीत का ऐसा संगम किया कि पूरा देश झूम उठा। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं और ये गीत है बहुत ही प्यारा सा, जी हाँ, हमेशा की तरह उनकी शैली के अनुसार शानदार और बेहद खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई दिल धक धक करने लगा। वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब खूबसूरत गीत, और हमेशा एक अलग शैली के साथ अपनी गायकी और अपना संगीत बिखेरते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग शैली। शुरुआत में लोगों ने उनको डिस्को संगीत को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बप्पी दा ने हार नहीं मानी। उन्होंने भारतीय धुनों में पश्चिमी संगीत का ऐसा संगम किया कि पूरा देश झूम उठा। पहली सफलता उन्हें मिली थी 1973 में। जी हाँ, पहली फिल्म मिली थी 1973 में, लेकिन असली पहचान मिली 1975 की फिल्म जख्मी से। इसके बाद चलते चलते डिस्को डांसर, डांस डांस, शराबी, कसम पैदा करने वाले की नमक हलाल जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरहिट संगीतकार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत एक और सुनवा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम गीत भी सुनवा रहे हैं, और वैसे वैसे बप्पी लहरी की जो जीवन यात्रा है उनका पूरा परिचय हम धीरे धीरे और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई तन्हा मैं अकेला टूटा तारा, कोई वाकई बहुत ही सुंदर मार्मिक और बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे बप्पी लहरी की आवाज़ में। साथियों, और भी जानकारी, जैसे अभी हमने बताया था कि इतने सारे जो फिल्म, लेकिन असली पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से और इसके बाद चलते चलते, डिस्को डांसर, डांस डांस, शराबी, कसम पैदा करने वाले की नमक हलाल जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरहिट संगीतकार बना दिया। डिस्को किंग बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प रही है। 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर और फिर इतिहास बदल गया। आई एम ए डिस्को डांसर। जी हाँ दोस्तों, वाकई आई एम ए डिस्को डांसर ऑल टाइम फेवरेट, और ये गीत वाकई बहुत ही ज़्यादा सुनने वाला गीत बना, पूरी दुनिया में गूंज उठा। सोवियत संघ, रूस, चीन, अफ्रीका सहित कई देशों में यह फिल्म बेहद लोकप्रिय हुई। बप्पी लहरी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले पहले भारतीय संगीतकारों में गिने जाने लगे। तो आइए एक और खूबसूरत गीत सुनवाते हैं, और बहुत ही प्यारा गीत आ रहा है आपके पास।

जी हाँ साथियों, सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गीत। कहते हैं कि जमाना तो है बीवी का। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चर्चित गीत रहा है, जमाना तो है बीवी का। और फिल्म का नाम भी नौकर बीवी का, किशोर कुमार और निशी कोहली की आवाज़ में सुंदर रचना है। और ये 1983 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत निशी कोहली के हैं और संगीत बप्पी लहरी का है। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ,

जी हाँ साथियों, ज़माना तो है नौकर बीवी का, वाकई बहुत ही प्यारा गीत। और साथियों, और भी आगे जानकारियाँ हमारे पास मौजूद हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे गीत गीत के साथ साथ कुछ जानकारी भी उनके साथ बताएंगे आप सभी साथियों को। और कहते हैं कि उनकी आवाज़ में एक अलग ऊर्जा थी। उससे पहले जो गायक के रूप में जो पहचान बनाई थी बपीदा ने, केवल संगीत ही नहीं दिया, उन्होंने अपनी अलग आवाज़ में भी अनेक गीत गाए। उनकी आवाज़ में एक अलग ऊर्जा थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। जी हाँ दोस्तों, वाकई सही कहा है। और परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो पत्नी जो थी चित्राणी लहरी, और बेटा बप्पा लहरी, और बेटी रीमा लहरी, पूरा परिवार संगीत से जुड़ा रहा। पुरस्कार और सम्मान की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन और जैसे कि उन्होंने लगभग 5 दशकों तक हिंदी, बंगाली, तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और अन्य भाषाओं की फिल्मों में संगीत दिया। उनके नाम 5,000 से अधिक गीतों के संगीत से जुड़ा उल्लेख किया जाता है। उन्होंने अनेक फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिले और तथा साथ में भारतीय संगीत जगत में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। और फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट, आई एम अ डिस्को डांसर, जो ऑल टाइम फेवरेट है और बहुत ही मस्ती भरा लाजवाब खूबसूरत गीत है। सुनवाते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत, उसके बाद फिर चलेंगे उनकी यात्रा पर वापस। तो फिलहाल हम सुनते हैं ये बहुत ही डांस मूव करता हुआ मस्ती भरा खूबसूरत लाजवाब गीत फिल्म डिस्को डांसर से। जी हाँ, सिंगर विजय और कोरस यानी कि साथी। डिस्को डांसर फिल्म 1982 प्रदर्शित फिल्म रही और जिसके गीतकार रहे बी सुभाष मूवी यूनिट के द्वारा, और संगीत बप्पी लहरी का। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

जी हाँ दोस्तों, समय तो इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन बस केवल 5 मिनट बाकी हैं और इतना बड़ा जो प्रोग्राम होता है, बड़ा एक कार्यक्रम में समाहित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथियों, बप्पी दा के कुछ सुने कुछ अनसुने किस्से की बात करें तो बप्पी दा अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली बड़े प्रशंसक थे और के उनके बड़े प्रशंसक थे। प्रेस्ली को सोने चेन पहने देखकर एल्विस को सोने की चेन पहने देखकर उन्होंने भी सोना पहनना शुरू किया। उनका मानना था कि सोना उनके लिए सौभाग्य लेकर आता है और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए हमेशा रिकॉर्डिंग की है। और यदि कोई कलाकार घबरा जाता तो पहले से ही उन्हें हंसी आ जाती थी और हंसते थे और फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते थे। और उनकी धुनें बनने की रफ्तार बेहद तेज थी, कई बार पूरा गाना कुछ ही घंटों में तैयार हो जाता था। उन्होंने भारतीय संगीत के इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर और डिस्को बीट्स को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। और उनका जो निधन हुआ था 15 फरवरी 1922 को मुंबई में 59 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। और उनके जाने के बाद भी उनके धुने आज भी हर पीढ़ी को झूमने पर मजबूर कर देती है। संगीतकार चला गया लेकिन संगीत अमर हो गया। बप्पी दा को समर्पित शायरी। कुछ लोग वक्त के साथ चले जाते हैं, कुछ वक्त बनकर जीते हैं, धड़कनों में जो सुर बसा है वही कलाकार अमर कहलाते हैं। संगीत कभी समाप्त नहीं होता, केवल नई आवाजों में जन्म लेता रहता है। आज सुरों के सफरनामे में आज हमने याद किया उस जादूगर को जिसने सुरों की नई चाल दी, ताल दी और नई पहचान दी और भारतीय फिल्म संगीत को एक नया रंग दिया। बप्पी दा की धुनें केवल गीत ही नहीं, वे एक पूरा दौर था। जी हाँ, एक ऐसी धड़कन जो आज भी हर महफिल में सुनाई देती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति, छोड़े जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत के साथ।

0: जी दोस्तों, इसी सुंदर खूबसूरत गीत के साथ आज का सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। बस मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और संगीत को अपने दिल से दिल में बसाए रखिए। नमस्कार। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए

0: मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में दो अलग अलग अभियानों में कोडीन आधारित एक कफ सिरप की 1,00,000 से अधिक शीशियां जब्त की हैं। DRI ने अगरतला में रेलवे सुरक्षा बल और असम राइफल्स की सहायता से अभियान चलाकर 55,000 से अधिक शीशियों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अन्य अभियान में अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी स्थित एक गोदाम की तलाशी में कोडीन आधारित कफ सिरप की 56,000 से अधिक शीशियां बरामद की। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह पोत यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल फोर्थ 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। हडसन नदी पर आयोजित परेड ऑफ सेल के दौरान 3 मस्तूलों वाले इस प्रतिष्ठित पोत ने गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया। INS सुदर्शनी की यह यात्रा 10 महीने के ट्रांसोनिक अभियान लोकायन 2026 का हिस्सा है। यह समुद्री सहयोग को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का निर्माण करने और सहयोगी नौसेनाओं के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said, a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
2: यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं,
3: नॉट ओनली मिसाइल प्रोपेलेंट बट ऑल्सो एक्सप्लोजिव्स, मिसाइल असेंबली एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन शिवपुरी. दिस इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन साउथ एशिया.
2: सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है.
1: Mr. Sindhia said the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from today till 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashwani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakravarti, said, celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister S. Jaishankar began his official visit to West Asia yesterday, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassami Al Thani. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, Dr. Jaishankar said they explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Dr. Jaishankar thanked Mohammed bin Abdul Rahman for ensuring the safety and well-being of the Indian community and appreciated his sharing of assessments on the West Asia conflict and its impact. And Home Minister Amit Shah and Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy yesterday reviewed the situation of illegal coal mining and coal theft in a high-level meeting in New Delhi. During the meeting, the Home Minister expressed concern over the worsening situation of illegal coal mining and theft in Dhanbad and nearby areas. The Home Minister issued several important directions, including adoption of the Zero Coal Leakage Plan. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है. साथियों, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड. ये समय होता है बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, जी हाँ, गीत सुनहरे. गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत, ओल्ड हिंदी फिल्म्स सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा. जी हाँ दोस्तों, आज गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार. शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत के साथ. और ये गीत, क्योंकि बहारों का मौसम आ गया है, अन्य राज्यों में, कई राज्यों में बारिश भी हो रही है और रिमझिम फुहारें भी हो रही हैं और वाकई बहुत ही खुशनुमा. जो साथी, जो जितने भी साथी हैं देश के, और कहीं ना कहीं बारिश भी हो रही है और धूप से बड़े पीड़ित हो रहे थे और काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बारिश होना शुरू हुआ तो अब पूरा, लगभग पूरा देश थोड़ी सी ठंडक का एहसास महसूस कर रहा है. और ऐसे में बाहर के गीत अगर मिल जाए तो वाकई बहुत ही सुंदर लगने लगता है, मन को सुकून भी मिलता है. ऐसे गीत जब हम प्ले करेंगे तो वाकई लगेंगे वाह क्या बात है ना. तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की, यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम की पहली और बहुत ही खूबसूरत रचना, कुछ खुशनुमा, कुछ ठंडक का एहसास दिलाता बहारों का मौसम. जी हाँ, बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत. और ये गीत आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, ये गीत है बहार के दिन फिल्म हमराही से. हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है और सिंगर बिनोटा बोस और संगीत से सजाया है आरसी बोरल ने. तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और बेहद खूबसूरत रचना.

जी हाँ दोस्तों, दिन है बहार के आए, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत है वो चले झटक के। जी हाँ दोस्तों, वो चले झटक के एक बहुत ही प्यारा गीत है। और ये गीत सही मायने में वो चले झटक के फिल्म हमराही से ही है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। बहुत ही सुंदर रचना। ये फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है, फिल्म हमराही। और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

0: बिठा के वो चले।
1: हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, वो चले। जी हाँ, वो चले झटक के दामन, वाकई बहुत ही प्यारा गीत अभी सुन रहे थे आप। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। बहुत ही सीरियस और बहुत ही गमगीन गाना है। जी हाँ, जिंदा हूँ इस तरह के जिंदगी नहीं। जी हाँ, फिल्म आग से ये बेहतरीन रचना। आग फिल्म 1948 प्रदर्शित फिल्म रही। मुकेश साहब की आवाज़ में बहुत ही शानदार गीत अभी आप सुनने को मिलेंगे आपको। और इस गीत को सजाया है संगीत से राम गांगुली ने। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गमगीन, बहुत ही मार्मिक और खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, फिर चाहें तो ना आना। जी हाँ, फिल्म बेकसूर से जो 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, राजकुमारी की आवाज़ में सुंदर रचना। गीत आरजू लखनवी के और संगीत से सजाया है अनिल विश्वास और हंसराज बहल ने। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है याद करूं तोरी। जी हाँ, याद करूं तोरी, और ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा है। और मिस्टर लंबू फिल्म से ये गीत है, और लंबू मिस्टर लंबू फिल्म 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है, और आवाज़ सुरैया की है, और संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर अनोखा खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ये रात भीगी भीगी बहुत ही सुंदर बेमिसाल खूबसूरत रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत मेरे ख्याल से सभी को ही पसंद आने वाला है। आज सजन मुहे अंग लगा लो, फिल्म प्यासा से गीता दत्त की आवाज़ में बेहतरीन रचना। फिल्म प्यासा 1957 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत साहिर के हैं और संगीत SG बर्मन का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, रात कितनी हसी। जी हाँ दोस्तों, रात कितनी हसी कितनी खूबसूरत, बादल और बिजली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मुबारक बेगम और तलत महमूद की आवाज़ में। बादल और बिजली फिल्म 1956 प्रदर्शित फिल्म रही, संगीत से सजाया था इस खूबसूरत गीत को बिपिन बाबुल ने। और बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम और बहुत ही खूबसूरत रचना के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी रचना है। इससे पहले कि ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। साथियों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, बहुत ही प्यारा और बेहद खूबसूरत गीत आ रहा है और ये गीत वाकई ऑल टाइम फेवरेट गीत है। जब सुने तब बहुत ही खूबसूरत लगता है। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, फिल्म चोरी चोरी से। फिल्म चोरी चोरी 1956 प्रदर्शित फिल्म रही, लता मंगेशकर की आवाज़ में खूबसूरत रचना। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम खूबसूरत रचना।

0: इसी बेहतरीन गीत के साथ आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम समाप्त होता है। 2 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में कल डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई।

तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। कल रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज नुवान पहलगाम बेस कैंप का दौरा किया। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। फोयबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF सहित कई एजेंसियां

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल गुलशन की फकत।

0: गुमरा। इसके साथ ही गजलों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: कार्यक्रम का शुभारंभ हम भगवान अयप्पा की एक स्तुति से कर रहे हैं, स्वर के.जे. यशुदास का।
1: हरिवरासनम विश्वमोहनम हरिदधीश्वरम।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं गायन, कलाकार हैं सुधा रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कंबोजी जो आदि ताल में निबद्ध है। संगीत दिया है मुथुस्वामी दीक्षितर ने और आपके साथ वलन पर संगत किया है KVS विनय ने और मृदंगम पर साथ दिया है एलांथुर जयन पी दास ने। तो लीजिए सुनिए सुधा रघुरमन का गाया रागम कंबोजी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे गायन कलाकार थी सुधा रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया रागम कंबोजी जो आदिताल में निबद्ध था। आपके साथ वायलिन पर संगत किया के वी एस विनय मृदंग विनय ने और मृदंगम पर साथ दिया एलेंथोर जयान पी दास ने। संगीत दिया था मुथुस्वामी दीक्षितर ने। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति संगीत का। 5:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगी प्रभाकर नारायण पाठक का ध्रुपद गायन। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। इसके अंतर्गत आज होंगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विचार। 6:45 पर सुनिएगा रामचरित मानस से पाठ। आज प्रस्तुत होगा बालकांड का भाग 108। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। आज आप सुनेंगे संजय झा के गाए भजन। 7:30 सुनिएगा गीतो भरी गुड मॉर्निंग ये कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा का समय रहेगा 8:45। इसके अंतर्गत आज प्रसारित किए जाएंगे गायन। कलाकार होंगे राकेश पाठक। आप सुनेंगे राग शुद्ध सारंग। 9:15 का समय रहेगा कार्यक्रम आवर गेस्ट का। आज का विषय रहेगा एन इंटरेक्शन विद एनवायरमेंटलिस्ट ज्योति। 9:30 सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। प्रस्तुत करेंगी जसपाल कौर। 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा। पर सुनिएगा कार्यक्रम हमारी बेड़ियां और उसके बाद सुनिएगा सबरस। 11:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी होगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रशंजीत रॉय का सितार वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग गौड़ सारंग। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन सुनिएगा 12:10 पर। आज ये प्रस्तुत करेंगी मंजुला प्रसाद। 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनिएगा, इसमें आज की फिल्म होगी आशिकी। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे आज 3 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की 4थी यात्रा होगी। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अंतर्गत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टीसू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर को मिले धन की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। असम मंत्रिमंडल ने आज राज्य विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी में मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। संस्कृति मंत्रालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा मंत्रालय ने पिछले वर्ष की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज मुंबई समेत कई राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।

0: दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। इस अभ्यास को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं गायन प्रभाकर नारायण पाठक।